0: आ रहा है आपके शहर फ्रिस्को में PMJ Jewels.
1: Be a part of this grand opening celebration from 20th June Saturday onwards and get exclusive offers, exciting celebrations and opportunities to win beautiful jewelry pieces. PMJ Jewels. Tradition crafted, style defined.
2: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान. myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338. myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
3: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
4: Calculating route. Rerouting.
3: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है.
4: लोकेशन अपग्रेडेड, नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ.
3: क्यों?
4: क्योंकि फोर्ट वर्थ केलर, हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं. डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स, ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत, फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ.
3: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो.
5: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट,
4: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
6: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
7: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
6: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन, द फ्लेवर लाउंज.
7: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट.
8: जिस बात का डर था वही हुआ, लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन.
9: अरे कहना क्या चाहते हो?
10: डॉक्टर की बात समझ ही नहीं आई, लैंग्वेज बैरियर का टेंशन भी. अब टेंशन का टाइम गया. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के साथ मल्टी लैंग्वेज नर्सेज और डॉक्टर्स हमेशा आपके साथ हैं. हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, एनी लैंग्वेज यू प्रेफर. फ्रिस्को, प्लेनो, मैकिनी, अबरी, फ्लावर माउंट, इरविंग, प्रॉस्पर, एना, एनी लोकेशन यू आर क्लोज टू. कॉल 214-666-6259 और विजिट passionhealthprimarycare.com. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, योर हेल्थ, योर लैंग्वेज, योर कम्फर्ट.
11: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
12: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
11: नहीं.
12: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
11: नहीं.
12: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
11: वो भी नहीं.
12: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
13: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए. बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agefintax.com. कॉल 972-618-8555. AG Fintax, your growth, our strategy.
14: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
15: The Texas Super Kings are here and the action is absolutely heating up. Don't miss a single thrilling moment. Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium. We have got electrifying matches on Thursday, June 18th, Saturday, June 20th, Sunday, June 21st. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.
16: Hi, this is Rani Mukherjee. You're listening to Fun Asia Radio.

0: Tírate, tírate.
1: हाय डैलस की जनता, कैसे हैं आप सभी लोग? भाई आई एम तो एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली फाइन. मुझे इट इज थर्सडे. हाँ, दिस इज द लास्ट वीक दैट आई एम ओवर हियर एट फनीशा रेडियो. एंड पर मैं हूँ कौन गाइज? यू गाइज आर लिसनिंग टू एबी द हिपी ऑन फनीशा रेडियो 104.9 FM एंड माई शो इज कॉल्ड An evening in Dallas. That is right, friends. मैं आ चुकी हूँ. हाँ, आज थोड़ा सा लेट हो गया. हम थोड़ी बातें कर रहे थे and we got a little carried away. But we are here. It's never too late. As long as you are there, it's never too late. Just like life की philosophy, just like radio पे आने की philosophy, है ना? तो इसी से एक गाना सुनते हैं. Then we come back and chit chat some more. Stick around, क्योंकि इस हफ्ते we have two giveaways. हाँ जी, एक नहीं दो giveaway है भाई साहब. And that's gonna happen all after 8 PM. So make sure you're listening. Enjoy this one for now.

0: कर्नाटक के सुपर हिट्स इज कमिंग योर वे
1: विशाल एंड शेखर
2: हियर वी गो
0: दैट्स राइट विशाल एंड शेखर लाइव गेट रेडी फॉर एन इलेक्ट्रिफाइंग इवनिंग फिल्ड विद सॉन्ग्स यू डांस टू सेलिब्रेटेड विद एंड फॉलन इन लव लिसनिंग टू संडे जुलाई 12th एट द करिस कलवेल सेंटर इन
3: गार्लैंड
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ कैश पटेल प्रोडक्शंस डॉट कॉम द सुपर हिट टूर विद विशाल एंड शेखर
4: स्वैग से करेंगे सबका स्वागत
5: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग है।
6: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
7: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
8: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
7: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com। देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकौड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस।
9: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
10: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Funny Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
11: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
12: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
9: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
12: इतना सब और प्राइस?
9: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
13: मैं हीरो।
14: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
15: Excuse me. It's called being loyal.
14: It's called being predictable.
15: Okay then, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
14: And what's so special at Neon Cactus?
15: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
14: Not bad.
15: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
14: Okay, this I didn't expect from you.
15: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview. Mexican cuisine with global influences.
16: Looking to earn extra flexible income or even build a new career? At ShopCompareInsure.com, we are not just helping customers. We're growing a network of successful insurance agents. Whether you're experienced or just getting started, we provide the tools, training, mentorship, and access to top-rated products like annuities, term life, whole life, and IUL to help you succeed. Work flexible hours, build your own income, make a real impact.
17: Visit ShopCompareInsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's ShopCompareInsure.com. Your 360 insurance solution.
18: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
19: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी। ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
6: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी।
8: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident,
1: and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.
2: Friends, we are back and I'm going to play you something, a blast from the past. अगर आपको याद है, there was this band in the early 2000s called Fusion, जिसका नाम सब लोग बहुत ही गड़बड़ करते थे. They called it Fuzon. They were a Pakistani band. But the singer did a lot of Bollywood tunes back in the days. This is Shafqat Amanat Ali. मैं नाम सही बोल रही हूँ क्या? पता नहीं यार क्या हो रहा है. मैं तो कुछ पीपा के भी नहीं आई है, ऐसे ही नाम स्लिप हो रहा. एनीवेज, दिस इज फ्यूजन विद देयर सॉन्ग अखियां. आई लव दिस सॉन्ग. आई लाइक्ड इट बेटर देन द अदर वन.

Doing. Yes, you all are listening to Ibi the Hippie on Funasia Radio 104.9 FM, and this is my show, An Evening in Dallas. Have you all made your plans for this evening? Or not this evening, or this weekend भी, मतलब evening, weekend, जो भी है. मुझे लगता है weekend Thursday से शुरू होना चाहिए, you know. मैं ना बहुत साल पहले ऑस्ट्रेलिया गई थी. मेरी बहन रहती है वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, she lives in Melbourne. तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे अमेजिंग चीज़ पता है मुझे क्या लगी? मंडे टू वेंसडे, ठीक है, सारी दुकानें, सारे मतलब मोस्टली शॉप्स, मॉल वगैरह जो भी है, एक्सेप्ट फॉर लाइक ग्रोसरी स्टोर्स, एवरीथिंग क्लोजेस एट लाइक 5 o'clock. लाइक मॉल्स क्लोज एट 5 o'clock. इफ यू वांट टू गो फॉर लाइक लेट नाइट शॉपिंग आफ्टर वर्क ऑन अ वीक डे, नो, बिकॉज एवरीथिंग विल क्लोज लाइक राइट एट 5. ओके, देयर इज नथिंग टू डू. एट मोस्ट यू कैन गो टू अ फास्ट फूड जॉइंट, और मे बी यू कैन गो डू लाइक अ लेट नाइट मूवी. वो भी कोई भी नहीं जाता. और मतलब 5 बजे के बाद रोड्स वगैरह इतनी खाली हो जाती थी, मतलब कोई चलता भी नहीं था. एवरीबडी वॉज लाइक इन साइड देयर हाउस. 5 बजे के बाद कोई भी नहीं दिखेगा मंडे टू वेंसडे. लेकिन थर्सडे आते ही सारे बाहर. वीकेंड उनका शुरू होता था थर्सडे से. थर्सडे शाम से वो पार्टी करना शुरू करते थे. फ्राइडे मोस्टली लोगों का हाफ डे होता था. सैटरडे को सारे दिन वो लोग एंजॉय करते थे. एंड देन संडे अगेन एवरीबडी वुड कॉल इट एन अर्ली इवनिंग, क्योंकि सबको मंडे से काम पे जाना होता था. सो इट वॉज, एंड टू मी दैट वॉज लाइक द मोस्ट अमेजिंग थिंग. मैंने कहा थर्सडे से वीकेंड शुरू हो रहा है, थर्सडे से मॉल्स खुली हैं 9 बजे. थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 9 बजे तक सारी दुकानें खुली हैं, मॉल्स खुले हैं 9 बजे तक. यू कैन चिल, यू कैन हैंग आउट, देयर सो मच डू, देयर सो मच लाइफ. बट मंडे टू वेंसडे इट्स सो डेड. For me, that was like the most incredible thing. Anyways, guys, have you guys made plan for what to do this weekend? नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, अभी बना लो, अभी भी टाइम है. It's just Thursday. यहाँ पे तो weekend is not starting on Thursday, so it gives you a little time to kind of figure out what you want to do. Well, this next part of the show is brought to you by Malabar Gold and Diamonds. Are you looking to add a little sparkle to your special moments? Head to Malabar Gold and Diamonds on Preston Road in Frisco, your destination for stunning diamond jewelry, and that is elegant, timeless, and crafted to shine. From beautiful rings and earrings to dazzling necklaces and contemporary diamond style, find the perfect piece for anniversaries, engagement celebrations, or for simply treating yourself. Experience the unmatched craftsmanship brilliance at Malabar Gold and Diamonds in Frisco. And bhulna mat yaar, unka app bhi hai. Then you can check out the latest collection updates and more details. Maybe there's a special sale, I don't know. You can check it out and then tell me. Agar hai, to even I'll go and check it out. Anyways, enjoy the song.

भाई मैंने तो बिल्कुल भी नहीं पी. आई एम टेलिंग यू, आई एम एक्सट्रीमली सोबर. आई हैव जस्ट हैड माई डिनर और अभी बैठ के मैं डिज़र्ट खा रही हूँ, जो है एक बोल ऑफ बेरीज, है ना. एनीवेज गाइस, आपको पता है एक बोल ऑफ बेरीज में कितनी सारी फाइबर होती है? अराउंड 13 ग्राम्स ऑफ फाइबर. मतलब उतना फाइबर आपको सैलड में नहीं मिलेगा. एक कटोरी लेटस में, एक कटोरी टमाटर में भी उतना फाइबर नहीं मिलेगा जितना एक बोल ऑफ बेरीज में मिलेगा फाइबर. एंड फाइबर की क्वांटिटी पता है कितनी चाहिए होती है हर पर्सन को? 25 ग्राम्स इन अ डे. आपको पता था? मुझे भी नहीं पता था. आज मैंने रिसर्च किया, देन आई रियलाइज, मैं कहा ओहो, दैट इज द अमाउंट ऑफ फाइबर दैट ह्यूमन बॉडी नीड्स बिसाइड्स द रियली बिग चंक ऑफ प्रोटीन दैट वी डोंट ईट एवरी डे. एनी वेज, दिस आज मैं हेल्थ के बारे में नहीं बात कर रही हूँ. बट येस्टरडे गाइज वी वर टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स एंड डेटिंग, क्योंकि कॉकटेल 2 होने वाली है कल रिलीज, एंड वी आर अबाउट टू डू दिस लाइक सुपर कूल इवेंट थ्रू फनेशिया. जो आपको पता, अगर उस एरिया में है तो आपको पता चल जाएगा. आई विल बी अ पार्ट ऑफ दैट इवेंट अलॉन्ग विद सम रियली फन आरजेज, एंड वील हैव सम रियली फन क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू आस्क यू. सो आई डोंट नो, स्टे ट्यून, मे बी फॉलो मी ऑन माई इंस्टा पेज एंड देन वील टेल यू वेर वी आर, एंड देन मे बी यू कैन विन सम टिकट्स टू द मूवी. भाई फ्री फूड, फ्री टिकट्स, वी एब्सोल्यूटली लव यू एट फनेजिया यार. इतना फ्री बीज और इतनी गिव अवेज कहाँ मिलेगा? नहीं तो नहीं मिलेगा ना. सो इफ यू वॉन्ट टू नो एंड स्टे अपडेटेड ऑन वेयर एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू बी, देन यू नीड टू फॉलो मी ऑन माई इंस्टा पेज. दैट्स लाइक सम सीक्रेट स्कूप. एंड वहां पे मेरा एक चैनल भी है जहां पे मैं सबको सीक्रेट स्कूप देती हूँ. एग्जैक्टली. तो अगर आप मुझे फॉलो करेंगे देन यू गेट स्पेशल स्पेशल इंफॉर्मेशन दैट एवरी वन एल्स डज नॉट गेट. वी विल गो इन टू दिस नेक्स्ट सॉन्ग. मैं एनी वेज बोलने वाली थी, बट मुझे आज किसी ने बताया कि भाई मैं आधे घंटे में इतनी, मैं हर 10 मिनट में इतनी बार एनी वेज बोलती हूँ ना. मुझे खुद भी नहीं पता होता कि मैं इतनी बार एनी वेज बोल रही हूँ. बट नाउ दैट दे हैव मेड मी रियलाइज इट, द मोमेंट आई सेड, मैंने कहा अरे यार फिर बोल दिया, अरे यार फिर बोल दिया. तो अभी एक स्पेशल प्राइज मेरी तरफ से आपके लिए, अगर आप मुझे काउंट करके बता सकें कि अगले आधे घंटे में मैं कितनी बार एनीवेज बोलती हूँ, तो आपको मैं एक स्पेशल प्राइज दूंगी मेरी तरफ से, नॉट थ्रू फनेजिया, मेरी तरफ से. ठीक है? तो करेक्ट काउंट बताना, मैं खुद भी काउंट कर रही हूँ. मे भी शायद मेरी काउंटिंग गलत हो, लेकिन जिसकी काउंटिंग मेरी काउंटिंग से मैच हो गई, देन आपको, आपके लिए मेरे लिए स्पेशल प्राइज, नहीं मेरी तरफ से आपके लिए स्पेशल प्राइज. तब तक के लिए ये गाना एंजॉय करिए, नॉट एनीवेज.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
3: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
2: Renew?
3: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
2: What better way to celebrate than with something timeless?
3: Visit Tanishq, Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
4: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com. To help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
5: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
6: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you are dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
7: Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho kisne jana.
8: Life ho ya health, kab kya ho jaye pata nahi. 13 saal tak Texas Primary Care Clinic ne jeeta aapka trust aur ab wahi trusted care urgent care services ke saath naye Kaiserway location par. Lunoxy Medical, founded by Dr. Mandeep Acharya. Adults aur bachchon ke liye primary care, urgent care, x-ray, CT scan, heart testing aur med spa. Sab kuch ek hi roof ke niche. Lunoxy Medical Urgent Care. Open 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
9: Is saal to kamaal ho gaya, hamara revenue double ho gaya.
10: Sir, acha hai. Lekin aapne tax planning kiya?
9: Nahi.
10: Bookkeeping updated hai?
9: Nahi.
10: Cash flow forecast banaya?
9: वो भी नहीं
10: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त
11: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो फॉर योर टैक्स प्लानिंग बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज विजिट agfintax.com कॉल 972-618-8555 एजी फिनटैक्स योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी
12: AG Fintechs led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
13: Dallas, are you ready? Jabu Times Group of Publications ab aa chuka hai digital media platform par. Kai million followers ke saath, both in English and Urdu. Led by the famous and fearless journalist Raja Zahid Akhtar Khan Zada, jinhone apni kalam se social injustice aur corrupt practices ke khilaaf bharpoor awaaz uthai. Dallas aur duniya bhar ki taaza tareen khabron ke liye The Jabu Times available hai ek click par. TheJabuTimes.com. For more details and advertisement, contact Raja Zahid Akhtar Khanzada 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
14: अजी सुनते हो सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे
15: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे
14: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा
15: हेलो तुम डैलस में हो यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो
14: सच में सब संभाल लेंगे
15: अरे सब कुछ वेडिंग हो हाउस वार्मिंग ग्रेजुएशन यू नेम इट दे डिलीवर वेन्यू फोटोग्राफी हॉस्पिटैलिटी सब कुछ एक ही जगह सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली
11: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770 Vanessa Events, your celebration partner.
16: Guys, आपको पता है कौन सा वक्त है? It is the वक्त of giving you the giveaway. हाँ जी, giveaway का time आ चुका है. और मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी इस पूरे आधे घंटे में मैं एक भी एनीवेज ना बोलूं, लेकिन एनीवेज के अलावा मुझे नहीं आता कि और कौन सा वर्ड बोला जाए. तो अगर आपके पास कोई अच्छा बेटर वर्ड है जो मैं मिक्स एंड मैच करके बोल सकूं तो ज़रूर मुझे कॉल करके बताइएगा. एनीवेज के अलावा भी और कौन सा ऐसा वर्ड है जिसको मैं एनीवेज के मीनिंग में यूज़ कर सकती हूँ. बाय द वे दिस डज नॉट काउंट टुवर्ड्स द नंबर ऑफ काउंटिंग्स ऑफ एनीवेज दैट आई वाज प्लानिंग ऑन डूइंग. Anyways, oh my goodness, फिर बोल दिया यार. देखो होता है ना, मतलब once you realize what you're doing, that's when it actually makes sense. तो without further ado, let's go ahead and I will tell you about the giveaway. पहला हमारा giveaway है फन पिज्जा किचन का. आपने अगर मेरा शो सुना है आपको पता ही है हम क्या करते हैं गिव अवे में. मैं एक इंग्लिश ट्यून या मिडल ईस्टर्न ट्यून या कहीं का भी ट्यून एक बजाऊंगी और वो ओरिजिनल गाना है और उसका जो कॉपी कैट बॉलीवुड सॉन्ग है आपको गेस करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो कॉपी करने में मास्टर हैं थोड़े से, यू नो मतलब कितने ज़माने पहले से हम करते आ रहे हैं, आज भी कर रहे हैं. देयर इज नो changing in that, but that's okay. We all learn by imitation. That is a socialization process, in case you didn't know. Even children learn like that. So one of these days we will also learn to make original music, just like we have learned to copy lots of amazing music. Anyways, but Fun Pizza Kitchen ka kya hai? Are you craving something cheesy with a desi twist? Fun Pizza Kitchen, where flavor meets fire. For all my veggie lovers, aap try kar sakte hain. Achari paneer pizza packed with that tangy achar punch and soft paneer melting magic. And for that spicy meat lovers, aap try kar sakte hain tandoori chicken pizza. It is pure smoky perfection straight from the tandoor to your taste buds and your dil. So whether you like it bold or beautifully balanced, there is a slice for you at Fun Pizza Kitchen. तो विदाउट फर्दर अडू मैं अब कोशिश करूंगी विदाउट फर्दर अडू ना दोबारा बोल सकूं. आप जीत सकते हैं $10 का गिफ्ट कार्ड. आपको रिडीम कैसे करना है भाई ये चीज मैं दोबारा आके बोलूंगी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में आई हैड अ लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजन बिकॉज आई वाज आल्सो काइंड ऑफ न्यू टू दिस होल गिव अवे सिचुएशन. तो मैंने आपको बोला दैट समबडी फ्रॉम फनेशिया इज गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू to redeem your gift card, lekin if you are a winner of Funasia ka giveaway, then you don't have to wait for us to contact you. You just straight away go to the restaurant within the next 7 days and redeem your coupon or your gift card and just tell them your name and your phone number and the details. They already have that stuff that we have taken from you. So nobody's gonna contact you. You just need to go there and redeem it, okay? That was my mistake. Anyways, guys, dekha fir bol diya. Here goes the song. और आपको पता है कौन हमारा नंबर क्या है 9722355555. And here goes the song. इसका कॉपी हिंदी बॉलीवुड कौन सा है आप बताइए. हाँ हाँ

0: for calling.
1: Hey.
0: Hi. First of all, tell me your name, and second of all, have you figured out the song?
1: Yeah, my name is Madhuri, and the song is out.
0: Yay! Congratulations! आप मुझे अपना नाम दोबारा बताएंगे?
1: Madhuri, Madhuri Mishra.
0: Okay, मैं आपको off air लेती हूँ, and then I will play this song in the meantime. और अब stay
1: okay,
0: on the line, and I'll give you, I'll take your info, okay? And guys, तब तक के लिए आप ये गाना enjoy करो.
2: मैं आखिरी गाना गा रहा हूँ और गाने में ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात. आओ ट्विस्ट करें द फुट ऑफ ऑथम.

लोग उदास रहना चाहते हो?

मेरा सबसे फेवरेट पार्ट पता है क्या है इस गाने का, जब वो लाइन नहीं आती, टू डू डू डू डू डू टू डू डू डू डू डू, दैट इज सो कैची. द इंटायर हुक ऑफ द सॉन्ग इज, आई फील लाइक दैट इज द मेन हुक, बिसाइड्स छैया छैया छैया, द रेपिटेशन बिल्कुल आपके दिमाग में एकदम वो ब्रेन वर्म जैसे बन जाता है, यू नो, लाइक इट्स ईयर वर्म जैसे बन जाता है, नॉट ब्रेन वर्म, ईयर वर्म, दैट्स वॉट इज कॉल्ड. ओके एनीवेज गाइज, हियर्स, देखा दोबारा बोल दिया एनीवेज, एनी ओहो, समबडी गिव मी अ डिफरेंट वर्ड अदर देन एनीवेज, सो आई कैन स्टॉप सेइंग द वर्ड एनीवेज, नाउ दैट आई हैव बिकम अवेयर ऑफ इट, आई नीड टू एक्सपैंड माई वोकैबुलरी अ लिटिल बिट. बट हियर इज सम अमेजिंग न्यूज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, आर यू रेडी फॉर इट? सरप्रीत सिंह जस्ट मेड वर्ल्ड कप हिस्ट्री, यू गाइज, डिड यू नो दैट? डिड यू नो दैट? आपको पता था? मुझे तो नहीं पता था. आई जस्ट सॉ इट ऑन द जगरनॉट्स इंस्टाग्राम पेज. आई फॉलो द जगरनॉट, दे आर रियली कूल. दे ब्रिंग टू अस साउथ एशियन न्यूज बट लाइक इंटरनेशनल न्यूज एंड लाइक रियली गुड न्यूज, यू नो, लाइक समथिंग टू बी प्राउड ऑफ मोस्टली. तो जगरनॉट राइट्स that New Zealand midfielder Sarpreet Singh, who is only 27 years old, is the first Indian origin and Sikh player to start in FIFA World Cup match, according to CNN. He was born in Auckland, New Zealand, to Punjabi parents, and Singh started training at the age of 7. He said he wanted to do his best to lift the game and to lift his name and the name of Indian people in World Cup stage, you know. That's pretty cool, yaar. Matlab, I didn't know ki he is the first Indian origin player to make it to the World Cup. I thought there was maybe one more person. I am terrible at sports. I was never into sports. I was the music one. I was the creative one. The artsy one. Okay? तो मुझे तो नहीं पता, बट अगर आपको पता है कोई और भी, then maybe we can tell CNN. According to CNN, he is the first Indian origin person to be in the World Cup. And here is an amazing song, and we will not say the word anyways. Ha ha.

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
4: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
3: Kya matlab?
4: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
3: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
4: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
3: Ab to karna hi padega, madam.
5: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
1: Yaar, boss ne fir se daant diya. Traffic alag. और ऊपर से ये स्ट्रेस।
6: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
1: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
6: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
1: ये क्या होता है?
6: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
7: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
2: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन available. The Texas Super Kings are here and the action is absolutely heating up. Don't miss a single thrilling moment. Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium. We have got electrifying matches on Thursday, June 18th, Saturday, June 20th, Sunday, June 21st. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.
8: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
9: It's Lawson.
8: किससे बात करूँ? सारी जानकारी कौन देगा?
9: It's Lawson.
8: Daddy, what is the law?
10: It's Lawson Travels for all your travel needs. Give them a call today. 214-631-2458. The travel experts. Lawson Travel.
11: नए दोस्त मजेदार लगते हैं क्योंकि उनकी कहानियाँ हमारे लिए नहीं होती।
2: दोस्ती, प्यार और फिर वही इमोशनल केओस। 2012 की सुपर हिट कॉकटेल के बाद एक नया ट्विस्ट, एक नई कहानी लेकर होमी अजजानिया इज बैक विद कॉकटेल 2, स्टारिंग शाहिद कपूर, कृति सैनन एंड रश्मिका मंदना। गेट रेडी एज द परफेक्ट कॉकटेल मिक्स।

0: Hi, this is Sharvari. You are listening to Fun Asia Radio.
1: Ippy the Hippie, and this is Ippy the Hippie, and you are listening to Fun Asia Radio on 104.9 FM. Guys, this is the time for our second giveaway of the day. और ये second giveaway है क्या? ये है the Flavor Lounge का. This is valid only on dine-in. So this is your chance to win a dal makhani or a dhaba style chicken curry at the Flavor Lounge restaurant located at Preston Road in Frisco. It is dine-in only. ठीक है, I've already said that. I'm going to say that again. Make sure आप इसको अगले एक हफ्ते के अंदर redeem कर लें, नहीं तो expire हो जाता है. ठीक है, और आपका information 24 से 48 hours में forward कर दिया जाएगा. So make sure you go to the restaurant and enjoy the free dal makhani and dhaba style chicken curry. साथ में naan या चावल भी order कर लेना, क्योंकि खाली खाली दाल तो खाई नहीं जाती. कल मुझे कॉल आई एक लिसनर की, उन्हें बोला पर मैं तो वीगन हूँ, मैं कैसे खाऊँ, व्हाट डू आई ईट. तो मैंने बोला भाई यार, दाल वाले को बोलना कि उसमें से मलाई हटा दे, उसमें से मक्खन निकाल दे, बाकी तो दाल तो वीगन ही होती है ना. We love our vegan food too. I love tofu and I love nutritionalists. But that's not what we are doing here right now. We are doing the giveaway. And the format is super simple. Main gaana bajaungi. Uska aapko Hindi version kaun sa hai, wo mujhe batana hai. Call karke at 972-235-5555. Haan, to ready hai? Ek, do, teen, let's go. It's super simple.

0: Hi, Funisha Radio. You're listening to Funisha Radio. Hi, first tell me your name, and second, do you have the answer? Are you? Hi, Funisha Radio.
1: Hello.
0: Hi.
1: The song name is कहीं करता होगा वो मेरा
0: आंसर बताने से पहले आई हैव टू टेल यू, आप एक महीने पहले, आप दो दिन पहले ही गिफ्ट कार्ड जीत चुके हैं ये वाला. सो आई एम सॉरी, आई हैव टू पास दिस ऑन. दिस इज, प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव नॉट वन दिस गिव अवे इन अ मंथ. ओके,
1: थैंक यू.
0: नो वरीज, थैंक यू फॉर कॉलिंग दो. आई नो यू हैव द करेक्ट आंसर. समबडी एल्स दिस टाइम.
2: हेलो.
0: हाय.
2: हाय.
0: First of all, tell me your name.
2: My name is Aditi.
0: Aditi, okay, Aditi. So, do you have the answer?
2: Yeah, the answer is koi karta hoga, kahi karta hoga, intezaar.
0: Yeah, congratulations! You have won the giveaway. Yeah, thoda gaake bhi suna do yaar, hamare listeners.
2: Nahi, awaaz bahut gandi hai.
0: Koi baat nahi, main gaa dungi saath mein. Chalo, dono milke gaate hain. Ready? 1, 2, 3. कहीं करता होगा वो मेरा इंतजार. Exactly. Congratulations. So I will take you off air. तब तक के लिए मैं बैकग्राउंड में ये गाना बजाती हूँ, ठीक है, फॉर आवर लिसनर्स, एंड देन आई विल टेक योर इन्फॉर्मेशन. स्टे ऑन द लाइन. ओके गाइज, एंजॉय.

हाँ जी गाइस, कहीं तो करता होगा वो मेरा इंतजार, ये मेरे भी सपने हैं। आई एम श्योर ऑल द सिंगल पीपल, आपके भी यही सपने हैं। भाई सिंगल पीपल से याद आया, देर इज कॉकटेल 2 रिलीजिंग टमोरो। आर यू गाइस एक्साइटेड अबाउट इट? आई एम लाइक सुपर सुपर एक्साइटेड अबाउट, बिकॉज यू नो व्हाई, इट इज सो करंट। उसका जो टॉपिक इज लाइक, इट्स नॉट जस्ट अ लव ट्राइंगल, इट्स लाइक एट वॉट पॉइंट ऑफ टाइम डज ए फ्रेंडशिप टर्न इन टू अ रोमांस, एंड एट वॉट पॉइंट ऑफ टाइम डज अ थर्ड पर्सन दैट यू नो समवन स्टार्ट्स मेडलिंग इन टू योर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेरी स्टेबल रिलेशनशिप एंड देन कंप्लीटली डिस्ट्रॉयज इट। आई एम टेलिंग यू, आई हैव बीन इन दैट सिचुएशन एंड इट इज नॉट फन, इट इज सो नॉट फन। बट मेरी बातें बाद में करेंगे, कॉकटेल 2 के बारे में थोड़ी बातें करते हैं। आफ्टर सुपर हिट सक्सेस ऑफ 2012 कॉकटेल, द ड्रामा रोमांस एंड फ्रेंडशिप आर बैक विद ए फ्रेश ट्विस्ट। गेट रेडी फॉर कॉकटेल 2 रिलीजिंग इन थिएटर्स ऑन June 19th, विच इज टूमोरो, June 10th के अवसर पर। स्टारिंग शाहिद कपूर, कृति शैनन एंड रश्मिका मंदाना। A new story, new emotions, and a brand new cocktail of love, friendship, and heartbreak awaits you. Don't not miss Cocktail 2 in theaters tomorrow. Woohoo! Well, उससे मुझे ये याद आया कि टुमारो वी आर गोइंग टू डू ए स्पेशल प्रोमो स्टफ। आई वुडंट कॉल इट एन इवेंट बिकॉज इट्स लाइक एट मल्टीपल लोकेशंस। आई एम रियली रियली एक्साइटेड अबाउट इट बिकॉज उसमें हम फ्री टिकट्स भी देने वाले हैं टू कॉकटेल 2 मूवी, एंड वी आर गोइंग टू बी ट्रेवलिंग ऑल ओवर DFW एंड गिविंग आउट दीज, एंड आई विल बी आस्किंग यू अ बंच ऑफ रिलेशनशिप क्वेश्चंस। दैट इज करेक्ट, बिकॉज Who makes me the relationship guru? Bhai, I have a lot of experience when it comes to all that. Love for the last 10 years, that's all I've been doing. Trying to find one, but unfortunately, koi milta hi nahi yaar. Is pagalpan ko jhelne ke liye na koi special person hi chahiye hoga. Hai na, abhi tak wo bana nahi hai. To jab milega mere ko is pagal ko jhelne ke liye, to zarur main aapko bataungi. Main apne pyare pyare listeners ko. Abhi tak koi bana nahi hai. Anyways guys, but stay tuned, or if you want more information on where exactly we will be tomorrow for that special promo event, you know what you should do? You should follow me on Instagram, because I have a special like a group for my fans and my followers where I actually tell them like inside scoop. Wink wink. तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @ipi.music on Instagram, ठीक है? तो follow and then tell me more stuff. Anyways guys, तो अरे यार दोबारा anyways बोल दिया। अरे यार तुम लोगों ने अभी तक बताया नहीं, what word should I use instead of anyways? I need a new word in my vocab. तो relationship से याद आया, कल हम लोग बात कर रहे थे whether a guy and a girl can be platonic friends, you know, assuming that they are both, you know, they are both heterosexual. Yes, of course, when that kind of a situation, when there is another different situation, then of course they can be a very amazing friends. I mean, that's no doubt in that. But when they are both straight, there's a guy and girl, they're both straight, can they be really close friends without affecting their personal relationships that they are already in? Which is, agar bandi ka koi husband hai aur ya bandi ki koi biwi hai, so will the biwi have a problem with the really close friend and wagaira wagaira is tarah se. So we got a lot of responses, and a lot of the younger folk, people, you guys all said that yes, it is quite possible for a girl and guy to be friends. I also agreed with it. But I still think that in order to have that kind of a very pure friendship between a straight guy and a straight girl, I feel like they need to have clear communication, which I normally do with all my friends. पहले से हमने relationship establish कर दिया कि भाई हम दोस्त ही बन के रहेंगे, उससे आगे कुछ नहीं होगा, तो सोचना भी मत, ठीक है? तो उसी से एक गाना सुनते हैं और फिर वापस आते हैं, and then I will tell you some more news from around the world.

तो गाइज दिस वॉज द सॉन्ग फ्रॉम कॉकटेल टू, दिस इज बंधु 2.0. दिस सॉन्ग गोज आउट स्पेशली टू जिमरान, क्योंकि जिमरान ने मुझे कुछ दिनों पहले बताया, हु इज माई रेगुलर लिसनर, कि उसने बोला कि एपी यू हैव टू प्ले द सॉन्ग. जिमरान इफ यू आर लिसनिंग, आई डोंट नो इफ यू आर, बट इफ यू आर, दिस सॉन्ग गोज आउट टू यू. थैंक यू फॉर री इंट्रोड्यूसिंग मी टू दिस सॉन्ग. हाँ, एनी वेज गाइज, अरे यार फिर एनी वेज बोल दिया क्या यार, अभी तक आपने मुझे नया वर्ड नहीं दिया. मतलब सब कॉल तो कर रहे हैं, दे आर ऑल वांट टू से द पोल, बट नोबडी इज गिविंग मी अ वर्ड विच आई कैन यूज इंस्टेड ऑफ एनी वेज. नाउ हैव टू ओपन द डिक्शनरी. ओके, या तो चैट जीपीटी से पूछती हूँ, व्हाट एल्स कैन आई यूज. चैट जीपीटी माय बेस्टी इन लाइफ. तो हम लोग जो बात कर रहे थे, विच वी स्टार्टेड यस्टरडे एंड द पोल इज स्टिल गोइंग ऑन माय इंस्टा पेज, विच इज कैन गर्ल्स एंड गाइज बी फ्रेंड्स. पीपल आर स्टिल कॉलिंग अप एंड टेल, यू नो, आंसरिंग दैट क्वेश्चन. सो यू नो व्हाट, लेट्स जस्ट कीप इट गोइंग. कैन गर्ल्स एंड गाइज बी प्लेटोनिक फ्रेंड्स. वन ऑफ द थिंग्स दैट आई एंडेड विद यस्टरडे वाज, एज लॉन्ग एज द इंटेंशन इज क्लियर, अगर आपकी जहनीयत साफ है, अगर आपके इंटेंशंस क्लियर है और आपके कोई सीक्रेट क्रशेस हैं नहीं, मतलब दूसरे पर्सन के तरफ, तो ज़रूर गर्ल्स एंड गाइज कैन बी प्लेटोनिक फ्रेंड्स. मेरे बहुत सारे प्लेटोनिक फ्रेंड्स रह चुके हैं इन द पास्ट, लेकिन टू बी ऑनेस्ट देर वॉज वन टाइम जो मेरा बचपन का बहुत ही बहुत ही बहुत ही प्यारा दोस्त था, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, बट वी हैव बिन फ्रेंड्स सिंस fourth grade, and I'm talking like, how old are you in fourth grade? Like 9 years old, I believe. तो मैं उसको उतने साल से जानती हूँ, and there was absolutely nothing between us except one night we were all hanging out as a group, और फिर एक एक करके सारे friends चले गए, and this person and I, we were just hanging out by ourselves, and I felt absolutely safe, and I'm talking like I was 30 years old at this point of time. तो मतलब I have known this guy for 3 decades. And this person, he, you know, he makes a move on me. And I'm like, excuse me, bro, back off. Maine tujhe sari zindagi us nazar se nahi dekha. What is this? Where is this coming from? Tumhari shaadi ho chuki hai. Please keep your hands off me. So, I mean, I am in two minds. I have had really good male friends. And I've also had really good male friends who have made a move on me. Even while they are married. So that is not a good thing. Okay. But let's do this next song. And then we will come back and share some more stories.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग।
1: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
2: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
3: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
2: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
4: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
1: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
5: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
6: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
7: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.
8: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
9: लिया।
8: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
9: नहीं आया।
8: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है। इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनाडा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर। No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jumani at Sonata Inc. 972-863-772. That's 972-863-772.
2: Visit www.sanadainc.com today.

0: minutes is coming your way.
1: Vishal and Shekhar.
2: Here we go.
0: That's right. Vishal and Shekhar Live. Get ready for an electrifying evening filled with songs you've danced to, celebrated with, and fallen in love listening to. Sunday, July 12th at the Curtis Culville Center in Garland. Tickets on sale now. CashPatelProductions.com. The Super Hit Tour with Vishal and Shekhar.
3: Swag se karenge sabka swagat.
4: एंड वी आर बैक गाइज. आपको बताए 21st को क्या है? 21st को है वर्ल्ड म्यूजिक डे. सारे दिन गाने ही बजने चाहिए वर्ल्ड म्यूजिक डे के दिन, बिकॉज अगर म्यूजिक नहीं होगा आप समझ रहे हो आपकी जिंदगी में क्या होगा. एवरीथिंग इज गोना बी सो डेड. जितनी भी फिल्में हैं दे वुड बी सो बोरिंग. सिर्फ लोग बातें ही बातें करते रहेंगे. रेडियो पे आप ड्राइव पे जब जा रहे होंगे कुछ गाना वाना कुछ नहीं बजेगा. मतलब इमेजिन लाइफ वुड बी सो डेड एंड सो फ्लैट विदाउट म्यूजिक इन लाइफ, राइट? सो वी शुड सेलिब्रेट द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस मोस्ट अमेजिंग थिंग कॉल्ड म्यूजिक. एंड देयरफॉर जून 21st इज वर्ल्ड म्यूजिक डे, क्योंकि हर सॉन्ग, हर ओकेजन, हर फीलिंग के लिए एक गाना होता है, चाहे वो प्यार का हो या दिल तोड़ने वाला गाना हो या किसी को गुस्सा आ रहा है गाना या फिर एकदम यू नो रिबेलियस वाली फीलिंग हो. भाई वी वॉन्ट टू नो योर फेवरेट ट्यून्स एंड यू कैन नॉमिनेट योर फेवरेट ट्यून्स फ्रॉम जून 1st टू आई थिंक इट्स स्टिल गोइंग ऑन. Just go on to one of our social media pages on Instagram or Facebook or even on our website, funisha.net, and then you can nominate your favorite songs from the different genres or categories. And if your song gets selected and it makes it to the top picks, then you will win some special prizes. Wah! शानदार शानदार प्राइजेस हम सबको पसंद है. मतलब चाहे वो 4 साल के बच्चे क्यों ना हो और 40 साल के अंकल और आंटी क्यों ना हो. मैं भी ऑलमोस्ट 40 की हो गई हूँ लेकिन कोई बात नहीं. अरे ओ नो, मैंने रेडियो पे अपनी एज बता दी. ओ एम जी, ये क्या अनर्थ हो गया. मैं तो बड़े अच्छे से मास्क कर रही थी उसको. ओ नो, यू हैव नॉट हर्ड दैट, आई डिड नॉट से इट ऑन द रेडियो. एनी वेज गाइज, मेरे पास अरे यार फिर एनी वेज बोल दिया. देखो, next song goes out to Zimran, who is such a sweet kid, and he has requested for Mashuka. So this is from Mashuka from Cocktail 2.

एंड गाइज वी आर बैक. अभी मुझे कॉल आई फ्रॉम मलिक जी हु इज ऑल्सो वन ऑफ माई रेगुलर लिसनर्स. थैंक यू सो मच मलिक जी. अभी मुझे कह रहे ही इज लिसनिंग टू माई शो ऑल द वे फ्रॉम LA और मुझे अभी उनकी अब्रप्टली कॉल रखनी पड़ी क्योंकि गाना खत्म हो गया एंड आई हैव टू कम बैक ऑन एयर. बट यू गाइज डिड यू नो दैट जून मलिक जी अगर आप ये सुन रहे हैं ना मेरी आवाज सुनो, अगर आपको मेरी आवाज जा रही है, वैसे मुझे इतनी जोर से बोलना तो नहीं चाहिए क्योंकि माइक्रोफोन्स हैं और मतलब यू नो रेडियो है एंड एवरीथिंग, बट एनीवेज थोड़ा ड्रामेटाइज करना चाहिए लाइफ को, अदरवाइज लाइफ वुड बी सो बोरिंग एंड फ्लैट. थोड़ा ड्रामा नहीं भरेंगे तो क्या फन, राइट? मलिक जी अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप जरूर मुझे 5 मिनट में कॉल करिए. Once I cue another song, then आप मुझे अपनी स्टोरी शेयर करिए एंड देन आई विल शेयर इट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. एनीवेज अरे यार फिर एनीवेज बोल दिया. बट आपने काउंट कर रहे हो ना कि मैंने कितनी बार एनीवेज बोला? रिमेंबर मैं आपको स्पेशल प्राइज देने वाली हूँ अगर आपके नंबर्स मेरे नंबर से मैच कर गए. वैसे मैं तो काउंट नहीं कर रही बट यू कैन काउंट एंड टेल मी. तो मैंने ना आज न्यूज़ देखी और उस न्यूज़ में आया था जून 15th मार्क्स 25 years of Lagaan. Did you know that? Lagaan is one of my all-time favorite movies. Like, all-time favorite movies. I absolutely love that movie. अभी भी कभी मुझे मौका मिलता है ना, 3 घंटे मेरे पास पूरे एकदम वैसा time होगा तो मैं जरूर जाके Lagaan देखूंगी. I mean, I like Dhurandhar also. 3 घंटे है तो आपके पास option है, या तो Dhurandhar देखो या Lagaan देखो. But somehow वो जो Lagaan में जो वो दर्द वाली वो feeling आती है ना कि भाई वो उनके हाथ से उनकी ज़मीन छिन जाएगी, उनका घर छिन जाएगा, उनकी खेती छिन जाएगी, तो मुझे उससे मेरे को ऑलमोस्ट रोना आ जाता है हर बारी में उसको देखते. मैंने कहा ओ नो ओ नो. खाने को रोटी नहीं, पहनने को खपरा नहीं, 3 गुना लगान लेगा. I mean those dialogues have imprinted in my brain like I don't know photocopy machine or something. So तो वो गाना सुनते सुनते तो मुझे ये ध्यान आया कि भाई जितने भी स्पोर्ट्स के ऊपर मूवीज बनी है ना बॉलीवुड में, आई थिंक लगान आई थिंक नहीं फॉर मी लगान इज डेफिनेटली माई फेवरेट बिकॉज इट इज सेट एट अ डिफरेंट टाइम पीरियड. ठीक है बाकी मूवीज में भी थोड़ा पैशन है, दैट इज 1983, बट फॉर मी लगान इज माई फेवरेट. एंड देन एक्चुअली एक गाना मैं बजाती हूँ और उसके बाद गाना बजाने के बाद व्हेन यू गाइज कम बैक देन आई विल टेल यू रियली रियली रियली जूसी स्कूप अबाउट माई डेटिंग लाइफ रिलेटेड टू दी स्पोर्ट्स मूवीज. आई एम टेलिंग यू It's totally related. So you have to stick around for a little bit, okay? So, tab tak ke liye ye gaana suniye.

Guys, we are back, and the song that you had just heard was Dil Ka Jo Haal Hai from the new movie Besharam, and the song just released like 4 days ago. So if you like that song, you should definitely go check it out. Bhai, we are 9:21 on the clock, lekin abhi bhi hamare paas around 40 minutes of really incredible music and stories hai. So अगर आपको अपनी स्टोरी शेयर करनी है या समथिंग लाइक दैट, इफ यू हैव अ थॉट यू कैन कॉल मी ऑन 972-235-5555. भाई अभी गाने बजाते हुए ना, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माय रेगुलर लिसनर मलिक जी, हु इज फ्रॉम आई बिलीव ही इज फ्रॉम DFW, बट करेंटली ही इज इन LA, और वो LA से मेरा शो सुन रहे हैं. एंड आई एम सो हैप्पी कि भाई आप LA में भी मेरा शो सुन रहे हैं. आई लव इट, थैंक यू फॉर टेकिंग माई वॉइस ऑल अक्रॉस अमेरिका. मैं कभी नहीं गई, मैं ऑनेस्टली अमेरिका में सिर्फ दो जगह गई हूँ, दैट इज़ न्यूयॉर्क एंड आई हैव बिन इन डैलस, दैट्स अबाउट इट. अदर देन दैट मेरे को थोड़ा अमेरिका घूमना चाहिए, पर भैया अभी मेरे पास पैसे हैं नहीं, जब आएंगे तब मैं ज़रूर जाऊँगी, ठीक है. एनी वेज, अरे यार फिर एनी वेज बोल दिया, बट मुझे कोई नया वर्ड तो दो यारो. तो मलिक जी ने मुझे कॉल करके बोला, क्योंकि हम रिलेशनशिप्स एंड डेटिंग लाइफ एंड उस वगैरह वगैरह की बात कर रहे थे, तो ही शेयर्ड हिज लिटिल लव स्टोरी विद मी. तो बहुत साल पहले व्हेन ही हैड टू मूव टू द US, ही गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, उनका वीज़ा वगैरह सब लग गया, बट देन ही वॉज इन अ रिलेशनशिप विद दिस गर्ल एंड दे वर लाइक एक्सट्रीमली इन लव, मतलब एकदम प्यार व्यार, शादी वादी भी करने वाले थे, लेकिन जब उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली, अपेरेंटली शी वॉज नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट. मतलब शी, उनकी जो नेगेटिव साइड थी, उनके जो रेड फ्लैग्स थे, वो बाहर आ गए एक करके धीरे धीरे. उन्होंने मलिक जी का पासपोर्ट छुपा दिया, so he doesn't go abroad, but then he found his passport again and then some things happened and Malik ji was like, listen, हमें करियर बनाना पड़ेगा, करियर बनाने के लिए थोड़ा तो जाना पड़ेगा, मैं जाता हूँ कुछ सालों तक, अच्छे से काम वाम करता हूँ, फिर मैं वापस आ जाऊँगा and I'll come and marry you. But this girl, apparently she had no patience, और खुंदस में आके, गुस्से में आके उसने किसी और से शादी कर ली, ठीक है. जब उन्होंने किसी और से शादी कर ली, उनके साथ उनका बच्चा भी हो गया, सब हो गया, फिर you know, now she is regretting that marriage and now she is trying to contact Malik ji again. Malik ji ka dil toot gaya jab wo kuch saal baad wapas gaye apne ghar and he went back to his hometown and then he was like, arre

नाउ शी इज रिग्रेटिंग दैट मैरिज एंड नाउ शी इज ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट मलिक जी अगेन. मलिक जी का दिल टूट गया जब वो कुछ साल बाद वापस गए अपने घर एंड ही वेंट बैक टू हिज होम टाउन एंड देन ही वॉज लाइक, अरे तुमने शादी कर ली, तुमने मुझे बताया भी नहीं. कहती है तुम चले गए, मैंने शादी कर ली खुंदस में आके एंड मलिक जी का दिल टूट गया. कहते हैं मैं तो वहाँ पे करियर बना के थोड़े पैसे वैसे कमाने गया था ताकि मैं आके तुमसे शादी कर सकूँ एंड वी कैन हैव अ गुड लाइफ टुगेदर. एंड शी सेड नो, आई हैव मूव्ड ऑन, आई हैव मैरिड. लेकिन गेस वॉट, आफ्टर सो मेनी ईयर्स शी केम बैक इन टू हिज लाइफ एंड देन शी इज ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट हिम अगेन. नाउ दैट शी इज मैरिड, शी हैज़ अ किड एंड शी इज रिग्रेटिंग हर मैरिज. ओके, सो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम आई हैव हर्ड दिस काइंड ऑफ अ स्टोरी. वैसे मलिक जी, मैंने बहुत बहुत लोगों से यही एग्जैक्ट सेम स्टोरी सुनी है. खुंदस में आके गुस्से में आ गए, हम किसी और से शादी कर लेते हैं एंड देन वी रियलाइज दैट नहीं यार, दैट वॉज एन इम्पल्सिव डिसीजन विच वी प्रॉबेबली शुडंट हैव टेकन. यू नो वॉट काइंड ऑफ लव इज दैट, कि आप लव के अपने पार्टनर के ऊपर पाबंदियां डाल रहे हो. आई मीन आई डोंट थिंक दैट इज रियल लव, वे यू आर नॉट अलाउविंग योर पार्टनर टू ग्रो इन लाइफ. यू नो इफ यू रियली लव समवन देन यू गिव देम ऑल ऑफ द सपोर्ट एंड द हेल्प दैट दे नीड सो दे कैन बिल्ड देम सेल्व्स अप. एंड यू नो व्हेन अ रिलेशनशिप ग्रोज, व्हेन अ पार्टनर ग्रोज इन अ रिलेशनशिप, दे आर सपोज टू टेक यू विद देम सो बोथ ऑफ यू कैन ग्रो टुगेदर. यू नो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अगर आपका पार्टनर आगे जा रहा है, करियर एक्सपैंड कर रहा है, आप उनसे गुस्से में आके छोड़ ही दो. आप उनको सपोर्ट करो ताकि आप भी साथ में ग्रो कर पाओ. यू नो एंड वाइस वर्सा, अगर पार्टनर ग्रो कर रहा है देन यू शुड मेक श्योर दैट यू आर यू नो टेकिंग योर पार्टनर हु हैज़ बिन सो सपोर्टिव अलॉन्ग विथ यू फॉर द राइड, बिकॉज देन इट्स अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप. देन यू हैव बिन थ्रू थिक एंड थिन, एवरी थिंग, ऑल द गुड थिंग्स एंड ऑल द बैड थिंग्स टुगेदर. एनी वेज, मलिक जी ने मुझे रिक्वेस्ट किया एक गाना बजाने के लिए जो था तेरी मेरी प्रेम कहानी फ्रॉम बॉडी गार्ड, विच इज़ द अल्टीमेट यू नो लव एंथम. हाउएवर मलिक जी, ये मेरी तरफ से गाना आपके लिए, बिकॉज आई थिंक यू शुड नॉट गेट हंग अप ऑन समवन हु वॉज अ कम्प्लीट रेड फ्लैग. मैंने मलिक जी को बोला कि भाई डोंट गेट हंग अप ऑन दिस गर्ल बिकॉज क्लियरली शी इज़ द रेड फ्लैग इन दिस सिचुएशन. एंड थैंक गॉड आप उसकी सिचुएशन में नहीं पड़े. एक अभी आपने अपना करियर सेक्रीफाइस करके शादी कर भी ली होती, पता चले 2 साल बाद कोई और पाबंदियां डाल देते, कुछ और हो जाता, कोई और टॉक्सिक सिचुएशन आ जाती, मे बी दिस वॉज नॉट मेंट टू बी. तो ये गाना मेरी तरफ से आपके लिए, फॉर माई फ्रेंड. Okay, enjoy this.

दिस नेक्स्ट पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय पेज 3 ईटरी. अगर आपको कबाब्स खाने हैं या फ्लेवरफुल चाट खाने हैं और रिफ्रेशिंग मॉकटेल्स ट्राई करनी है, देन यू हैव टू गो टू पेज 3 ईटरी एट हब 121. दिस इज वेयर बोल्ड इंडियन स्ट्रीट फूड मीट्स modern flair. Whether it's brunch, lunch, dinner, date night, foodie meetup, they bring the perfect mix of flavor, energy and vibrant vibes. Visit page 3 eatery at hub 121 or visit their website at page3eatery.com. guys, jaane se pehle I was talking about Lagaan as one of my most favorite like sports movies because the emotion and jo dukh ke saath wo khelte hai na, it's not just about the sports anymore, it's their entire lives. Unki puri livelihood jaane wali thi, wo pure ji jaan se wo khelte. Jab wo bola ek chhakka aur maar de, bas ek run aur le le, kya naam tha uska, kachda, ek run aur le le kachda, ek run, matlab वो पैशन, वो जो फीलिंग है ना, वो उसी मूवी में आ सकती है और किसी मूवी में आई नहीं वैसी उतनी वाली फीलिंग. तो मूवी देखते देखते मैं, मतलब ये न्यूज़ सुनते सुनते मुझे ये याद आया कि भाई दैट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज. देन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट, यू नो माय ब्रेन इज़ ओवर एक्टिव, तो आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट ऑल दी अदर स्पोर्ट्स मूवीज. देन दैट रिमाइंडेड मी ऑफ 1983. और जब हम डेटिंग की बात कर रहे हैं, दिस इज़ माय स्टोरी बाय द वे गाइस, दिस इज़ फॉर माय स्पेशल लिसनर्स. तो वेन आई वॉज इन कॉलेज, ठीक है, एक टाइम पे ना, आई थिंक आई वॉज लाइक 21 ईयर्स ओल्ड एंड आई वॉज अ डी यू स्टूडेंट. तो हमें, यू नो, कॉलेज का लास्ट डे था आई बिलीव. तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं, यू नो, वी वर ऑल इन अ गर्ल्स कॉलेज एंड वी वर लाइक, यार आज मुझे घर जाने का मन नहीं कर रहा. तो वी वुड डू दी स्लीप ओवर्स एट ईच अदर्स हाउसेज. तो आज हमने डिसाइड किया एक टाइम पे कॉलेज के लास्ट डे पे, यार लेट्स हैव अ स्लीप ओवर. इंस्टेड ऑफ गोइंग टू ईच अदर्स हाउस, हम घर ही नहीं जाते, हम कहीं शहर में घूमते रहते हैं आवारा पंछी की तरह, आवारा भंवरे की तरह ऐसे ही घूमते रहते हैं. तो लेकिन जाएंगे कहाँ, पूरी रात घर नहीं जाएंगे तो जाएंगे कहाँ. तो पहले तो हम लोग, वी वेंट टू दिस प्लेस कॉल्ड कैफे मॉरिसन, विच वॉज लाइक दिस लिटल नाइस जॉइंट एट साउथ एक्स बोल के एक मार्केट था, वहाँ पे कैफे मॉरिसन डेडिकेटेड टू जिम मॉरिसन, प्लेइंग डोर्स म्यूजिक ऑल नाइट लॉन्ग. सो वी सैट देयर, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम. देन आर अदर फ्रेंड्स जॉइंट, मेरी फ्रेंड्स के बॉयफ्रेंड्स भी आ गए. तो हम लोग सब आके, मतलब वी वर ऑल हैंगिंग आउट, इट वॉज अ बिग ग्रुप, ठीक है. फिर हमने डिसाइड किया अब जाएंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ, कुछ पता नहीं है, किसी के घर नहीं जाना, कोई अकेले रहता नहीं था, सब पेरेंट्स के साथ रहते थे, कहाँ जाएंगे. तो एक किसी को दिमाग में आया कि पता है वी शुड गो टू निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन. मैंने कहा भाई और कहीं नहीं जाएंगे तो निज़ामुद्दीन क्यों जाएंगे यार, वहाँ पे क्या रखा है. कहते नहीं नहीं वहाँ पे देयर इज अ कैफे, बिल्कुल निज़ामुद्दीन के अंदर ही है, बट दैट्स अ 24 आवर्स कैफे, वहाँ पे 24 घंटे वो कैफे खुला रहता है, आप सारी रात बैठ सकते हैं वहाँ पे. मैंने कहा इट वॉज फॉल, ठीक है, आई मीन इट वॉज काइंड ऑफ कोल्ड एट नाइट. चलो ठीक है, वेदर भी ठीक है, मतलब दिन में गर्मी थी, रात में बहुत ठंड थी. मैंने कहा चलो इट्स फाइन. सो ऑल नाइट वी स्पेंड एट निज़ामुद्दीन कैफे. अभी मैं एक गाना बजाती हूँ, व्हेन यू कम बैक फ्रॉम द ब्रेक देन आई विल टेल यू व्हाट हैपेंस विद द रेस्ट ऑफ द स्टोरी. एक एड भी बोलूंगी, बट तब तक के लिए आप ये गाना सुनिए.

भाई नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी के लिए थोड़ा दिल संभाल लेना. दिल संभालने से याद आया, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. हाउ मच टाइम डज योर डॉक्टर स्पेंड विद यू? 5 मिनट, 10 मिनट? लेकिन पैशन प्राइमरी हेल्थ केयर में आपका अपॉइंटमेंट 30 मिनट्स के लिए रहेगा, बिकॉज ट्रूली अंडरस्टैंडिंग योर हेल्थ टेक्स टाइम. एट पैशन हेल्थ यू आर नॉट जस्ट अ पेशेंट, योर फैमिली. फॉर यू, फॉर योर फैमिली एंड फॉर द हेल्थ ऑफ आर कम्युनिटी, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. एंड दैट्स नॉट ऑल, दे आर एक्चुअली हायरिंग, दे आर ग्रोइंग. इफ यू आर ए प्राइमरी केयर डॉक्टर, एंडोक्रिनियोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, साइकियाट्रिस्ट, एंड आर यू लुकिंग फॉर फुल टाइम और पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज, देन यू नीड टू सेंड देम योर CV एट पैशन हेल्थ फिजिशियंस at gmail.com or text 217-454-4639 for more info. Ya fir you can also visit passionhealthphysicians.com or text 214-666-6259. So let's continue my story. तो हम लोग ऐसे ही निजामुद्दीन में विल्लो की तरह बैठे हुए हैं. 6 लोगों का ग्रुप है हमारा, 4 गर्ल्स एंड 2 गाइज. 2 ऑफ माई फ्रेंड्स हैड बॉयफ्रेंड्स, सो वी वर ऑल अ वेरी वेरी गुड ग्रुप इवेंट, आई मीन ओवरऑल. सो वी वर ऑल सिटिंग देयर ट्राइंग टू किल टाइम. चाय भी पी ली, कॉफी भी पी ली, खाना भी खा लिया, सब हो गया. व्हाट आर वी गोना डू लाइक ऑल नाइट एट दिस कैफे? ओके, सो एनीवेज ऐसे चलते चलते हुआ, टाइम गुजर गया. एंड रात के अराउंड 11:30 बजे कुछ था, मेरे सामने सामने वाले टेबल पे राइट अक्रॉस फ्रॉम अस दीज टू बॉयज दे केम एंड सैट. वन ऑफ देम वॉज अ वेरी वेरी वेरी वेरी गुड लुकिंग बॉय, एंड ही वॉज, आई एम टेलिंग यू, वेरी वेरी गुड लुकिंग. वेन आई से वेरी गुड लुकिंग, आई मीन आई हैव टू एम्फसाइज दैट लाइक 4 टाइम्स. एंड देन आई हैड आई कॉन्टैक्ट विद दिस बॉय. मैंने कहा ओ आई कॉन्टैक्ट, समथिंग जूसी इज अबाउट टू हैपन राइट हियर. फिर एनी वेज फिर हमने बोला, मैंने अपनी फ्रेंड को बोला, यार पूजा दैट पर्सन इज सो क्यूट, हम लोग उनको बुलाएं यहाँ पे हमारे टेबल पे बैठने के लिए. पूजा कहती है मैं नहीं बुला रही, आई डोंट हैव द कॉन्फिडेंस, तू बोल जाके. मैंने कहा हाँ हाँ मैं बोलती हूँ ना, मुझे हर चीज़ में कॉन्फिडेंस होता है, आई एम तो लाइक यू नो बॉर्न कॉन्फिडेंस भाई. इपी एंड कॉन्फिडेंस गो हैंड इन हैंड. तो मैंने बोला हे गाइज डू यू वॉन्ट टू जॉइन अस एट आवर टेबल? एंड देन दे वर लाइक श्योर. देन दे केम एंड सैट. We had a nice conversation as a group. So now there were 8 people basically. And we were all talking, had a good time. Phir kuch ek do ghante baad, they all left. Turns out that both of those guys, they actually knew my friend's boyfriends because they went to North Campus ke Hindu college mein. You know, they, or one of them was from KMC, one of them was from Hindu. So they knew each other because North Campus mein everyone knows everyone. So we were South Campus girls. We were like South Delhi girls and they were North Campus boys. So we were like, chalo, theek hai, it's fine, whatever. So they knew each other. Phir kuch din aise hi nikal gaye. 2-3 din baad, I got a call from an unknown number, okay? And on the other side, there is this boy and he goes like, hey, guess what? Who is this? Maine kaha, who is this? Kehte, you should guess. I have your number. Maine kaha, fir I figured it out. It was him. I was like, where did you get my number? He's like, I don't want to tell my resources. I will tell you more about this story. But let's listen to a song. We only have about like 13 minutes left. So I really want to finish the story. But uske pehle ek gana.

राइट गाइस, सो वी आर बैक. तो आप अभी मुझे कॉल आई फ्रॉम वन ऑफ माय कॉलर्स हु वाज लिसनिंग, और वन ऑफ माय लिसनर्स हु वाज लिसनिंग टू द रेडियो शो. तो उन्होंने बोला कि भाई क्लाइमैक्स इसका ये होगा कि वो बंदा आपका हस्बैंड बन गया. मैंने कहा यार अगर वो होता तो बड़ी प्रिडिक्टेबल हो जाती स्टोरी. वो बॉलीवुड की स्टोरी होती है, मेरी स्टोरी अनप्रिडिक्टेबल है. आई एम टेलिंग यू रियल लाइफ इज नॉट बॉलीवुड. बॉलीवुड इज इंस्पायर्ड अ लॉट फ्रॉम रियल लाइफ, बट रियल लाइफ इज वे मोर जूसी देन यू कैन इमेजिन. एंड देन जूस इज नॉट जस्ट इम्पॉर्टेंट, फाइबर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो ईट योर फ्रूट गाइज, डोंट जस्ट ड्रिंक द जूस. एनी वेज, तो अरे यार फिर एनी वेज बोल दिया, कोई बात नहीं. एनी हू, हम आगे बढ़ते हैं. तो क्या हुआ, कुछ दिनों बाद उनका उसका कॉल आया. ठीक है, उसने कॉल करके ही वॉज लाइक ओ ब्ला ब्ला ब्ला, फ्लर्टिंग फ्लर्टिंग, फोन कॉन्वर्सेशन वगैरह वगैरह. उस टाइम पे देर वॉज नो इंस्टाग्राम, देर वॉज नो सोशल मीडिया, देर वॉज अ वेरी थका हुआ सोशल मीडिया कॉल ऑर्कुट. एंड फेसबुक वॉज देयर, बट पीपल वर नॉट रियली दैट एक्टिव ऑन फेसबुक. बट इट वॉज काइंड ऑफ लेम, ऑनेस्टली इट वॉज प्रेटी लेम, इट वॉज नॉट दैट फैन. अभी जैसे इंस्टाग्राम पे यू कैन डीएम समवन और स्लाइड इन टू समवन्स डीएम्स एंड स्टफ, दैट वॉज नॉट अ थिंग. सो एनी वेज, तो उन्होंने कॉल किया, कॉल करके वी स्टार्टेड टॉकिंग फ्लर्टिंग. एंड देन ही सेड ओके आई वुड लाइक टू टेक यू आउट ऑन अ डेट, डू यू लाइक चाइनीज फूड? मैंने कहा हाँ आई डू लाइक चाइनीज फूड. कहता ओके आई विल कॉल यू ऑन अनदर डे एंड देन वी कैन सेट अप समथिंग. मैंने कहा ठीक है. फिर उसके बाद बहुत दिन हो गए, बहुत दिन तो नहीं मतलब 3-4 दिन हो गए. 3-4 दिन बाद वन मॉर्निंग आई वॉज नॉट इवन एक्सपेक्टिंग दिस कॉल एंड आई वॉज ड्रेस्ड लाइक एब्सोल्यूटली आई डोंट इवन नो. इट वॉज लाइक कुर्ता विथ जीन्स विथ फिंगर ग्लव्स, यू नो फिंगर ग्लव्स क्या होती है, वो जो ग्लव्स में जिसकी उंगलियाँ नहीं कटी होती. कुछ अलग ही सीन चल रहा था, वो भी कलमकारी वाला कुर्ता, साथ में गले में एक पर्पल कलर का स्कार्फ, ऑल स्टार कॉन्वर्स के जूते, फटी हुई जीन्स. आई वॉज लुकिंग लाइक एब्सोल्यूटली डिजास्ट्रस एंड माई हेयर वॉज नॉट हैपनिंग. आई हैड नॉट इवन वोन माई लेंसेज, देर वॉज नो मेकअप. आई वॉज जस्ट आउट एंड अबाउट माई डे बिकॉज इट वॉज अ लॉन्ग डे. एंड दिस बॉय कॉल्स मी अप, asks me out on a date, and like a fool I also said yes I would totally go on a date with you. And then I went on a lunch date with this guy. He took me to a nice Chinese restaurant. We had a nice conversation, then we realized we are totally not into each other because he liked different kinds of girls who were like very GK South Delhi type prim and proper girls, you know, ballerina shoes, straight hair wagera wagera, you know, high maintenance. And I was like a jhalli, like always. So I was like, nahi yaar, mere type ka bhi nahi hai. Maine usko pucha, tujhe life mein kya karna hai? To usne bola ki, mujhe life mein cricket khela, I'm gonna be a cricketer. I play for Delhi and I play Ranji. Maine kaha, sahi hai, good, good for you, you play Ranji. Bhai, main to, I don't know anything about sports, so it's not going to work out. So anyways, तो वो स्टोरी वहीं की वहीं ख़त्म हो गई. ठीक है, लेकिन कुछ साल बाद गेस व्हाट क्या होता है गाइस, मैं कुछ साल बाद अपना टीवी खोलती हूँ और टीवी खोल के मैं ऑन करती हूँ टीवी. गेस टीवी में कौन है? दिस बॉय हु इज नाउ ए बॉलीवुड एक्टर. मैंने कहा OMG स्टॉप, ये यहाँ पे एंड ही इज इन अ प्रिटी प्रोमिनेंट बॉलीवुड मूवी. एंड द रीजन वाई आई वॉज सेइंग इट इज बिकॉज ही वॉज इन अ स्पोर्ट्स बॉलीवुड मूवी. आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू who this actor is, but I went on a date with this Bollywood actor before he became a Bollywood actor, and I think that counts for something, right? Usi se aap usse us story se jaliye kyunki not everybody can say hey I went out with a Bollywood actor, and aap ye gana enjoy kariye. Thank you so much, we hope you had fun tonight, and this is it from me. This is your host AP the Hippie and you are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. Agar aapko story meri pasand aayi and you want to hear more updates like this, more juicy scoop, you can follow me on my Instagram ap.music, and there is a channel there too, you can follow me on that. Anyways, tab tak ke liye aap ye gana enjoy kariye. Good night, I will see you next week, next Monday. Bye. आग तो आपके आपकी लग रही होगी कि भाई हमने तो बॉलीवुड एक्टर को डेट नहीं किया, एपी ने कर लिया.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
3: इट्स लॉसन।
2: किससे बात करूँ, सारी जानकारी कौन देगा?
3: इट्स लॉसन।
2: डैडी, व्हाट इज द लॉ?
4: इट्स लॉसन ट्रैवल्स फॉर ऑल योर ट्रैवल नीड्स। गिव देम अ कॉल टुडे 214-631-2458। द ट्रैवल एक्सपर्ट्स, लॉसन ट्रैवल।
5: द टेक्सास सुपर किंग्स आर हियर एंड द एक्शन इज एब्सोल्युटली हीटिंग अप। डोंट मिस अ सिंगल थ्रिलिंग मोमेंट। Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium. We have got electrifying matches on Thursday, June 18th, Saturday, June 20th, Sunday, June 21st. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.
6: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications ab aa chuka hai digital media platform par. Kai million followers ke saath, both in English and Urdu. Led by the famous and fearless journalist Raja Zahid Akhtar Khanzada, jinhone apni kalam se social injustice aur corrupt practices ke khilaaf bharpoor awaaz uthai. Dallas aur duniya bhar ki taazatareen khabron ke liye The Jago Times available hai ek click par, thejagotimes.com. For more details and advertisement, contact Raja Zahid Akhtar Khanzada 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
7: नए दोस्त मजेदार लगते हैं क्योंकि उनकी कहानियां हमारे लिए नहीं होती।
8: दोस्ती, प्यार और फिर वही इमोशनल केओस। 2012 की सुपरहिट कॉकटेल के बाद एक नया ट्विस्ट, एक नई कहानी लेकर होमी अजजानिया इज बैक विद कॉकटेल 2, स्टारिंग शाहिद कपूर, कृति सैनन एंड रश्मिका मंदना।
9: गेट रेडी एज द परफेक्ट कॉकटेल मिक्स

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट डैलस में रेडियो का डैड फनीशा 104.9 FM
1: Yeah, it's coming up.

0: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
1: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
2: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
1: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
2: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
1: सच में सब संभाल लेंगे?
2: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
3: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
4: Hi, this is Janvi Kapoor and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

और जब तुम उसकी बारात में क्रैश लैंड हुई टल्ली हो गए। उस दिन कॉलेज वाले प्यार से फॉरएवर वाला प्यार हो गया तुमसे। बाय गॉड।

फाइव एंड हाफ गर्लफ्रेंड्स के बाद ये रियलाइज किया कि ऊपर वाले ने एक ही तुम बनाया। पर तब तक तो मेरी यादों की नहीं, सबकी सितारा बन चुकी थी।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का।
4: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
5: विजिट psychicramnath.com, कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
6: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ऑन योर रिजल्ट्स में वेरी।
7: प्लानिंग अ ग्रेजुएशन पार्टी, बर्थडे सेलिब्रेशन, फैमिली गैदरिंग और प्राइवेट इवेंट? मेक योर स्पेशल मोमेंट्स इवन मोर मेमोरेबल एट फन पिज्जा किचन कॉलोनी। रेंट प्राइवेट पार्टी स्पेस फॉर 3 आवर्स एट जस्ट $200 विद कस्टमाइज्ड मेन्यू ऑप्शंस टू सूट योर प्रेफरेंसेस। सेलिब्रेट विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, क्रिएट लास्टिंग मेमोरीज एंड एंजॉय योर स्पेशल डे विद अस। टू बुक योर इवेंट कॉल 9896217293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
5: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
8: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at desigottalentus.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.

0: Don't touch that dial. Keep listening.
1: Banjo.

0: बोले नीचे से रे नीचे से।
1: सुनी रानी नी ठाट बाट देख किंग दे तू ही जच दी है नाल इस सोने सिंह दे।

0: डैलस, आर यू रेडी? जागो टाइम्स ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500। The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, Panacea.
1: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand up, play an instrument, or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.
2: Hi, I am Shah Rukh Khan. You are listening to Fun Asia.
3: क्या लगा जेल से छुटेगा और एक ही दिन में हम सबको खत्म कर देगा?
4: बदराव, व्हाट लगे रे पोरे।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

एक रात वो गया था जहाँ रात रुक के, अब तक रुका हुआ हूँ वहीं रात रुक के। डोंट चेंज दैट डायल, कीप इट राइट हियर ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 FM।

दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं तो एक गोल्डन ट्रिक याद रखें। Declutter your desk, declutter your mind. सफाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि thoughts और दिमाग की भी जरूरी है। So clean space, clean thoughts and clean vibes only. यही है Fun Asia Radio का अंदाज। सुनते रहिए हमें और इस नेक्स्ट गाने को।

जिंदगी एक लंबी फिल्म है और हर दिन एक नया सीन। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो जब भी मुश्किल हो, समझ लो कि डायरेक्टर ऊपर वाला है और स्क्रिप्ट उसकी सुपर हिट ही होती है। बस पॉपकॉर्न लेकर चिल करो, बिकॉज लाइफ इज वर्थ वॉचिंग, जस्ट लाइक वन एशिया रेडियो इज वर्थ लिसनिंग।

क्या आपको पता है कि आपकी हार्ट बीट सिंक हो सकती है म्यूजिक के साथ? अगर गाना फास्ट हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और अगर गाना स्लो हो तो काम हो जाती, हल्की हो जाती है। तो अगला गाना सुनते ही अपना दिल जरूर चेक कीजिए। फनी एशिया रेडियो, लिटरली प्लेइंग विद योर हार्ट बीट्स।

हेलो एवरीवन, एक सिंपल ट्रिक फॉर इंस्टेंट हैप्पीनेस। अपने आप को आईने में देखिए और 30 सेकंड्स के लिए मुस्कुराइए। अजीब तो लगेगा, फनी भी लगेगा, लेकिन आपके दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि यू आर जेन्युइनली हैप्पी। वो कहते हैं ना, मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत जेवर है, सो इस जेवर को पहने रखिए, स्माइल करिए और डैलस की ट्रैफिक को थोड़ा हल्के में लीजिए इस गाने के साथ।

नेकी कर दरिया में डाल, ये मशहूर जमाना कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आजकल का वर्जन कुछ अलग ही हो गया है। नेकी कर और ऑनलाइन पोस्ट कर दे, मगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी अच्छाई, कोई भी नेकी जो आप करते हैं, उसे अपने तक ही रखिए, क्योंकि काइंडनेस इज लाइक वाईफाई, सबको फील हो जाती है, पासवर्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इसी तरह फन एशिया रेडियो आपके दिलों में धड़कता है बगैर आपको महसूस हुए।

हेलो एवरीवन, यू ट्यून्ड इनटू 104.9 एफएम फनी शेयर रेडियो। क्या आपको पता है कि असल में चॉकलेट वंस यूज्ड टू बी अ करेंसी? जी हाँ, माया सिविलाइजेशन में चॉकलेट वाज मनी। इमेजिन आज के जमाने में अगर आपकी सैलरी चॉकलेट्स में मिलती हो तो क्या होगा? डालस में सब सारे के सारे जिम फुल हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन जिंदगी की मिठास तो जिंदगी की मिठास है। मजा लीजिए जिंदगी की मिठास का फनी शेयर रेडियो के साथ।

0: कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
2: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
2: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
2: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
3: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए, बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी।
4: नए दोस्त मजेदार लगते हैं क्योंकि उनकी कहानियां हमारे लिए नहीं होती।
3: दोस्ती, प्यार और फिर वही इमोशनल केओस। 2012 की सुपर हिट कॉकटेल के बाद एक नया ट्विस्ट, एक नई कहानी लेकर होमी अजजानिया इज बैक विद कॉकटेल 2, स्टारिंग शाहिद कपूर, कृति सैनन एंड रश्मिका मंदना। गेट रेडी एज द परफेक्ट कॉकटेल मिक्सचर विद कॉकटेल 2, रिलीजिंग ऑन द 19th of June at थिएटर नियर यू।

लेकिन आपकी आंखों से नींद कोसों दूर है, पर हम है ना आपके करीब, आपके रेडियो डायल पर सारी रात आपके साथ। फन इज योर रेडियो 104.9 FM।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब्स से और नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। वही नेगेटिविटी आप तक ट्रांसफर हो और आपके सुकून को बर्बाद कर दे, इससे बेहतर है कि पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाइए। और अगर कोई भी पॉजिटिव थॉट आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल रेडियो पे ट्यून इन कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ इन जबरदस्त गानों को। कीप एंजॉयिंग।

दोस्तों, नॉलेज इज द ओनली थिंग जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है। नॉलेज इज दैट लाइट जो आपकी जिंदगी को रोशन करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज के जमाने में नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, हर कॉन्वर्सेशन, हर सफर, हर गाने में मौजूद होती है। तो क्यूरोसिटी रखिए, सवाल कीजिए, क्योंकि जानने का जुनून ही बनाता है इंसान को बड़ा। नॉलेज ही पावर है, और पावर तो आपको फनी रेडियो भी देता है विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग, फील द पावर।

क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। जैसे वर्कआउट किया हो आपने, मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए फनीशर रेडियो।

थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो। एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है, मतलब छोटी छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं। छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे। जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट। सो कमाल धमाल, फन, मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Funasia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
4: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी. तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
5: Hi, this is Varun Sharma and you are listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

भूख लगी जोरों की भूख लगी। मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी।

0: साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी।
3: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस।
2: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड PGBT। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
4: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up.

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।
2: फिर नजरें मिलाती हूँ।

0: और मैं फूल फेंक रहा हूं।
1: तुम?
0: अरे और फिर तुम जाने लगती हो और मजाक कर रहा था ना बिल्ली।

देसी स्वैग, बॉलीवुड टैग, फन एशिया।

0: डाक टिकट जारी होगी।
1: कितने आदमी थे?
2: सर्कल पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट डैलस में रेडियो का डैड फोनेशिया 104.9 FM
1: Yeah, it's coming up.

0: same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
1: नए दोस्त मजेदार लगते हैं क्योंकि उनकी कहानियां हमारे लिए नहीं होती।
2: दोस्ती, प्यार और फिर वही इमोशनल कैओस। 2012 की सुपरहिट कॉकटेल के बाद एक नया ट्विस्ट, एक नई कहानी लेकर होमी अजजानिया इज बैक विद कॉकटेल 2, स्टारिंग शाहिद कपूर, कृति सैनन एंड रश्मिका मंदना। गेट रेडी एज द परफेक्ट कॉकटेल मिक्सचर विद कॉकटेल 2, रिलीजिंग ऑन द 19th of June एट

0: बोरिंग दिनचर्या में
1: घोलिए नए रंग फन एशिया रेडियो के संग।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
3: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
2: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
3: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
4: Hi, this is Akshay Kumar and you're listening to Fun Asia Radio.
5: जय साहब, जय हिंद।
6: 7 किलोमीटर हो गया, 7 किलोमीटर।

0: अंदर तो इधर अपना इलाका है, चाय पानी मौज मिलेगा। बस इधर एक मिनट रुकेंगे। चल चल जरा रुस्तम, बस बस बस बस दो आराम से। हाँ एक मिनट, एक मिनट पकड़िएगा जरा, बस एक मिनट रुकेंगे यहाँ पे। अरे हम जानते हैं दुकान के मालिक को, बहुत मेहरबान है, पैसे नहीं लेंगे आपसे। लीजिए।
1: मुफ्त में कोई मेहरबान नहीं होता। ये लड्डू के बदले ले जाने कौन जायदाद मांग लो तुम।
2: भाई
0: आपने
2: गलत बात है।
0: हटिए
1: हटिए हटिए हटिए, छोड़
0: छोड़ छोड़ छोड़। ये बात है शाम को मिलता हूँ।
2: मेहरबानी

0: IT is the spice of our station.
1: डैड को लगता है मैं गाने के साथ लिप्स मैच नहीं कर सकता. ही इज रॉन्ग. वॉच मी.

0: समझे हैं?
1: बढ़िया।
2: Don't touch that dial. Keep listening.

0: tracks that put you on the right track.
1: मैं साबित कर सकती
2: हूँ।

0: दे दीजिए। बताइए कहाँ ले चले?
1: PSC हेडक्वार्टर्स और फिर सीधा सरकारी अस्पताल।
2: कम से कम समय तो निकाला पटनायक साहब ने, वरना इनके पास तो टाइम ही नहीं होता किसी से मिलने के लिए।
1: ये बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, इसलिए रुकते नहीं ना एक जगह।

0: कोई नजर में आ गया है लगता है, तभी तो मुझे बुलाए बैठे हो अकेले। कौन है? कोई बड़ी हस्ती?
1: रूटीन ऑफिस वर्क।
0: रूटीन जब बदलता है तो सबसे पहले बीवियों को पता चलता है।
1: नहीं बता सकते यार,
0: मुझ पे भी भरोसा नहीं है।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

चांद लेके किस्मत पाते हैं, राहों में कांटे हैं।

0: डैलस, आर यू रेडी? जागो टाइम्स ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500। The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, Funasia.
1: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी
2: तो फिर सिर्फ Funasia ही सुनूंगा।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी, स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया। फन एशिया।
2: ओम ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वजा।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: एंटरटेनमेंट से करते मैड टैलिस्मैन रेडियो का टैग फनीशा 104.9 FM
1: Yeah, it's coming up.

104.9 FM Fun Asia. Fun Asia. Fun Fun Fun Done.

0: बेटा 95% आए?
1: हाँ मम्मी।
0: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
2: मेरा?
0: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
2: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी।
4: पापा, फादर्स डे पे क्या गिफ्ट चाहिए?
5: बेटा है तू मेरा, तुम लोग साथ बैठ जाओ, यही काफी है।
6: और वही तो सबसे बड़ा गिफ्ट है। All that your father needs is good food, great company, and unforgettable moments. This Father's Day weekend from June 19th to 21st, take your dad to the Flavor Lounge Frisco. Indulge in refined flavors, elegant dining, and moments that truly matter. Plus, every father gets one free cocktail or mocktail. The Flavor Lounge on Preston Road near Malabar Golden Diamond Complex. Call 469-712-3591 and reserve your table today.
7: Hi, this is Deepika Padukone and you're listening to Fun Asia Radio.

0: Excuse me. We are now awaiting tomorrow at PMJ Jewels is starting in Frisco, opening in Frisco. They are bringing to us over 60 years of jewelry excellence and timeless Indian craftsmanship. You can explore stunning gold, diamond and bridal collections for every celebration and milestone. Join the grand opening celebrations that start tomorrow and enjoy these exclusive offers that they have for all of you. And there'll be exciting festivities and chances to win beautiful jewelry pieces also. Proudly associated with Mahesh Babu and Sitara Ghattamaneni, PMJ. It's a name trusted by generations. You can visit PMJ Jewels in Frisco. It's right on Main Street near Coit Road, and you can discover jewelry that tells your story. Please remember, we will all be in the store from 11 to 2 tomorrow for the grand opening, and we hope to see all of you there. PMJ Jewels in Frisco.
1: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
2: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
1: Renew?
2: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
1: What better way to celebrate than with something timeless?
2: Visit Tanishq, Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
3: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
4: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
5: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
6: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
7: It's Lawson.
6: किससे बात करूँ? सारी जानकारी कौन देगा?
7: It's Lawson.
6: Daddy, what is the law?
8: It's Lawson Travels for all your travel needs. Give them a call today. 214-631-2458. The travel experts. Lawson Travel.
9: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
10: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
11: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
12: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
11: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
13: सुनो, कल बहुत काम है, पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली, कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
14: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
13: कहाँ? फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
14: फूडिस्तान इन ऑबरी, एवरीथिंग देसी, वन प्लेस, वन वाइब।
15: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
16: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
15: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
16: वेट, व्हाट?
14: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
17: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
14: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
3: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Funny Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe Breathe easy, live safe with Duck Time.
7: Dude, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
18: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज थ्री में होना मेरी गारंटी है।
7: कैसे?
18: पेज थ्री ईटरी?
7: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
18: डूड, इट्स पेज थ्री। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
7: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
19: पेज थ्री ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
4: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
3: Kya matlab?
4: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
3: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
4: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
3: Ab to karna hi padega, madam.
5: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
6: Sunita, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
7: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
6: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
7: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
2: Introducing Lumity Learning Center, Frisco Prosper or McKinney ISD aligned curriculum that doesn't just match, it exceeds. Personalized math or English plans, certified teachers, continuous feedback, on-demand support, aur har bacche ke liye competitive edge. Try Lumity, you'll see the difference. Kids ages 5 to 13, Coit and Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
8: Attention business owners, what if your everyday expenses could actually make you money? That's right, with Connecting America, you can turn your business expenses into a powerful stream of income via a unique insurance product. If you are looking to boost your bottom line, they got the strategy that works for you. Plus, they help homeowners pay off their mortgage in 10 years or less.
2: Don't wait. Call James at 321-888-7345 today or visit ConnectingAmericaFinancials.com and discover how to turn your daily expenses into income. Connecting America, where smart business owners turn costs into cash.
9: Shaadi Biyah ka koi mauka ho ya koi tyohar, khoobsurat libaas khushiyon ko dugna kar deta hai.
2: Har khushi mein aapke saath Manyavar Mohe, traditional celebration wear for men, women and children, crafted with exquisite blended fabrics. Manyavar Mohe, located on Regent Boulevard of 635 East in Irving.
10: Mamu, देखो क्या हो गया।
11: ओ क्या हो गया?
10: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया, और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है?
11: ओए जर्मन का कमाल है।
10: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है।
11: ओ नहीं ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन 623। कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार।
2: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस।
12: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकौड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
2: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी। तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
13: और सुनाओ, हाउस हंटिंग कैसी चल रही है?
14: क्या बताऊं, इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग।
13: यू नीड टू कॉल अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट। ही इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर हु प्रोवाइड्स एक्सेप्शनल सर्विस प्लस कैशबैक एट क्लोजिंग। अजय रिव्यूज ईच हाउस थरली एंड शेयर्स ऑल द प्रोज एंड कॉन्स एंड नेगोशिएट्स द बेस्ट प्राइस एंड बिल्डर इंसेंटिव्स। जस्ट विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई पीपल आर रेविंग अबाउट हिम।
15: Yeah, this is Shakti Kapoor and you guys are listening to me on the Fun Asia Radio.

0: बेटा 95% आए?
1: हाँ मम्मी।
0: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
2: मेरा?
0: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
2: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी।
4: सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी। टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डैलस, बिकॉज फन पिज्जा किचन जस्ट ड्रॉप्ड अ बोल्ड न्यू मेक्सिकन इंस्पायर्ड मेन्यू। And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
5: Hello, accident claim? Okay, name of the lawyer? Oh... उमर ख्वाजा।
3: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
6: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
3: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़ावे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य। एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
7: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
8: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
3: अब करेगा, because Indian Attire Frisco summer sale is on. Stunning lehengas, elegant sarees, bridal jewelry, men's and kids wear.
8: Wait, इतना सब और price?
3: Up to 25% off on lehengas and bridal collection. Summer sale through the end of August. Only at Indian Attire Frisco. Traditional ho ya fusion, ab har outfit bolega.
9: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
10: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
9: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
10: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
9: सच में? सब संभालेंगे?
10: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
3: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन partner.
11: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनीजिया रेडियो।
12: A warm welcome to all of you. This is Gapshap Gali with me too. आप लोगों के साथ 12:30 तक हूँ, और मौसम का हाल ये है कि आज सुबह एक wet start जो हुआ और heavy thunderstorms के साथ जो हमारी शुरुआत हुई है, इसका नतीजा ये है कि that has caused a lot of flooding in parts of the DFW Metroplex. We'll talk about that and much more. It is 19th of June, ladies and gentlemen. Juneteenth, as it is known as in the US, and the time right now is 10:20. 4, तो शुरू करें आज की शुरुआत इस गाने के साथ।

और इस पल को हमारे साथ एंजॉय करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. दिस इज गपशप गली विद मी टू. मौसम का हालचाल कुछ ऐसा है कि हमारे जो थंडरस्टॉर्म्स आज सुबह मेरे ख्याल से 6 बजे से अराउंड शुरू हो गया. और आई कैन टेल यू दिस दैट माई डॉग एक्चुअली आई हैव अ लैब रिट्रीवर, हिज नेम इज बडी बाय द वे. और बडी उम्र के साथ साथ ना ऐसे थंडरस्टॉर्म्स इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरने लगा है. इज इट द केस विथ योर पेट्स एज वेल कि पहले वो बड़ा शेर बच्चा होता था लेकिन एज के साथ मेरे ख्याल से ही इज वेरी वेरी स्क्वीमिश अबाउट द वेदर. कभी भी ऐसे लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म हो तो बड़ा घबरा जाता है बच्चा. सो यस आई वॉज विथ हिम अनटिल नाउ. और इसीलिए मौसम का हाल चाल चलिए आगे बताते चलें. शुरुआत काफ़ी बारिश से जो हुई हमारी सुबह 6 बजे से मेरे ख्याल से, और 1 से 4 इंच तक रेन जो DFW को मिल चुका है. एंड दिस हैज कॉज सम फ्लडिंग इन स्पॉट्स ऑल्सो. एंड देर विल बी अ ब्रेक इन द स्टॉर्म्स बाय मिड डे, लेकिन एडिशनल स्टॉर्म्स हमारे रीडेवलप हो सकते हैं लेटर टूडे एंड अगेन टू नाइट. लेट मी टेल यू ऑल दैट इफ यू हैव प्लान्स फॉर फ्राइडे इवनिंग एंड फ्राइडे नाइट. सो दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट बी कॉशियस अबाउट बिफोर यू स्टेप आउट. स्कैटर्ड शावर्स एंड थंडरस्टॉर्म्स विल बी पॉसिबल टुमारो एज वेल. और कल काफी ह्यूमिड और वापस से हमारे टेम्परेचर्स में डिग्रीज का एडिशन होना, क्योंकि आज हमारा हाई कुछ 86 के आसपास होगा लेकिन कल वापस से वी विल बी इन द 90s, लो 90s, बट आर हीट इंडेक्स विल बी नियर 100 degrees. और ड्रायर वेदर हमारे लिए संडे को वापस आ जाएगा विथ ओनली अ लो स्टॉर्म चांस अर्ली नेक्स्ट वीक बिफोर ए स्ट्रेच ऑफ टिपिकल ड्राई समर वेदर सेटल्स इन फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक. एज फॉर आर डैलस फोर्ट वर्थ एयरपोर्ट्स एंड लव फील्ड एयरपोर्ट्स, ये सुबह के आठ बजे तक मतलब खिचड़ी तो ऐसे पकने लगी है ना आजकल. वैसे इस मौसम में खिचड़ी अच्छी लगी, बट लेट्स नॉट डाइग्रेस हियर. जी हाँ, तो सुबह के 8 बजे तक सारा ग्राउंड स्टॉप था. तो यू कैन एक्सपेक्ट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डीलेज टूडे इफ़ यू आर ट्रैवलिंग लव फील्ड एयरपोर्ट से या DFW इंटरनेशनल एयरपोर्ट से. तो आप अपने टाइमिंग्स वगैरह फ्लाइट के सारा कुछ दोबारा चेक कर लीजिएगा बिफोर यू लीव होम. मैंने बताया ना, मैं हाल ही में ट्रैवल कर रही थी एंड इट वॉज अ 7 आवर डीले फॉर मी. क्रेजी. एंड आई heard from somebody else as well ki unka 24 ghante ka delay tha yaar. This is Gapshap Gali with me too.

इस वक्त मैं आपके लिए लेकर आती हूँ ट्रैफिक अपडेट, और ये ट्रैफिक अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं अटर्नी उमर ख्वाजा एंड हिज टीम। और यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि भाई अगर कुछ स्लिप एंड फॉल इंसिडेंट है या कार एक्सीडेंट का कुछ केस है, और अगर वर्क प्लेस इंजरी है, इन किसी भी केसेस में कॉम्पनसेशन अगर आप डिजर्व करते हैं, तो ये डिजर्व्ड कॉम्पनसेशन आपके लिए बिल्कुल स्ट्रेस फ्री एक्सपीरियंस के साथ अटर्नी उमर ख्वाजा लेकर आते हैं। सिंपल सी बात है कि आपको तब तक पे नहीं करना जब तक आप अपना केस जीत नहीं जाते हो, यानी कि आपको अपना कॉम्पनसेशन मिल नहीं जाता। तो इसीलिए फ्री कंसल्टेशन के लिए ज़रूर कॉल करें 4693005046, attorneyomer.com इज द वेबसाइट। और ये ट्रैफिक अपडेट उमर ख्वाजा एंड हिज ऑफिस इज ब्रिंगिंग वेरी स्पेशली फॉर ऑल ऑफ यू। देर इज अ मेजर कोलिजन दैट आई वांट टू टॉक अबाउट। I-30 पे है एट एवरी, इट्स एयरवी स्ट्रीट वेस्ट बाउंड। तो आप लोग ये जान लीजिए कि द राइट मोस्ट लेन इज कम्प्लीटली क्लोज, सो देर विल बी बैकअप देर। उसके अलावा कुछ माइनर इंसिडेंसेस जो मैं देख रही हूँ, इट इज़ एट US 75 एट 15th स्ट्रीट साउथ बाउंड। कुछ माइनर इंसिडेंट है जिसके कारण जो एग्जिट है एट दैट पॉइंट, it is partially blocked, that you must know. And there is another minor incident at I-35 east at Mockingbird lane northbound, aur yahan par right shoulder or right most lane band hai, so there will be a bit of a backup there also. So yes, that's the update for you as far as traffic goes. As for this song, I feel it is Chiranthan Bhatt who has done an amazing job.

0: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
1: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
0: Renew?
1: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
0: What better way to celebrate than with something timeless?
1: Visit Tanishq, Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
2: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का।
3: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
4: विजिट psychicramnath.com, कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
5: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली एंड रिसर्च में वेरी।
6: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
7: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
8: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
7: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
9: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
6: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
10: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
11: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
12: माय टाइम इक्विटी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म ओन्ड बाय सीपीएस सुधीर पाई, ऑफर्स इन्वेस्टमेंट एज अ सर्विस, फाइनेंशियल प्लानिंग, एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग, रियल एस्टेट, हाई यील्ड नोट्स एंड अदर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। फॉर फर्दर डिटेल्स विजिट mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
13: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
14: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument, or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.

कॉकटेल 2 एट द थिएटर्स। जून 19 को ये फिल्म रिलीज हुई है इस साल, लेकिन पिछले सालों में क्या हाल था आज के दिन का ये बताने चली हूँ, क्योंकि दिस इज दैट सेगमेंट जहाँ पे कुछ ऐसी फिल्मों के गाने सुनवाते हैं जो आज या कल में, क्योंकि फ्राइडे दिस इज, तो कल का भी कवर कर लेते हैं क्योंकि अब तो सीधे मंडे को मुलाकात होगी, राइट? तो इसीलिए मैंने सोचा कि फ्राइडे एंड सैटरडे का कम्बाइंड आपको आज का एक ग्लिम्स देते हैं, बिकॉज इट ऑलवेज इंट्रीग्स मी कि आज का दिन जो हमारा निकल गया लेकिन किसी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आमिर खान और रानी मुखर्जी के लिए डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रहा था ये साल 1998 में, जब उनकी फिल्म गुलाम आई थी एंड फर्स्ट टाइम वी हर्ड आमिर खान सिंगिंग, दस दस की दौड़, वो सारा कुछ जो हमें पता है ऑफ गुलाम। तो बस बाकी रह जाता है ये गाना प्ले करना। विक्रम भट्ट फिल्म, यू रिमेंबर राइट? एक्शन फिल्म जो थी, काफी अच्छी चली थी एट द थिएटर्स।

आमिर खान द मेथड एक्टर दैट ही इज, हमें ये पता है कि भाई गुलाम के लिए इन्होंने ना पूरे एक हफ्ते क्लाइमैक्स के टाइम पर एक हफ्ते उन्होंने अपना चेहरा नहीं धोया था. वो स्वेट, वो रियल डर्ट, वो एग्जॉस्टन वो दिखाना चाहते थे विदाउट एनी मेकअप. दैट्स आमिर खान फॉर ऑल ऑफ अस, राइट? और फिर वो स्टंट जो वो ट्रेन के सामने व्हेन ही वॉज रनिंग, अपेरेंटली बस एक मिनट से थोड़ा ही ज़्यादा जब वक्त था, दैट्स व्हेन ही जंप्ड ऑफ द ट्रैक. मतलब आप सोचिए कितना डेंजरस स्टंट था, और सीन ऑफ द ईयर उस स्टंट को मिला था. एंड दैट ऑल्सो एक्चुअली ब्रॉट द टॉपिक ऑफ स्ट्रिक्ट सेफ्टी रिफॉर्म्स इन द इंडस्ट्री फॉर स्टंट्स. यू आर लिसनिंग टू फाइनेंशियल रेडियो 104.9 FM. यहाँ पे एक और फिल्म की बात करने वाली हूँ जो इसी वक्त अराउंड इसी वक्त रिलीज हुआ था, एक्चुअली कल के दिन 20th of June लास्ट ईयर. सितारे जमीन पर, आमिर खान वंस अगेन. तारे जमीन पर का स्पिरिचुअल सीक्वल, लेकिन बिल्कुल अलग ही किस्म का रोल था इसमें. उसमें जो थे वो मेंटर वो अलग थे, और इसमें जो मेंटर वो थे वो बिल्कुल ही सर फिरे थे, और वो बच्चों ने उन्हें ठीक किया. दैट्स व्हाट दिस मूवी वाज अबाउट, सितारे जमीन पर.

0: राजू वेरी गुड.
1: थैंक यू सर.
0: इसके बाद हम लोग बॉल पासिंग की प्रैक्टिस करेंगे. ओके
2: वो कैसे
0: वो मैं बाद में तुमको समझाऊं. अरे

रात सितारे जमीन पर, लेडीज एंड जेंटलमैन, जो पिछले साल कल के दिन यानी कि 20th of June रिलीज हुई थी, और 20th of June 1980 में एक और कमाल की फिल्म रिलीज हुई थी. दिस वन एक्चुअली अ ब्लॉकबस्टर दैट इट वाज एट द थिएटर्स. और ये फिल्म जिसे डायरेक्ट किया था किन्होंने, यस, फिरोज खान, ही इज़ द वन. जीनत अमान वाली फिल्म, यार कैसे मैं भूल रही हूँ, पता नहीं दिमाग से उतर रहा है. लेकिन आई एम रशिंग टू प्ले दिस सॉन्ग बिकॉज वी आर गोइंग टू हिट ए शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. वी नो एवरीथिंग अबाउट दिस बिड्डूज म्यूजिक.

0: शुभ दिन आ पहुंचा है। एक ऐसा अवसर जहां 60 वर्षों की परंपरा, बेमिसाल कारीगरी और पीढ़ियों के विश्वास का संगम आ रहा है आपके शहर फ्रिस्को में। PMJ Jewels.
1: Be a part of this grand opening celebration from 20th June Saturday onwards and get exclusive offers, exciting celebrations and opportunities to win beautiful jewelry pieces. PMJ Jewels. Tradition crafted, style defined.
2: The Texas Super Kings are here and the action is absolutely heating up. Don't miss a single thrilling moment. Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium. We have got electrifying matches on Thursday, June 18th, Saturday, June 20th, Sunday, June 21st. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.
3: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
4: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
5: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
6: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
5: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
7: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
8: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
7: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
8: वेट, व्हाट?
9: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
10: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
9: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
11: Planning a graduation party, birthday celebration, family gathering or private event? Make your special moments even more memorable at Fun Pizza Kitchen Colony. Rent private party space for 3 hours at just $200 with customized menu options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
12: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.

0: इट इज़ 4 मिनट्स past 11 बाय द स्टूडियो क्लॉक और मैं 12:30 बजे तक हूँ, यानी कि जाने में अभी वक्त है। लेकिन वो जो अच्छा तो हम चलते हैं वो वाला जो माहौल होता है ना, जब हम किसी पार्टी वार्टी में जाते हैं, बड़े पार्टीज में जाते हैं, बड़े गैदरिंग्स में जाते हैं, बस उसी से रिलेटेड आप लोगों के साथ कुछ कॉन्वर्सेशन है मेरी। और प्लीज़ बने रहें 9722355555, क्योंकि आज दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाए। क्या कहते हैं आप?
1: फिर कब मिलोगे?
2: जब तुम कहोगे
1: जुम्मे रात को।
2: हाँ हाँ आधी रात को।
1: कहाँ?

यू आर ट्यून्ड इन टू फनीशर रेडियो 104.9 FM। अच्छा तो हम चलते हैं, वाला माहौल तो नहीं है ना, अभी वक्त है ना आपके पास, क्योंकि मेरे पास कुछ सवाल है आप लोगों के लिए। आपने हग हंटिंग के बारे में सुना है क्या? हग हंटिंग, जो कि डिक्शनरी में आपको ये नहीं मिलने वाला है, ये शब्द हमारा अपना जो बनाया हुआ शब्द है। एंड इट इज अ शब्द विच इफ यू आर इन अ ट्रेडिशनल टाइट नेट फैमिली और इफ यू हैव ग्रोन अप इन दैट काइंड ऑफ एन एनवायरमेंट, आप डेफिनेटली ये चीज करते हो। और वो क्या चीज है वो मैं बताने वाली हूँ आपको इस गाने के बाद। बिल्कुल बने रहें राइट हियर विथ मी ऑन फनीशर रेडियो 104.9 FM। साथ ही साथ ना मुझे बोलना है आपको अबाउट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम इतनी सारी चीजों में अपने हेल्थ के बारे में कंटिन्यूसली सोचते रहें, और इसीलिए हर रोज आपके लिए ये मैसेज आता है कि आप भूले नहीं टू गेट इन टच विथ Passion Health Primary Care if you are seeking the right kind of health care, तो ये इनके पास है, क्योंकि ये आपको पूरा पूरा वक्त देंगे that you truly need when you go to see a doctor, right? वो एक अच्छे से वक्त देना, ये भी एक हमारी need होती है उस वक्त। तो yes, they are there for you and for you, your family of course, and for the health of our community, Passion Health Primary Care, ये आपके साथ हैं। ज़रूर याद रखें, you can log on to Passion Health Primary Care website and it is passionhealthphysicians.com, और आप इन्हें text भेज सकते हैं 214-666-6259, and also do remember, primary care doctors, endocrinologists, pediatricians, psychiatrists, if you are listening to us, they have full-time and part-time opportunities available for all of you. So, ज़रूर अपना resume उन्हें भेजें, passionhealthphysicians@gmail.com, या फिर उन्हें text करें 217-454-4639, and they have a health tip for all of you, क्योंकि हमारे Dallas में गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है। आज fortunately कम है, लेकिन हमें पता है कि कल वापस से गर्मी होने वाली है, एंड हीट इंडेक्स इज गोइंग टू बी क्लोज टू 100 टुमारो। तो आप लोगों के लिए ये जानना जरूरी है कि हीट स्ट्रोक के क्या सिम्टम्स हैं। कंफ्यूजन, हाई बॉडी टेम्परेचर, डिजीनेस एंड लैक ऑफ स्वेटिंग कैन बी वार्निंग साइंस ऑफ हीट स्ट्रोक। यू मस्ट नो दैट एंड सीक इमीडिएट मेडिकल हेल्प, एंड इफ यू सी एनी ऑफ दिस विथ यू और एनी वन अराउंड यू, यू आर लिसनिंग टू फनीशर रेडियो 104.9 FM, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। ये है गपशप गली विद पीटू।

फ्रॉम द फिल्म गुड बाय इट इज. और गुड बाय का ये गाना ना मैंने जानबूझ के लगाया है, और ये मैंने इसीलिए लगाया कि हग हंटिंग, जो मैंने कहा ना कि मैं आपको बताऊंगी ये क्या बला है, ये डिक्शनरी में आपको इसका मीनिंग नहीं मिलेगा, ये मिलेगा हमारे पास आपको. हग हंटिंग वो बला है कि जो गुड बायज बहुत लंबा बना देता है हमारे लिए. यस, अगर आप ट्रेडिशनल हमारे जो फैमिलीज है ना, देसी फैमिलीज में आप बड़े हुए हो ना, तो आप जानते हो कि जब वो गुड बायज आते हैं, यानी कि आप जब जाने का वक्त आता है, तो वो एक जो एक बाय कहने से वो 45 मिनट्स 50 मिनट का जो एक लंबा कॉन्वर्सेशन दरवाजे पे खड़े या गेट पे खड़े होके जो बातें होती है ना, इट इज अबाउट दैट, यू नो, दैट एग्जॉस्टिंग सोशल रिचुअल. आप सोचिए, यू हैव ऑलरेडी गॉट योर कार कीज इन योर हैंड और आप खड़े हुए सामने वाले दरवाजे पर, एंड सडनली आपके घर के जो सीनियर्स हैं वो कहेंगे कि अरे चाची को आपने बाय कहा है क्या, अरे आप अंकल को जाके गो एंड फाइंड हिम एंड से बाय. तब आप एक कमरे से दूसरे कमरे सबको बाय बाय बाय बाय कहते हुए हर किसी से दोबारा से एक 10 मिनट का कॉन्वर्सेशन आपको स्ट्राइक करना ही पड़ता है. एंड दैट इज वॉट दिस हग हंटिंग इज. और इस हग हंटिंग से जो परेशान है उनके अपने तरीके हैं टू हैंडल इट. सो precisely there are few ways that people exit from big gatherings. वो कुछ मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ. कुछ let's see, 5 categories में से divide किया जा सकता है कि आपको जब निकलना होता है किसी पार्टी से बिना हंगामा किए, कि आप अगर हंगामा वाले पर्सन हैं कि आपको सबको जाके बाय कहना है, गुड फॉर यू, लेकिन अगर आप ऐसे नहीं हैं तो आप क्या करते हैं, क्या करते हैं ये जानना चाहती हूँ. लेट्स सी विच कैटेगरी दैट यू फॉल इन. 972-235-5555 नंबर इन द स्टूडियो. ये लाइंस मैं सबके लिए खोलना चाहती हूँ, स्पेशली फॉर जेन जी एंड यंगर, कि मैं जानना चाहती हूँ कि उनका आज का टेक क्या होता है, कि आज का मॉडर्न गुड बाय कैसा होता है, ये जानना चाहती हूँ. क्योंकि बहुत पहले तो ऐसा होता था कि भाई हर किसी को जाके बाय कहो, एंड देन समवेयर बिटवीन ऑल ऑफ दिस द ट्रेडिशन चेंज्ड, एंड व्हाट डू जेन जीज डू, आई वॉन्ट टू नो. ऑल राइट, 972-235-5555. ऑल्सो इफ यू डोंट फॉल इन द जेन जी कैटेगरी, आई स्टिल वुड लाइक टू नो कि आपके गुड बायज कितने जल्दी या कितने देर तक चलते हैं, तो देखते हैं कि आप कौन से कैटेगरी में पढ़ते हैं. नियॉन कैक्टस की तरफ से आपके लिए एक गिव अवे है, एंड दैट गिव अवे इज अ $20 गिफ्ट कार्ड, विच इज अ डाइन इन गिफ्ट कार्ड फॉर ऑल ऑफ यू. एक ऐसी जगह जहां पे मेक्सिकन फ्यूजन के साथ ग्लोबल इन्फ्लुएंस का ये जो खाना है, विद एब्सोल्यूट ग्रेट वाइब, मॉडर्न वाइब दैट यू विल गेट देयर, वो भी बिल्कुल मुफ्त में. दिस इज गपशप गली विद मी टू. 972-235-5555. इस गाने में भी ना एक पार्टी चल रही है.

दिस फिल्म स्पोक टू सो मेनी ऑफ अस, और एक फिल्म से ना एक कनेक्शन बन जाता है. अगर फिल्म की बात करें तो फिल्म जहाँ पर आप देखते हो आराम से कंफर्टेबली, वो है आपका घर. और घर के साथ भी अपना एक अलग कनेक्शन बनता है. व्हेन यू गो टू बाय योर ओन होम ना, तो एक एक जब आप देखने जा रहे हो तो आपको ना एक एक घर के साथ एक ऑटोमेटिक एक कनेक्शन समझ में आता है व्हेन यू लाइक अ सर्टन होम. और ऐसे में नवनीता खेमका विद केलर विलियम्स रियल्टी कैन रियली गाइड यू एवरी स्टेप ऑफ द वे. आपको अगर वो पर्सनलाइज सर्विस चाहिए, आपको वो ऑनेस्ट कम्युनिकेशन चाहिए कि इस घर के सारे प्रोज ऑन कॉन्स आपके सामने खुले हों, सारे हिसाब किताब आपके सामने खुला हो बिल्कुल, तो एक जेन्युइन केयर के साथ इट्स नवनीता खेमका, आर वेरी ओन आज नवनीता, हु कैन हेल्प यू टू बाय सेल और रीलोकेट इन द DFW एरिया. ज़रूर कॉल करें उन्हें. नवनीता का नंबर है 347-449-4242 और स्टूडियो का नंबर है 972-235-5555. दिस इज अबाउट पार्टिंग इन बिग ग्रुप्स, या फैमिली गैदरिंग हो या फ्रेंड्स की गैदरिंग हो, और उस गैदरिंग में से जब निकलना होता है आपका क्या रवैया, क्या अप्रोच रहता है. रवैया तो सही रहना चाहिए हमेशा, अप्रोच क्या रहता है टू से ऑल द गुड बाइज. आप किस कैटेगरी में पढ़ते हो, बस मैं यही जानना चाहती हूँ. एंड व्हेन आई वॉज गोइंग थ्रू द कैटेगरी आई फिगर आई एम प्रोबेबली द फ्रेंच एग्जिट काइंड, आई मेक अ फ्रेंच एग्जिट. ये मुझे आज पता चला. मैं बताती हूँ आपको, आयरिश एग्जिट से शुरू करते हैं. आयरिश एग्जिट वो होता है कि जब आप चुपके से निकल जाते हो, किसी को गुड बाय कुछ नहीं बोलते हो, आप निकल जाते हो अपने सबसे मस्ती मजाक करके, उसके बाद निकल जाते हो. दैट्स द आयरिश एग्जिट. और उसके बाद एक होता है द होस्ट ओनली गुड बाय. नाउ द होस्ट ओनली गुड बाय इज द होस्ट ओनली गुड बाय. आप उनको केवल बाय करके निकल जाते हो, ठीक है, वेरी फास्ट एंड क्विक. चलो गुड है. मैं होती हूँ फ्रेंच एग्जिट की कैटेगरी, जहाँ पे आई टेल द स्मॉल ग्रुप अराउंड मी और द पीपल आई एम मोस्ट क्लोज टू, उनको मैं बता के और होस्ट को बता के मैं निकल जाऊँगी इमीडिएटली. हाँ, दिस इज फ्रेंच एग्जिट. अब एक होता है कि जो कई जेंजीज भी बिलीव करते हैं इसमें, कि निकल जाएंगे और टेक्स्ट कर देंगे कि भाई हम निकल चुके हैं, यू नो दैट काइंड ऑफ. तो एक टेक्स्ट लेटर मूव जो होता है, दैट्स दैट काइंड ऑफ एग्जिट. एक होता है प्री अनाउंस डिपार्चर, कि आप जब पहुंचे तो पहले ही बता दिया कि भाई आज मुझे ना 10 बजे तक निकल जाना है, एंड देन यू डोंट यू नो से गुड बाइज टू एनी बडी, यू जस्ट एग्जिट एट 10 PM लेट्स से, ठीक है ना. एंड देन हमारा क्लासिक ट्रेडिशनल देसी एग्जिट होता है कि जो आप हर किसी के पास जाके बाय नमस्ते सत श्री अकाल सब बोल के आप निकलते हो, तो ये अपने आप में एक लंबा टाइम ले लेता है, लेकिन यू लाइक टू डू दैट एंड यू डीपली बिलीव इन दैट. तो जी हाँ, आप कौन सा एग्जिट पैटर्न वैलिड फॉर एवरी बडी, मुझे कॉल करके बताएं 972-235-5555. $20 का डाइन इन गिफ्ट कार्ड फ्रॉम नियॉन कैक्टस विल बी योर्स अगर आपका जवाब हमारे जो फिफ्थ कॉलर हैं उनका लेते हैं. क्या कहते हैं आप? 972-235-5555. Just simply tell me which category you belong to. That's all we want to know.

ऑल राइट, ये ना पार्टी का गाना था, मुझे मन किया आप लोगों के लिए लगाने के लिए, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि आप लोग की क्या एग्जिट पॉलिसी होती है, किसी भी पार्टी से निकलने का क्या तरीका होता है, दैट आयरिश एग्जिट या होस्ट ओनली गुड बाइज, फ्रेंच एग्जिट या टेक्स्ट लेटर मूव आपका होता है, या प्री अनाउंस डिपार्चर होता है, या अपना ट्रेडिशनल देसी बिल्कुल धमाकेदार एग्जिट की सबको बाय बोल के 45 मिनट दरवाजे पे खड़े होके और एक्स्ट्रा बात करके फिर निकलते हो आप। तो मुझे पता है आपको ज्यादातर रिप्लाईज मुझे ट्रेडिशनल मिला, और शुहेब साहब आप जीते हमारा ये इनाम फ्रॉम नियॉन कैक्टस, दैट $20 डाइन इन गिव अवे दैट आई एम गोइंग टू गिव यू, प्लीज कॉल बैक एंड टेक योर थिंग। उन्होंने कहा कि इसका नाम हमने ऑलरेडी दे रखा है, हमारे भाषा में इसे कहते हैं डोर टॉक। तो बच्चे ऑलरेडी हमारे मेरे ख्याल से ऐसे ट्यून्ड इन रहते हैं ना कि अगर मम्मी पापा ने कहा कि भाई चलो निकलना है, तो इसका मतलब आधा घंटा तो और लगा ही लो, क्योंकि दरवाजे या गेट पे जाके और आधे घंटे तो बातचीत होगी। एंड ये भी बड़े कंजर्वेटिव तरीके से बोला जा रहा है। Yeah, and it is surprising ki most of you fell in the same category. And I think I am that French exit person. कि मैं एक छोटे से ग्रुप को अपने क्लोज फ्रेंड्स को बोल के और होस्ट को बोल के निकल जाती हूँ अपने। शोहेब कॉल बैक, हाँ आई विल वेट फॉर योर कॉल टू गिव यू दिस नियॉन कैक्टस गिव अवे।

This is Fun Asia Radio 104.9 FM. Gupshup Gali with me too will continue until 12:30. आप लोगों के लिए एक और तड़कता भड़कता सा सवाल हम करेंगे, लेकिन उस सवाल के पहले कुछ बर्थडे विशेस हो जाए. और ये बर्थडे विशेस टू आर वेरी गुड फ्रेंड्स हियर. और ये एक नहीं, दो बर्थडे सेलिब्रेशन इन आर बिग ग्रुप. एंड दिस इज द मर्फी ग्रुप वी कॉल. और जहां पर एक बार जाओ तो मतलब ऐसा माहौल जमता है कि क्या ही कहा जाए. हम थोड़ी देर पहले एग्जिट्स की बात कर रहे थे ना, तो जी हाँ, यहाँ पे एग्जिट्स लेने का मतलब है कि सबको आप बाय करके जाओगे, क्योंकि सबसे आप इतना क्लोज हो कि आप ऑब्वियसली यू विल डू दैट. एंड फॉर द लिसनर्स हु आर ट्यूनिंग इन जस्ट नाउ, हम एग्जिट पॉलिसी की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले. और आपने मिस कर दिया तो मिस कर दिया, अभी वक्त है कि हम गाड़ी को आगे लेके जाएं, क्योंकि दो बर्थडे सेलिब्रेशन फ्रॉम दिस मर्फी ग्रुप दैट वी वॉन्ट टू ब्रिंग फोर्थ. सुरेंद्र की रिक्वेस्ट पे वी आर गोइंग टू प्ले ए सॉन्ग. नाउ ही डिड नॉट सजेस्ट अ सॉन्ग, लेकिन मुझे लगा कि सुरेश के लिए और साथ में सपना, ये दो जो हमारे जो ग्रुप के जो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इनके लिए यार चम चम चमके सितारे वर्गी, दैट्स द विश वी आर गोइंग टू ब्रिंग व्हाट से. और इसीलिए ये अगला गाना उन दोनों के नाम करना चाहते हैं. एंड मोर द मेरियर एज दे से. अगर आपका भी बर्थडे आज है तो आपको भी ढेर सारी बधाइयां, लोड्स एंड लोड्स ऑफ बेस्ट विशेस फ्रॉम ऑल ऑफ अस हियर.

स्पेशल बर्थडे विशेस गोइंग आउट टू सुरेश एंड सपना लेडीज एंड जेंटलमैन, और साथ में उन सबको विश करना चाहती हूँ जो आज अपना स्पेशल डे मना रहे हैं। अगर आप अपना स्पेशल डे मना रहे हैं तो स्पेशली उनके पास जो बैठे हैं उनको मैं बोलना चाहती हूँ कि PMJ ज्वेलर्स के बारे में आपने नाम सुना है कि नहीं, और अगर आपने नहीं सुना तो सुन लिया, क्योंकि ये आ रहे हैं फ्रिस्को में। देयर इज दिस ग्रैंड ओपनिंग विच इज हैपनिंग टुमारो बिटवीन 11 AM टू 2 PM दैट यू हैव टू बी पार्ट ऑफ, क्योंकि यहाँ पे आपको ना गोल्ड, डायमंड और ब्राइडल कलेक्शंस बिल्कुल A1 मिलेगा। द डिजाइंस दैट यू हैव बीन ऑलवेज लुकिंग फॉर, दैट क्राफ्ट्समैनशिप दैट यू विल गेट इन देयर ज्वेलरी इज अनपैरेलल्ड। तो ये ग्रैंड ओपनिंग कल हो रही है, जहाँ पर आपको एक्सक्लूसिव ऑफर्स भी मिलेंगे, एक्साइटिंग फेस्टिविटीज भी मिलेंगी एंड चांस टू विन ब्यूटिफुल ज्वेलरी पीसेज एट PMJ ज्वेल्स। And this is for all of you in Frisco. Zarur yaad rakhein, it is proudly associated with Mahesh Babu and Sitara Ghatta Manini. And PMJ is a name trusted by generations. So zarur jaye, Main Street pe hai in Frisco. ज़रूर आप अपनी कहानी भी हमें आके बताएं कि व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, बिकॉज वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड। ऑलराइट, आई एम एक्साइटेड फॉर कशिश, क्योंकि कशिश ने आज छुट्टी ली है। उन्होंने कहा आज सुबह उठ के मौसम को देखकर मन नहीं किया जाने का। उन्होंने कहा कि समर वेकेशन की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि एक बहुत अच्छा सा वेकेशन इज अहेड ऑफ हर। तो हमने ना सोचा कि इसी बात पे कुछ बात छेड़ी जाए, क्योंकि क्या है ना कि हम सेलिब्रिटीज का सुनते हैं ना एयरपोर्ट लुक, बस उसी से कुछ जुड़ा सवाल आप लोगों के लिए। लेकिन पहले कशिश का गाना तो प्ले कर दें एंड देन वील गेट टू द क्वेश्चन एज वेल। 972-235-5555 नंबर इन द स्टूडियो। ये है गपशप गली विद मी टू।

जी हाँ, फुर्र होने का टाइम मेरा नहीं आया है, लेकिन शायद आपका आ रहा हो। समर वेकेशन की बात कर रही हूँ यहाँ पर। आप जानते हैं ना, ये जो किड्स यूनिवर्सल रिजॉर्ट है, ये खुलने वाला है जुलाई 1 को। एंड इट इज़ दिस प्लेस जहाँ पे 3 ईयर्स ओल्ड से 8 ईयर्स ओल्ड के लिए बहुत ही कमाल की एक जगह होगी। दैट 20 एकर रिसोर्ट एम्स टू प्रोवाइड फैमिलीज विद अ थीम पार्क एक्सपीरियंस दैट इज ईजियर टू नेविगेट एंड लेस ओवरवेलमिंग फॉर यंग विजिटर्स। और यहाँ पर जो है पार्क, ये जो है फीचर करता है 7 थीम लैंड्स, और ये इंस्पायर हुए हैं पॉपुलर कैरेक्टर्स और फ्रेंचाइजेस से, जैसे कि मिनियंस का एक अलग एक वाटर राइड रहेगा, स्पंज बॉब स्क्वेयर पैंस इनका एक अलग ही कुछ एक स्प्लैश पैड रहेगा, एंड देयर विल बी ड्रीम वर्क ट्रोल फेस्ट एंड जुरासिक वर्ल्ड एडवेंचर कैंप विद अ क्लाइंबिंग रोप्स कोर्स एंड श्रेक्स स्वैम्प। बहुत कुछ रहेगा, देयर इज प्लेंटी फॉर आर किडोस फॉर दिस समर। जुलाई 1 को ग्रैंड ओपनिंग हो रही है, और कुछ ही दूर पे एक 300 रूम होटल जो डिजाइन किया गया है फैमिलीज के लिए। द प्रॉपर्टी फीचर्स थीम गेस्ट रूम्स, डाइनिंग ऑप्शंस एंड अ पूल, एंड होटल रिजर्वेशंस आर फिलिंग क्विकली विद द फर्स्ट गेस्ट स्केड्यूल टू चेक इन ऑन June 30th। नाउ दैट बीइंग सेड, समर वेकेशन की हम सब की तैयारियां बड़ी स्ट्रांग होती हैं, और ऐसे में मुझे याद आते हैं हमारे सेलिब्रिटीज, क्योंकि सेलिब्रिटीज और उनका एयरपोर्ट लुक, माई गुडनेस, मतलब क्या ही कहा जाए। मतलब वो एक अपने आप में ऐसा लगता है कि एयरपोर्ट कम, अनऑफिशियल फैशन रनवे ज़्यादा है। और ऐसे में कुछ सेलिब्रिटीज हैं, फॉर एग्जांपल अनुष्का शर्मा, सारा अली खान, देर आर फ्यू अदर्स, कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट, ये लोग बड़ा कैजुअल रहते हैं, यू नो, कंफर्ट को प्रेफर करते हैं ओवर एनी यू नो स्टाइलिस्ट और फैशनिस्ता का कुछ अपना एक ऑरा लेके चलने में नहीं बिलीव करते हैं। दे वॉन्ट टू बी कम्फर्टेबल इन देयर हुडीज एंड देयर जॉगर्स एंड ऑल ऑफ दैट। मैं आपसे एक इस सेगमेंट में, जिसका नाम है वन वर्ड शो डाउन, जहाँ पे हमें चाहिए होता है आपका दिल से रिएक्शन। हम एक आइडिया देते हैं आपको, जैसे कि मेरा ये आइडिया है माई एयरपोर्ट लुक, दैट इज वॉट यू हैव टू टेल मी इन जस्ट वन वर्ड। जी हाँ, नो एक्सप्लेनेशन नीडेड, जस्ट प्योर रॉ रियलिटी, दैट्स वॉट वी वॉन्ट टू नो। कि जब आप सुबह सुबह DFW एयरपोर्ट पर पहुँचते हो तो आपका एयरपोर्ट लुक क्या होता है, एक शब्द में बताइए हमें, और जो बताएगा उसे हमारी तरफ से ढेर सारी तालियाँ मिलेंगी। 972-235-5555 स्टूडियो का नंबर।

वन वर्ड शो डाउन और दिल से रिएक्शन की उम्मीद इस सेगमेंट में आपकी रहती है. और मेरा सवाल आपसे था माय एयरपोर्ट लुक. अगर मैं आपसे ये कहती हूँ तो आपका एक शब्द जो आपके दिमाग में आता है वो क्या होगा. आई गॉट मेनी मेनी आंसर्स लेडीज एंड जेंटलमैन. श्रीजा ने कहा पजामा. आई हियर यू टोटली. दैट्स द मोस्ट कम्फर्टेबल थिंग वन कैन वेयर. कौन देख रहा है वहाँ पे आपको. लेकिन वहीं पे आरके ने कहा ट्रेंडी, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके साथ साथ दुनिया भी उन्हें देख रही है. तो बिल्कुल ट्रेंडी जो है तैयार होके जाते हैं. रेवती ने कहा जॉम्बी. यू नो समहाउ आई रिलेट टू पजामाज एंड जॉम्बी मोर, ऑल्दो आई डोंट गो लाइक दैट. लेकिन एट द सेम टाइम इट वुड बी नाइस टू बी एब्सोल्यूटली यू नो कैंडिड अबाउट योर सेल्फ, बी रियली रिलैक्सड अबाउट योर सेल्फ एंड वेयर वॉट एवर इन द वर्ल्ड यू वॉन्ट टू मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल फॉर द जर्नी, राइट. शालू ने कहा कैजुअल, लेकिन शी कैजुअल लाउंज टॉप एंड लाउंज पैंट्स एंड क्रॉप टॉप के साथ. मैं यहाँ पे उनको इमेजिन कर रही हूँ लिटरली. मैंने आपको देखा तो नहीं है शालू, लेकिन मुझे ये जरूर दिख रहा है कि काफी कूल ट्रैवल करते हो आप, जहां पर कंफर्ट का भी ध्यान रखा जा रहा है लेकिन लुक्स को भी अंडरमाइन नहीं किया जा रहा है. क्या बात है, क्या बात है यार. और एक और जवाब मुझे मिला अनिकेत से. अनिकेत ने मुझे कहा कि यार इट डजंट मैटर टू मी कि मैं शर्ट पैंट पहन रहा हूं, कि ये जीन्स पहन रहा हूं, कि मैं यू नो सिर्फ पजामा पहन रहा हूं. दैट डजंट मैटर टू मी एट ऑल. माई फुटवेयर शुड बी वेरी वेरी कंफर्टेबल एंड इसीलिए आई विल से क्रॉक्स. दैट वॉज द वन वर्ड ही गेव मी. वेल अगर क्रॉक्स अगर आपने पहने हैं तो भी मेरे ख्याल से ये डांस इम्पॉसिबल है हमारा करना. दिस इज गोइंग आउट टू ऑल दोज पीपल who were part of my one word showdown segment. This is Gapshap Gali with me too.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Jis baat ka dar tha, wahi hua. Lymphosarcoma of the intestine.
7: Arre kehna kya chahte ho?
8: Doctor ki baat samajh hi nahi aayi. Language barrier ka tension bhi. Ab tension ka time gaya. Passion Health Primary Care ke saath multi-language nurses aur doctors hamesha aapke saath hain. Hindi, Telugu, English, any language you prefer. Frisco, Plano, McKinney, Abri, Flower Mound, Irving, Prosper, Anna. Any location you are close to. Call 214-666-6259 or visit passionhealthprimarycare.com. Passion Health Primary Care. Your health, your language, your comfort.
9: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
10: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
11: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
10: नहीं।
11: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
10: नहीं।
11: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
10: वो भी नहीं।
11: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
12: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy.
13: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
14: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
15: Calculating route, rerouting, rerouting.
14: अरे ये क्या? मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है.
15: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
14: क्यों?
15: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के smart लोग जानते हैं. Daily groceries हो या Pooja essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
14: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो.
16: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट,
15: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
17: हेलो, एक्सीडेंट क्लेम? ओके, नेम ऑफ द लॉयर? उमर ख्वाजा.
18: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
19: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
20: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है.
19: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है.
20: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है.
21: इंट्रोड्यूसिंग लुमिटी लर्निंग सेंटर, फ्रिस्को, प्रॉस्पर और मैकिनी ISD अलाइंड करिकुलम दैट डजंट जस्ट मैच, इट एक्सीड्स. पर्सनलाइज्ड मैथ और इंग्लिश प्लान्स, सर्टिफाइड टीचर्स, कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर बच्चे के लिए कॉम्पिटिटिव एज. ट्राई लुमिटी, यू सी द डिफरेंस. किड्स एजेस 5 to 13, कॉइट एंड at Bantha Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
0: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
1: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
22: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे?
23: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
22: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
23: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
22: सच में? सब संभालेंगे?
23: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
21: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
24: Don't touch that dial. Keep listening.
25: Well, your quick path to FIFA updates and trivias is right here, right now. Or agar quick path to US permanent residency chahiye, to Seema Mehta of Law Offices that you must remember. This is Gapshap Gali with me too. Aur yahan pe yaad dilana chahti hoon ki agar aap H1B, F1, L1 ya kisi bhi aur non-immigrant visa pe hain aur aap plan kar rahe hain US permanent residency ko paane ki, to phir Law Offices of Seema Mehta zarur aapki madad kar sakte hain. Attorney Seema Mehta and her experienced team specialize exclusively in immigration law. Wo include karta hai aapka EB-5, investor visas, family and employment visas, perm labor certification and US citizenship. Aapko agar EB-5 investor visa program ke baare mein bhi details chahiye ho, to you know what to do. You can get in touch with them and they will be more than happy to help you. And beyond help, they will guide you and educate you also on that. info@seemamehtalawfirm.com is where you can drop an email and find out more. Thank you once again for tuning in. FIFA updates and trivias right after this.

उम्मीद है कि भाई आप सब एकदम मजे में हैं, एकदम मजामा, यू नो. नाउ इफ यू थिंक द एक्शन एट द 2026 फीफा वर्ल्ड कप हैज बीन वाइल्ड सो फार, वेल गेट रेडी बिकॉज आज का जो लाइनअप है ना, एब्सोल्यूट हैवी वेट ब्लॉकबस्टर जो आपको आज मिलेगा. वी हैव मैसिव टीम्स टेकिंग द पिच अक्रॉस द कंट्री. तो थोड़ा सा बता दिया जाए आज के मैचेस के बारे में. ग्रुप डी से टर्की वर्सेस पैराग्वे रात के 10 बजे सैन फ्रांसिस्को बे एरिया स्टेडियम इन कैलिफोर्निया. That it is going to be a group C say Brazil versus Haiti and that is going to be at 7:30 PM aur ye Philadelphia stadium mein hone wala hai. Group C say Scotland versus Morocco ka match ye 5 PM pe start hoga at Boston stadium. And then of course let's come to our men's team, USA versus Australia ka aaj ka game ab bas kuch hi ghanton mein shuru hone wala hai. It will start at 2 PM at Seattle stadium and it is going to be fantastic, ladies and gentlemen. It is going to be exciting. तो यही मैंने सोचा कि पहले तो ये बता दिया जाए और फिर कल के जो मैचेस हुए उसका भी थोड़ा अपडेट दे दिया जाए. तो चलें फीफा फीवर सेगमेंट में we'll give you a little bit of update from yesterday, match day 8. This is Gupshup Gali with Neetu. Hey,

This is Gupshup Gali, wave to me to a cocktail of music that we are playing for you in this last segment. Or cocktail 2, jo release hui hai aaj aapke nearest theaters mein, wo jaake zarur dekhiyega. Summer movie that it is being called, and definitely Shahid Kapoor is a must watch. That's what the reviews are telling me. Main bhi zarur dekhungi. Filhal ye gana sunwa deti hu usi film ka, and aapke liye update lekar aati hu ki ye hai FIFA Fever segment aapke liye, jahan par main kal ka update lekar aana chahti hu. Because if you have been glued to your screens yesterday, then you already know that match day 8 of the 2026 FIFA World Cup was an absolute roller coaster. Matlab sach mein bahut hi tagda hangama chal raha tha kal pitches par, and we saw spectacular hat tricks, historic wins and red cards flying everywhere. Co-host Canada aur Mexico ne to apne home crowd ko, apne fans ko, unka din hi bana diya boss. To chaliye kuch baat karte hain and ek crisp wrap up dete hain aapko. Canada versus Qatar ka pehle batate hain आपको. कनाडा मेड हिस्ट्री एट बीसी प्लेस, लॉकिंग इन द फर्स्ट एवर मेंस वर्ल्ड कप विक्ट्री एज यू ऑल नो. और उन्हीं के टीम के जोनाथन डेविड ने एक अलग ही जोन में उन्होंने खेला क्या, और एक मतलब क्या ही कहा जाए, गजब का हैट्रिक मारा उन्होंने. एंड कतर कंप्लीटली एक्चुअली कोलैप्स्ड, picking up two red cards and finishing with just 9 men. Ye tha update from their match, and iske baad Switzerland aur Bosnia and Herzegovina ke केस में आते हैं, यानी कि उनके मैच पर आते हैं. 4-1 जो इनका स्कोर रहा. ए मैसिव सेकेंड हाफ इन LA पुश्ड टू द स्विस टू डोमिनेट विन. एंड उनके जो सुपर सब्स्टिट्यूट जोहान थे, उन्होंने तो बस कुछ कमाल के गोल्स दाग दिए और बहुत ही कमाल का खेला. एंड दैट इज़ वाई 4-1 दैट वॉज द मैच स्कोर देयर. मेक्सिको वर्सेज साउथ कोरिया, नाउ दैट इज़ अ मैच दैट एवरीबडी वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू. और मेक्सिको क्लिंच ए टाइट विक्ट्री इन द मैच, और ऑफिशियली वो एडवांस कर चुके हैं टू द राउंड ऑफ 32. 50th मिनट में लुई रोमो ने मौके पर चौका लगा दिया और एकदम सॉलिड गोल किया. एंड वो भी कुछ एक फ्लूक वाला गोल था ऐसा लगा, बिकॉज साउथ कोरिया वाज आल्सो प्लेइंग सॉलिड यस्टरडे एंड साउथ कोरिया फॉट हार्ड, लेकिन नहीं कर पाई वो गोल और वो नहीं क्लियर कर पाई दैट द मैच yesterday. And Czechia versus South Africa match, ek brutal match tha, physical chess match tha in Atlanta, which ended in a tight draw. So that was a quick roundup of yesterday's FIFA matches right here on Fun Asia Radio 104.9 FM.

Listen, we all have very different opinions about, you know, reimaginations, remakes, all of that. But I believe that this was a good remake. और क्यों ना हो भाई, सेम म्यूजिक कंपोजर नहीं, अगर अपने ही क्रिएशन को रिक्रिएट किया है तो इसमें हमें तो कोई हिला शिकवा तो होना नहीं चाहिए. और मुझे लगा कि इट स्टिल स्टेज ट्रू टू द एसेंस ऑफ द मूवी. एंड दैट मूवी विच हैज हिट द थिएटर्स हैज मेड द लैंडफॉल एट आर नियरेस्ट थिएटर्स, कॉकटेल 2, लेडीज एंड जेंटलमैन, डिस्ट्रीब्यूटेड बाई फन एशिया फिल्म्स. अच्छा, आखिरी अपडेट देना चाहती हूँ ऑफ फीफा. दिस इज द फीफा सेगमेंट दैट आई डू विथ यू. अंटिल 19th of July आखिरी जो फाइनल मैच खेला जाएगा 19 जुलाई तक, ये हमारा सिलसिला चलता रहेगा. यानी कि एक महीने में हमारे पास ट्रॉफी विनर का नाम होगा आपके लिए. फिलहाल ये कहना चाहती हूँ, एक ट्रॉफी जब दिल की ट्रॉफी होती ना, वो जीत चुके हैं वो जीनिया. वो वायरल स्टोरी आपने उनकी पढ़ी, अगर नहीं पढ़ी या देखी तो हियर आई एम फॉर ऑल ऑफ यू. केव वर्दे के जो गोलकीपर हैं, उन्होंने एक मैसिव गेम जो पुल ऑफ किया विद स्पेन, वो देखने लायक था और ये स्टोरी सुनने लायक है. जी हाँ, अगेंस्ट स्पेन ही एक्चुअली सेव्ड 7 ऑफ देयर गोल्स. कैन यू इमेजिन, आई मीन ये अपने आप में एक हिस्ट्री बन चुकी है. एंड ही लिटरली गेन्ड 8 मिलियन फॉलोअर्स ओवरनाइट. लेकिन मैच के बाद उन्होंने बताया कि उनकी मॉम जो है वो US नहीं आ पाई, उनके $15,000 का वीजा बॉन्ड मनी जो था वो देना मुश्किल था, इसलिए वो नहीं आ पाई. के वर्दे से मेरे ख्याल से 50 कंट्रीज हु सिटीजन्स फेस बॉन्ड्स ऑफ अप टू $15,000 टू सिक्योर ए US वीजा, पार्ट ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप्स ब्रॉडर क्रैकडाउन ऑन ट्रैवलर्स फ्रॉम कंट्रीज दैट ऑफिशियल सेड had high rates of visa overstays. तो इस कारण केप वर्दे इज़ वन ऑफ द कंट्रीज जिन पर ये अप्लाई होता है. एंड द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन लास्ट मंथ सस्पेंडेड द रिक्वायरमेंट फॉर टिकट होल्डर्स फ्रॉम केप वर्दे एंड 4 अदर वर्ल्ड कप नेशंस. लेकिन कई लोगों को इसके बारे में काफ़ी लेट पता चला और उसके बाद इट वॉज लिटिल टू लेट, लेट्स से दैट. द डिपार्टमेंट सेड इट हैड नोटिफाइड ऑल प्लेयर्स फ्रॉम वर्ल्ड कप कंट्रीज अफेक्टेड बाय द $15,000 visa bond requirements that they and their families would be exempt from the posting. Lekin ye baat shayad Wozinia ki farde ki Wozinia ko nahi pata tha, aur jab pata chala, as I said, it was probably too late. Lekin guess what, the story here now. House Democratic leader Jeffries, he saw this news aur unhone immediately US Secretary of State Marco Rubio se baat ki aur pure mamle ko fast track करवाया. यानी कि अब जो है फीफा और केप वर्दे और स्टेट डिपार्टमेंट की मेहनत से और उनकी एफर्ट से उनकी मदर का, वोजीनिया की मदर का जो वीजा है, इट हैज बीन कंप्लीटली वेव्ड, दैट फीस हैज बीन कंप्लीटली वेव्ड ऑफ. और अब ऑफिशियली उनकी मॉम जो है यूएस वीजा लेकर आने वाली हैं. और संडे को जो केप वर्दे का गेम है, अपने बेटे का गेम फर्स्ट हैंड देखने वाले हैं, ये तो तालियां बनती हैं बॉस, तालियां बनती हैं इसी बात पे. विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट गेम. लेट्स पेंट इट फीफा फॉर ऑल ऑफ यू इन द लास्ट सेगमेंट अंटिल द Until July 19. This is Gapshap Gali with me too, getting ready to wind up and make way for Simi.

0: जाते जाते याद दिलाना चाहती हूँ कि अर्जेंटीना इज गोइंग टू प्ले ऑन मंडे, दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू. फ्यू ऑफ आवर फैंस आर गोइंग टू विटनेस मेसी इन एक्शन. कांट वेट टू हियर द स्टोरीज फ्रॉम देम एंड फ्रॉम यू ऑल हु आर गोइंग टू अटेंड ऑन मंडे दैट गेम हियर इन डैलस स्टेडियम. अभी फिलहाल मुझे इजाजत दें. दिस इज माय टाइम विद यू अंटिल 12:30.
1: आवर एनिवर्सरी इज कमिंग अप. शैल वी रिन्यू आवर वाउज?
2: एब्सोल्युटली. एंड व्हाइल वी आर एट इट, आई शुड रिन्यू सम ऑफ माय ओल्ड ज्वेलरी टू.
1: रिन्यू?
2: या, आई विल एक्सचेंज इट एट तनिष्क फॉर द डिजाइन आई हैव बीन आईइंग फॉर अ व्हाइल. दे टेक ओल्ड गोल्ड अबव 9 कैरेट फ्रॉम एनी ज्वेलर फॉर फुल वैल्यू विद जीरो डिडक्शंस. ऑल्सो वी गेट एन एक्स्ट्रा $5 पर ग्राम ऑन एक्सचेंज्ड गोल्ड विद डायमंड परचेसेस.
1: व्हाट बेटर वे टू सेलिब्रेट देन विद समथिंग टाइमलेस?
2: Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
3: Did you know LASIK is just one of 6 ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
4: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
3: Visionary Eye. See clearly. Live boldly.
5: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
6: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery. ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
7: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी.
8: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं. क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का.
9: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
10: विजिट psychicramnath.com. कॉल 4693474401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध.
11: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ऑन योर रिसर्च में वेरी.
12: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
13: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
12: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन, द फ्लेवर लाउंज.
13: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट.
14: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान. myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स.

0: ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338। myfamilyhomeloan.com इज पावर्ड बाय लोन फैक्ट्री, NMLS 2025289, लाइसेंस्ड मॉर्गेज ब्रोकर इन टेक्सस। ऑल लोन सब्जेक्ट टू क्रेडिट अप्रूवल, इक्वल हाउसिंग लेंडर।
1: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand up, play an instrument, or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at desigottalentus.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.

वैसे ही कुछ एक्टिविटीज आज हम करने वाले हैं, इसीलिए मैंने कहा कि आज मैं बहुत शरारती होने वाली हूँ, बहुत सारे फन और ट्रिकी क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। और आज का जो पहला फन और ट्रिकी क्वेश्चन है वो मैं आपसे करने वाली हूँ। बाय द वे, इस पे कोई गिव अवे नहीं है, जब गिव अवे होगा तो मैं आपको जरूर मेंशन करूंगी, बट फिलहाल नहीं है। लेकिन आपसे बस यही दरख्वास्त है कि आपको सिर्फ और सिर्फ गलत जवाब देना है, सही जवाब नहीं देना है। फनी, इंटरटेनिंग, गलत जवाब देना है। और जो पहला सवाल है वो है कि ताजमहल, जो कि वन ऑफ द वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी है, उसको किसने बनवाया? और खबरदार अगर किसी ने मुझे कॉल करके शाहजहां का, नहीं, वो आंसर तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आपको सिर्फ फनी आंसर्स देने हैं बाय कॉलिंग अस एट 9722355555।

आज मैं भी काफी सारी शरारत के मूड में हूँ। मैं हूँ आरजे सिमी और आप सुन रहे हैं फनेशियर रेडियो और ये शो है आफ्टरनून अड्डा। आज है फ्राइडे और जैसे ऑफिसेज में या फिर स्कूल्स में कॉलेजेस में फन फ्राइडे एक्टिविटीज होती है ना,

बहुत ही मजेदार फन फ्राइडे चल रहा है हमारा। हम आपसे कुछ स्टूपिड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और आपके आंसर्स इतने इंटरटेनिंग, इतने मजेदार हैं कि बस मैं तो हंसते हंसते लोटपोट हो जा रही हूँ। अभी मैंने आपसे पूछा था कि भाई ताजमहल किसने बनाया, और मिनी जी का कॉल आया और उन्होंने बताया कि उन्होंने ही बनाया है। आप लोग ना मेरी साजिश समझे नहीं, मैं जानना चाहती थी कि आखिर ये ताजमहल की प्रॉपर्टी है किसके नाम। अब मुझे पता चल गया है कि वो मिनी जी के नाम है, तो मैंने मिनी जी को बोल दिया है कि वो मुझे अडॉप्ट कर ले। और जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होगा ना, आप मुझे ऐसे आरजे की तरह नहीं सुन रहे होंगे, मैं आ रही हूँगी नेटफ्लिक्स पे ऑन द देसी ब्लिंग सीरीज, जो उसका दुबई वर्जन हो गया। अभी उसका US वर्जन का जब रिच पीपल को दिखाएंगे ना, तो उसमें मैं और मिनी जी भी फीचर करेंगे। सो या जस्ट ब्रेस योरसेल्फ गाइस। और बिंदु जी ने भी फोन किया, उन्होंने बताया कि एक्चुअली मिस्त्री ने बनाया था, मतलब जो लेबर वगैरह। प्रैक्टिकली सही है यार, मतलब नाम शाहजहां यूं ही इतना, लेकिन जो असली आर्किटेक्चर था, जो असली मेहनत थी, वो तो लेबरर्स की थी, वो तो मिस्त्रियों की थी। और कुछ लोगों ने कॉल किया और बोला कि बगल वाले शर्मा जी है ना, उन्होंने ही बनवाया था। तो हो सकता है, पर आप लोग क्लियर क्लैरिफाई कर दो यार, मुझे अडॉप्ट करवाना है खुद को।

कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ रिमिक्सेस, मतलब बैक टू बैक, बंधु 2.0, ऊंचा लंबा कद और चुनरी चुनरी, सब कुछ एक साथ आ रहा है, मतलब द 90s फेवरेट. और कुछ और भी बातें करनी है आपसे, बहुत सारी करनी है. आज तो फन फ्राइडे कर रहे हैं हम. मैं आपसे इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रही हूँ और आपको सही जवाब देना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है आज, आपको सिर्फ और सिर्फ गलत जवाब देना है. और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि यूएस का यानी अमेरिका का कैपिटल क्या है. और कोई मुझे फ़ोन करके वॉशिंगटन डीसी प्लीज़ मत बताइए, इंटरेस्टिंग और फनी आंसर्स ही देने हैं जैसा कि मैंने बताया. आपको मुझे कॉल करना है @ 972-235-5555 पे. और इतनी प्यारी प्यारी बातों के साथ गल मिठी मिठी भी चला देती हूँ, बजा देती हूँ. एंजॉय गाइस.

आप सुन रहे हैं फनेशर रेडियो और मैं हूँ आरजे सिमी विद योर फेवरेट शो द आफ्टरनून अड्डा। अभी स्टूडियो में वक्त हो गया है 1:09 और आज इसके साथ हम अपना जो फन फ्राइडे एक्टिविटी कर रहे थे उसको खत्म करते हैं। अभी मैंने आपसे ब्रेक पे जाने से पहले लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि यूएस का अमेरिका का कैपिटल क्या है और सिर्फ रॉन्ग आंसर्स अलाउड थे, ट्रिकी फनी इंटरटेनिंग आंसर्स अलाउड थे और मुझे बहुत सारे मिल गए हैं। मैं आपको बताती हूँ, तो राकेश ने फोन करके बोला कि यूएस का कैपिटल यहीं झुमरी तलैया में है, बस उधर ही है, चेंज हो गया है, अभी बताया नहीं गया है। और हर्षद ने तो अपना दिल जान सब कुछ कुर्बान कर दिया है टेक्सस को, तो उनको लगता है कि टेक्सस ही कैपिटल है उनके अकॉर्डिंग, बिल्कुल यही है। और दिलशाद को याद आया कराची और वो थोड़ी कंफ्यूज थी कि कराची है या डालस है, चूज करना था तो मैंने उनकी हेल्प कर दी, कराची को फाइनल कर दिया है। और नीलू ने बताया कि मुंबई में एक जगह है इंडिया में विच इज उल्लास नगर, जहां की यूएस की सारी डुप्लीकेट चीजें मिलती हैं और उस सारे सामान पे लिखा रहता है ब्रांड के साथ मेड इन यूएसए, तो हो सकता है कि वहीं शिफ्ट हो गया हो तभी तो वो लिख पा रहे हैं ना, वरना वो कैसे कर पाते। और बहुत ही स्वीट वॉइस में, इनोसेंट वॉइस ने कवीश, एक छोटे से किड हैं, उन्होंने भी फ़ोन किया था और उन्होंने बताया कि वर्जिन आइलैंड जो है वो ही है यूएस का कैपिटल। तो हम तो लग रहा है हमें कि सारे के सारे जवाब सही हैं। वैसे वक्त आ गया है कि मैं आपसे सही सवाल भी पूछूं और आपको कुछ गिव अवे दूं भाई, तो स्टे ट्यून रहिए और इस गाने के बाद बस गिव अवे राउंड करते हैं।

हाँ जी, मेरे भी माइंड में पार्टी ही पार्टी चल रही है, लेकिन अब वक्त आ गया है अपने गिव अवे राउंड का, और मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, आपको अगर सही जवाब पता हो तो आप मुझे उसको कॉल करके बताना है, और आप जीत सकते हैं चंडीगढ़ बाइट से फ्री कड़ाही पनीर या फिर कड़ाही चिकन खाने का मौका। तो ये मौका बिल्कुल मत गवाइए, इस सवाल को ध्यान से सुनिए और इस बार सही आंसर देने, हाँ ठीक है? ये नहीं कि पिछली बार की तरह कि मैंने तो बताया नहीं, मैंने बता दिया है, और तैयार हो जाइए, क्योंकि क्वेश्चन है कि मैं आपको एक लेटर दूंगी और आपको उस लेटर से एक प्लेस का नाम बताना है, एक एक्टर का नाम बताना है और एक मूवी का नाम बताना है, ठीक है? प्लेस, एक्टर, मूवी, ओके? और जो लेटर है वो है ई, ई फॉर एलिफेंट, और आपको कॉल करना है मुझे @972235555 पे।

मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लिसनर्स का ना स्पिरिट देख के, जॉय देख के इतना मजा आता है। आप लोग भी एकदम ऐसे ही दिल से रे खेलते हो, कोई भी गेम कोई भी क्विज करो, चाहे वो गिव अवे के लिए हो या फिर ना हो, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। वैसे लास्ट राउंड तो गिव अवे का था और सवाल था कि आपको लेटर ई से एक मूवी का नाम बताना है, एक प्लेस का नाम बताना है और एक एक्टर का नाम बताना है। तो बहुत सारे लोगों ने इसको खेला है और सही जवाब दिया है, लेकिन जो सबसे पहले सही जवाब मिला है वो मिला है श्वेता से। तो श्वेता, आप जीत चुकी हैं चंडीगढ़ बाइट्स का गिव अवे, विच इज फ्री कढ़ाई पनीर या फिर कढ़ाई चिकन। चंडीगढ़ बाइट्स का जो मेन्यू है वो काफ़ी अमेजिंग है, स्पेशली जो उनका स्पेशल थाली होता है ना, मंडे से लेके फ्राइडे तक, दैट टू विथ एक्साइटिंग न्यू डिशेस जो रोटेट करता है डेली फॉर द लंच। ये लोकेटेड है मैकडर्मट ड्राइव इन एलन, और आपको इस पे और जानकारी चाहिए, डिटेल्स चाहिए, तो आप इनके वेबसाइट पे जा सकते हैं विच इज़ chandigarhbites.com। और तब तक छानते रहिए मोहल्ला।

वैसे अगर आप भी मोहल्ला छान रहे हैं, ढूंढ रहे हैं एक अच्छा ज्वेलरी लोकेशन कलेक्शन, तो आप रेफर कर सकते हैं पीएमजे ज्वेल्स. खुल गया है भाई डैलस में, और दैट टू इट्स कमिंग टू फ्रिस्को, ब्रिंगिंग ओवर 60 इयर्स ऑफ उनका एक्सीलेंस जो है, और दैट टू विद टाइमलेस इंडियन क्राफ्टमैनशिप. यहां आपको मिलेगा स्टनिंग गोल्ड, डायमंड एंड ब्राइडल कनेक्शन हर एक सेलिब्रेशन और माइलस्टोन के लिए. वो अपना ग्रैंड ओपनिंग सेलिब्रेट कर रहे हैं ऑन June 20th, जहां आप एंजॉय कर सकते हैं एक्सक्लूसिव ऑफर्स, एक्साइटिंग फेस्टिविटीज और चांस एक ब्यूटीफुल ज्वेलरी पीस जीतने का. ग्रैंड ओपनिंग सेलिब्रेशन कहीं भी होता है ना, तो कुछ ना कुछ एक्साइटिंग प्राइजेस जरूर होते हैं, तो आप जरूर जाएं. और इनके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो भी काफी अमेजिंग है, हु इज महेश बाबू एंड सितारा जो उनकी बेटी है. और ये लोकेटेड है फ्रिस्को में ऑन द मेन स्ट्रीट, जहां आप अपनी ज्वेलरी और उसकी कहानी डिस्कवर कर सकते हैं.

0: शुभ दिन आ पहुंचा है। एक ऐसा अवसर जहां 60 वर्षों की परंपरा, बेमिसाल कारीगरी और पीढ़ियों के विश्वास का संगम आ रहा है आपके शहर फ्रिस्को में। PMJ Jewels.
1: Be a part of this grand opening celebration from 20th June Saturday onwards and get exclusive offers, exciting celebrations and opportunities to win beautiful jewelry pieces. PMJ Jewels. Tradition crafted, style defined.
2: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
3: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
4: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
5: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
6: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
7: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
8: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
7: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
8: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
7: ये क्या होता?
8: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
2: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
9: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन available. Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
10: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
9: That magic removal ho, love and relationship issues ho, get trusted solutions with 100% privacy.
10: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn.
9: Samasya ka pakka samadhan. Astrologer Ishwar.
10: Call now 945-527-0897 or visit astrologer ishwar.com.
11: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
12: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
11: Kya matlab?
12: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
11: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
12: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
11: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
13: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
14: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती।

0: 888-9914 and take control of your financial future.
1: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
2: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी. तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
3: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
4: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.

दीदार तो नहीं हो पाएगा फिलहाल, आपको मेरी आवाज से ही काम चलाना पड़ेगा क्योंकि ये रेडियो है ना। आप सुन रहे हैं फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूँ आज सिमी विद योर फेवरेट शो दी आफ्टरनून अड्डा। अभी स्टूडियो में टाइम हो गया है 1:40 और बहुत सारी बातें, अभी एक घंटा है ऑलमोस्ट हमारे पास और बहुत सारी बातें होंगी जैसा कि मैंने बताया। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने सपनों का घर ढूंढ रहे हैं, आपको चाहिए कि आपका जो घर का सपना है वो रियलिटी बन जाए, तो आपको कंसल्ट करना चाहिए विद ड्रीम होम मॉर्गेज, क्योंकि ये अपना 1998 से ना फैमिलीज को हेल्प करते आ रहे हैं बाय टर्निंग देयर होम ओनरशिप इनटू रियलिटी। ये आपको देंगे पर्सनलाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस और इनका जो पूरा प्रोसेस है वो काफी स्मूथ है, स्ट्रेस फ्री है, टेंशन फ्री है। इनके पास सारे के सारे यूएस के जो स्टेट्स हैं, 50 states, उनमें इनका लाइसेंस है, तो आपको कहीं भी अगर घर चाहिए तो ये हर जगह प्रेजेंट है विद इन द यूएस और ये आपको हेल्प करेंगे राइट लोन ऑप्शन चूज करने के लिए आपके हिसाब से, आपकी जरूरतों के हिसाब से आपको सजेस्ट करेंगे। तो अगर आप अपना पहला घर खरीदना चाह रहे हैं, अपग्रेड करना चाह रहे हैं या फिर रीफाइनेंसिंग ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं ड्रीम होम मॉर्गेज को एट 972-245-5626 या फिर आप उनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं विच इज dreamhomemortgage.com।

और आपने सुना क्या टेक्सास प्राइमरी केयर के बारे में? नहीं सुना है, नहीं पता है तो बता देती हूँ। जो टेक्सास प्राइमरी केयर है ना, जो 13 साल से प्राउडली केयर करते आ रहे हैं अपनी कम्युनिटी को, अब वो लेके आ गए हैं एक ब्रांड न्यू नेम और येट अनदर लोकेशन जो कि फ्रिस्को में है। इंट्रोड्यूसिंग लनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाई डॉक्टर मनदीप आचार्य। यहाँ पे आपको हर तरीके की सर्विसेज मिलेंगी, चाहे वो प्राइमरी केयर हो, अर्जेंट केयर हो, इन हाउस लैब टेस्टिंग हो, एक्सरेज हो, सीटी स्कैन हो, कार्डियक डायग्नोस्टिक्स हो, या फिर आपको यू ही मेड स्पा सर्विसेज चाहिए हिमालयन वाली, तो भी आप जा सकते हैं। इट्स ऑपरेशनल 7 days अ वीक, 8 AM से लेके 8 PM तक, और ये सारी सर्विसेज एक ही रूफ में है, तो आप एक साथ जाके करा लें। वॉक इन अप्रिशिएटेड है और कोई भी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है अगर आप ले नहीं पाए हैं तो डू एक्सप्लोर लनॉक्सी मेडिकल।

ये जो सॉन्ग है ना ओके जानू का, इसमें जो एक्टर और एक्ट्रेस हैं वो मस्त दिख रहे होते हैं कि वो बाइक पे राइड कर रहे हैं, स्टंट कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। सेफ्टी बरतनी चाहिए ड्राइव करने वक्त, लेकिन फिर भी अगर कुछ हो जाए किसी टाइप का कार या ट्रक एक्सीडेंट, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिकॉज ओमर ख्वाजा इज एट योर रेस्क्यू। ही विल फाइट योर केस एंड हेल्प यू गेट दी कॉम्पनसेशन दैट यू डिजर्व। और तो और आपको तब तक पे नहीं करना जब तक कि आप केस जीत नहीं जाते। मतलब मैंने माना कि इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह से ना आपको भी लगता है ना कि बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है यार उनसे डील करना, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, इतना कुछ मांगते हैं, इतना डिले होता है पूरा प्रोसेस, लेकिन जब ओमर ख्वाजा है तो आपको टेंशन लेने की क्या जरूरत है। फॉर अ फ्री कंसल्टेशन प्लीज कॉल हिम एट 4693005046 या फिर विजिट देयर वेबसाइट विच इज attorneyomar.com।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
3: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
2: Renew?
3: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
2: What better way to celebrate than with something timeless?
3: Visit Tanishq, Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
4: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दूंगी।
5: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
6: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
7: Now sir, or price?
6: Up to 25% off on lehengas and bridal collection. Summer sale through the end of August. Only at Indian Attire Frisco. Traditional ho ya fusion, ab har outfit bolega.
8: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Oh... उमर ख्वाजा।
9: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
10: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
11: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य। एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
12: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
13: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
14: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
15: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
14: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
16: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
17: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
16: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
17: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
16: सच में सब संभाल लेंगे?
17: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
11: कॉल हरि बसेरा ऑन 4694428770। वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
9: यार बिजनेस चलाना दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, हर तरफ बस एक्सपेंसेस ही एक्सपेंसेस।
18: बिल्कुल, लेकिन तुझे पता है अब वही एक्सपेंसेस तुझे इनकम भी दे सकते हैं।
9: सच में? एक्सपेंसेस से इनकम कैसे?
18: कनेक्टिंग अमेरिका के थ्रू। उनके पास एक यूनिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन है जो बिजनेस ओनर्स को अपने खर्चों को एक इनकम स्ट्रीम में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है।
9: वाह, मतलब पैसे सिर्फ जाएंगे नहीं वापस भी आएंगे।
18: एग्जैक्टली, अगर तू अपनी बॉटम लाइन बूस्ट करना चाहता है तो जेम्स को आज ही कॉल कर।
9: नंबर बोल जल्दी।
18: कॉल जेम्स एट 3218887345 और विजिट connectingamericafinancials.com।
11: कनेक्टिंग अमेरिका, जहां स्मार्ट बिजनेस ओनर्स टर्न कॉस्ट्स इनटू कैश।

दिस वॉज वल्ला, अ वेरी ट्रेंडिंग सॉन्ग फ्रॉम द मूवी कॉकटेल 2, जो कि आज रिलीज हो रही है. वीकेंड भी है तो भाई किस बात का इंतजार है, जाइए और अपने दोस्तों के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ मूवी इंजॉय कीजिए. और अगर आप भी तनिष्क की ज्वेलरी पहन के जब निकलेंगे ना, तो भी आपको लोग ऐसे ही बोलेंगे कि एन्नी सोनी वल्ला. और तो और, तनिष तो एक खास ऑफर भी लेके आया है, विच इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ एक्सचेंज, जहां पे आप अपना पुराना सोना जो है, ओल्ड गोल्ड, वो एक्सचेंज कर सकते हैं और आपको मिलेगा $5 एक्स्ट्रा पर ग्राम ऑन एक्सचेंज्ड गोल्ड विद द डायमंड परचेजेस. और 9 कैरेट से ऊपर के ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पे 0% डिडक्शन है. तो वक्त आ गया है कि आप अपने पुराने सोने को कन्वर्ट कर दे इंटू समथिंग ब्रांड न्यू, ब्यूटिफुल and timeless, only at Tanishq USA. Terms और conditions भी है तो वो जरूर चेक कर ले at the store. और अब give away round का भी time आ रहा है, लेकिन ये song सुनने के बाद, so stay tuned at Furniture Radio 104.9 FM with me, यानी कि आज से मी on your favorite show, the afternoon adda.

See guys, you might hate love story, but you definitely love the giveaways. खेलना छोटे छोटे quizzes वगैरह games कितना मजा आता है. तो उसी का वक्त आ चुका है कि मैं आपसे सवाल पूछूं और अगर आपको जवाब पता है तो आपको कॉल करके बताना है मुझे और आप जीत सकते हैं फन पिज्जा किचन की तरफ से $10 का गिफ्ट कार्ड. ओके, तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपसे सवाल पूछती हूँ. आपको इस मूवी के कुछ हिंट्स दिए जाएंगे और आपको गेस करना है इस मूवी का नाम. रेडी? ओके, तो पहला हिंट ये है कि इस मूवी का जो नाम है वो इसके विलेन के नाम पे रखा गया है. इसमें एक्ट्रेस को एक्टर के कैरेक्टर का रियल असली नाम जो है उनके कैरेक्टर का विद इन द मूवी नहीं पता होता टिल द वेरी एंड. और लास्ट हिंट देती हूँ, लास्ट हिंट देने पे आपको पक्का ही समझ आ जाएगा. मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है गाइज. अगर आपको जवाब पता है तो कॉल कीजिए 972-235-5555.

वक्त आ गया है कि हम अपने गिव अवे राउंड के विनर को अनाउंस करें। क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था कि आपको एक मूवी का नाम गेस करना है, और मैंने आपको कुछ हिंट्स दिए थे कि इस मूवी में ना इसका जो मूवी का नाम है वो विलेन के ऊपर इसका नाम रखा गया है, मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है, और एक्ट्रेस को एक्टर का असली नाम नहीं पता होता टिल द वेरी एंड, एंड द मूवी इज गजनी। जी हाँ, और आज के हमारे गजनी राउंड के विजेता हैं वीरेश। कॉन्ग्रेचुलेशंस वीरेश, आपको मिलता है फन पिज्जा किचन की तरफ से $10 का गिफ्ट कार्ड। और फन पिज्जा किचन एक ऐसी जगह है ना जहां आपको वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन चॉइसेस दोनों ही मिलती हैं, साथ में आप थोड़ा कस्टमाइज भी कर सकते हैं कि अगर आपको माइल्ड पसंद है, बोल्ड पसंद है, बैलेंस पसंद है, जैसा भी पसंद है, एक स्लाइस आपका इंतजार कर रहा है, आओ मुझे खा लो गाइस, जल्दी जल्दी आ जाओ। और इसका वेबसाइट है funpizzakitchen.com, अगर आपको कोई और डिटेल चाहिए जैसे कि मेन्यू या फिर ओपनिंग या क्लोजिंग आवर्स तो भी आप जा सकते हैं। एंड वीरेश, आपको तो जाना ही पड़ेगा, आपको तो अपना कार्ड रिडीम करना ही पड़ेगा। नाउ आई एम गोइंग टू प्ले बेका एंड बेका फ्रॉम द मूवी गजनी फॉर यू गाइज़।

0: आई होप कि आप सबको मेरा शो भी पसंद आया होगा और आप भी कहें कि माशाल्लाह माशाल्लाह क्या शो है माशाल्लाह। वैसे अब मेरे जाने का वक्त हो गया है, दिस इज आरजे सिमी साइनिंग ऑफ, लेकिन उसके पहले मैं आपको एजी फिनटेक्स के बारे में लास्ट है बता के जाती हूँ कि अगर आप ढूंढ रहे हैं एक टैक्स प्लानिंग ऑप्शन सोल्यूशन जो आपको मदद करे आपके टैक्स रिलेटेड क्वेरी से, तो आप रूट आउट कर सकते हैं टू एजी फिनटेक्स, हु इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म इन द US। ये ऑफर करते हैं इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज विद अनटैप्ड पोटेंशियल इंडिविजुअल्स के लिए एज वेल एज बिजनेसेस के लिए। ट्रस्टेड है, एफिशिएंट है और आपको फ्यूचर रेडी करते हैं। आपको कॉल करना है इन्हें एट 4699429888 या फिर विजिट करें agfintax.com। और जैसा कि मैंने बताया कि अब मेरे जाने का वक्त हो गया है, लेकिन फन का सिलसिला जारी रहेगा। याद दिला दूं कि कॉकटेल 2 रिलीज हो रही है, आज वीकेंड है, जरूर जाएं, और फादर्स डे भी है इस संडे, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ प्लानिंग करें। ओके, बाय, टेक केयर।
1: शुभ दिन आ पहुंचा है, एक ऐसा अवसर जहां 60 वर्षों की परंपरा, बेमिसाल कारीगरी और पीढ़ियों के विश्वास का संगम आ रहा है आपके शहर फ्रिस्को में। PMJ Jewels.
2: Be a part of this grand opening celebration from 20th June Saturday onwards and get exclusive offers, exciting celebrations and opportunities to win beautiful jewelry pieces. PMJ Jewels. Tradition crafted, style defined.
3: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
4: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
3: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
4: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
3: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
4: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
3: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
5: जिस बात का डर था वही हुआ, लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन।
6: अरे कहना क्या चाहते हो?
7: डॉक्टर की बात समझ ही नहीं आई, लैंग्वेज बैरियर का टेंशन भी, अब टेंशन का टाइम गया। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के साथ मल्टी लैंग्वेज नर्सेज और डॉक्टर्स हमेशा आपके साथ हैं। हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, एनी लैंग्वेज यू प्रेफर। फ्रिस्को, प्लेनो, मैकिनी, अबरी, फ्लावर माउंट, इरविंग, प्रॉस्पर, एना, एनी लोकेशन यू आर क्लोज टू, कॉल 214-666-6259 और विजिट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर डॉट कॉम। Passion Health Primary Care. Your health, your language, your comfort.
8: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
9: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
10: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
9: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
11: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
8: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
12: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you are dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
9: Ritesh, kabhi socha hai? कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
11: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
9: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
11: वेट, व्हाट?
13: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
14: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
13: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799। दैट्स 669-243-5799।
15: अरे सारे तो सेम है।
16: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
15: ओह हाँ, ये तो अलग है।
13: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com. The Texas Super Kings are here and the action is absolutely heating up. Don't miss a single thrilling moment. Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium. We have got electrifying matches on Thursday, June 18th, Saturday, June 20th, Sunday, June 21st. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit

वेलकम, नमस्कार, खुशामदीद। फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम पे करती हूँ मैं मधुलिका आप सभी का हार्दिक स्वागत। वेल, दूंगी आपका साथ शाम 5 बजे तक। स्टूडियो का नंबर रखें याद, 9722355555। हर रोज आपके लिए लास्ट 2 वीक से मैं कोई नया टॉपिक लेके आती हूँ, नया कोई थीम लेके आती हूँ जिसके हिसाब से हम गाने सुनते हैं। तो आज का हमारा जो थीम है या जो टॉपिक है वो गाने हैं जिनके गानों के वीडियो में आपको लहंगा चोली दिखे। सो नॉट साड़ी, नॉट सूट, बट लहंगा। तो अगर जो वीडियो है उसमें लहंगा है तो आप हमें कॉल करें। द नंबर इज 9722355555। अ बिग शाउट आउट टू सिमी फॉर अ वंडरफुल शो दैट शी ब्रॉट टू अस टिल 2:30 PM। मैं दूंगी आपका साथ टिल 5 PM। स्टूडियो नंबर वंस अगेन इज 9722355555।

0: वेल दैट वॉज रंगीलो मारो ढोलना एंड यस, आज हम सुन रहे हैं वो गाने जिन गानों की वीडियो में एक्ट्रेस ने लहंगा पहना हो। स्टूडियो का नंबर 9722355555। मैं मधुलिका दूंगी आपका साथ टिल 5। एंड यस, लहंगे की बात हो और ज्वेलरी की बात ना हो तो थोड़ा सा ज्यादती है, राइट? सो आपको मैं तनिष्क के बारे में बताना चाहूंगी, एज तनिष्क इज प्रेजेंटिंग द फेस्टिवल ऑफ एक्सचेंज। जी हाँ, आप अपना पुराना गोल्ड एक्सचेंज कर सकते हैं एंड गेट $5 एक्स्ट्रा पर ग्राम ऑन एक्सचेंज गोल्ड विद डायमंड परचेजेस। साथ ही साथ अगर 9 कैरेट से ऊपर के ओल्ड गोल्ड को आप एक्सचेंज करेंगे तो उस पर 0% डिडक्शन। सो टर्न योर ओल्ड गोल्ड इनटू समथिंग न्यू, ब्यूटिफुल एंड टाइमलेस, ओनली एट तनिष्क USA। एंड ऑफ कोर्स टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई।
1: Dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, d

दैट वॉज द टाइटल ट्रैक आजा नच ले. एंड यस, आजा ये बात भी सुन ले कि कभी कभी होता है कि ना चाहते हुए भी आप इन्वॉल्व हो जाते हैं कोई कार या ट्रक एक्सीडेंट में या कहीं कोई स्लिप या फॉल इंसिडेंट में. एंड यू फील कि यार अब ये इंश्योरेंस कंपनी से कौन डील करेगा, कौन हमारा केस लड़ेगा, कैसे टाइम निकालेंगे. सो आपको रखना है एक ही नाम याद, एंड दैट्स अटर्नी ओमर ख्वाजा. एज ही फाइट योर केस, get you the compensation you deserve, and you do not pay until you win your case. So for a free consultation, aap unhe call karein. The number is 469-300-5046, or you can visit attorneyomar.com. That's attorneyomar.com.

Well, that was taken from the movie Hum Dil De Chuke Sanam, and that was a song request coming from Sumaya. Sumaya, thank you so much for calling in. And before I play the next song, मैं आपको टेक्सास प्राइमरी केयर के बारे में बताना चाहूंगी, क्योंकि मजे की बात ये है दैट आप यहाँ किसी भी दिन किसी भी टाइम जा सकते हैं. जी हाँ, सातों दिन ये खुली है ये क्लिनिक आपके लिए, फ्रॉम 8 AM टू 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, नो अपॉइंटमेंट नीडेड. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट टेक्सास प्राइमरी केयर, जो कि 13 साल से यू नो हैज़ प्राउडली केयर्ड फॉर आर कम्युनिटी. एंड अब ये फ्रिस्को लोकेशन में एक नए नाम से ये क्लिनिक आ रही है, एंड द नेम इज़ ल्यूनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्या. ल्यूनॉक्सी मेडिकल ब्रिंग्स प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, इन हाउस लैब टेस्टिंग, एक्सरेज, सिटी स्कैंस, कार्डियक डायग्नोस्टिक्स एंड हिमालयन मेड स्पा सर्विसेज, ऑल अंडर वन रूफ. एंड एज आई सेड, नो अपॉइंटमेंट्स नीडेड, यू कैन वॉक इन एनी टाइम. दे आर ओपन 7 डेज अ वीक, फ्रॉम 8 AM टू 8 PM.

0: शुभ दिन आ पहुंचा है। एक ऐसा अवसर जहां 60 वर्षों की परंपरा, बेमिसाल कारीगरी और पीढ़ियों के विश्वास का संगम आ रहा है आपके शहर फ्रिस्को में। PMJ Jewels.
1: Be a part of this grand opening celebration from 20th June Saturday onwards and get exclusive offers, exciting celebrations and opportunities to win beautiful jewelry pieces. PMJ Jewels. Tradition crafted, style defined.
2: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
3: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
2: नहीं।
3: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
2: नहीं।
3: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
2: वो भी नहीं।
3: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
4: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy.
5: AG Fintax led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
6: Sunita, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
7: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
6: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
7: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
8: इंट्रोड्यूसिंग लुमिटी लर्निंग सेंटर, फ्रिस्को प्रॉस्पर और मैकिनी ISD अलाइंड करिकुलम दैट डजंट जस्ट मैच, इट एक्सीड्स। पर्सनलाइज्ड मैथ और इंग्लिश प्लान्स, सर्टिफाइड टीचर्स, कंटिन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर बच्चे के लिए कम्पेटिटिव एज। ट्राई लुमिटी, यू'ल सी द डिफरेंस। किड्स एजेस 5 to 13, कॉइट and Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
9: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली। कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
10: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
9: कहाँ?
11: फूडिस्तान इन ऑबरी। फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम Indian cuisine at D-Vibe, an upscale restaurant for the perfect family dinner.
8: Foodistan in Aubrey. Everything they see, one place, one vibe.
12: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khawaja, your legal lifeline.
13: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी। और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेम्पल इन फ्रिस्को।
14: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
13: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग। ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो। श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी।
9: मामू, देखो क्या हो गया।
15: ओ, क्या हो गया?
9: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया, और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है?
15: ओए, जर्मन का कमाल है।
9: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है।
15: ओ नहीं, ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, BMW, VW और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं, और A1 करते हैं यार। तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623, कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार।
5: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस।
16: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
17: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल, FunAsia 104.9 FM।

You're listening to 104.9 FM Fun Asia Radio, bringing the community together. मैं हूँ मधुलिका, दूंगी आपका साथ till 5 PM. Covering in for Kiran, and yes, the studio number is 972-235-5555. आज सुन रहे हैं हम वो गाने जिन गानों की वीडियो में एक्ट्रेस ने लहंगा पहना हो. सो अगर हैं ऐसे कोई गाने आपके मन में तो जरूर कॉल करिए. द नंबर इज 972-235-5555. दिस इज मधुलिका, विल बी देयर विद यू टिल 5.

Well, that was taken from the movie Anjaam. And yes, अगला गाना प्ले करूं उसके पहले आपको मैं तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट के बारे में बताना चाहूंगी. इट्स लोकेटेड इन गार्लैंड एंड वीकेंड है, समर ब्रेक चल रही है, तो इतनी ड्राइव तो बनती है, राइट? सो इफ यू आर हेडिंग टूवर्ड्स गार्लैंड, देन तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट रखें याद, एज दे कैन सर्व यू सिजलिंग तंदूरी प्लेटर्स, रिच करीज, ऑल योर नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, वेलवेटी करीज एंड फ्रेश गर्मा गर्म नान, राइट? जहां पर हर प्लेट जो है विल फील लाइक अ सेलिब्रेशन. सो स्टेप इन टूडे, लेट तंदूरी फ्लेम सर्व यू द काइंड ऑफ मील दैट टर्न्स एन ऑर्डिनरी डे इन टू अ फीस्ट. एंड द नेक्स्ट वन इज अ सॉन्ग रिक्वेस्ट, दैट्स टेकन फ्रॉम द मूवी हम दिल दे चुके सनम.

भाई छोटा निबुड़ा तो नहीं ला सकती, लेकिन आपके लिए इन्फॉर्मेशन ज़रूर लाती हूँ एंड बताना चाहूँगी आपको माई टाइम इक्विटी के बारे में, क्योंकि आपको अगर कोई भी फाइनेंशियल गाइडेंस चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो माई टाइम इक्विटी लेड बाय CPA सुधीर पाए, यू नो ही हेल्प्स इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज बिल्ड स्मार्टर फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज थ्रू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं लॉन्ग टर्म वेल्थ या फिर रिटायरमेंट या ग्रोइंग योर इन्वेस्टमेंट्स, देन माई टाइम इक्विटी ऑफर्स पर्सनलाइज सोल्यूशंस डिजाइंड अराउंड योर गोल्स। सो विजिट mytimeequity.com और यू कैन कॉल 4697021272 टुडे।

0: वेल दैट वॉज टेकन फ्रॉम द मूवी बीवी नंबर वन. रेड हॉट चिली पेपर का ये गिव अवे था, जिसमें कि मैंने पूछा था सवाल कि मैं एक गाने का कुछ रफ ट्रांसलेशन दे रही हूँ एंड आपको मुझे बताना है कि मैं किस गाने की बात कर रही हूँ. सो द ट्रांसलेशन इज सम वॉट लाइक दिस, दैट वेलकम टू आर लैंड, कम जॉइन अस इन आर ट्रेडिशनल डांस, कम सेलिब्रेट विद अस एंड शेयर इन आर जॉय. सो वी डू हैव अ लिसनर ऑन एयर विद अस. हाय, यू आर लाइव ऑन एयर. How are you?
1: Hi, my name is Nitya. All right. Good, thank you. How are you?
0: I am doing great, Nitya. So, बताइए मैं कौन से गाने की बात कर रही हूँ?
1: Woman.
0: क्या बात है? वाह वाह वाह वाह. बिल्कुल सही जवाब. Awesome. Congratulations. जीत लिया आपने Red Hot Chili Pepper का ये giveaway. I'm gonna take you off air, take some details from you while I'm gonna play this Ghoomar song for our listeners. Nitya, tell me something. Have you ever danced on this song, Ghoomar?
1: Yes, that's home with
0: me. That is so sweet. Awesome. So cool. Enjoy the weekend and congratulations once again. I'm taking you off air and take some details from you.
1: Thank you so much.
0: Thank you.

0: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फोनेशिया 104.9 FM।
1: Tracks that put you on the right track.

मोहब्बत तेरी, मासूमियत फितरत तेरी, ये सादापन ये भोलापन, तू महकी महकी तू लहकी लहकी तू चली चली हर गली गली तू, हवा के ढंग संग सनन सनन तेरा अंग अंग जैसे जल तरंग, कोई लहर लहर चली ठहर ठहर।

0: लचक लचक कभी मटक मटक कभी ठुमक ठुमक चली झूम झूम कभी घूम घूम धरती को चूम मची धूम धूम चंचल बड़ी तू नटखट बड़ी तू महकी बहार रस की फुहार तेरे तीखे नैन तेरे केश रैन ये बलखाना ये इंद्राना
1: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
2: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
1: Renew?
2: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
1: What better way to celebrate than with something timeless?
2: Visit Tanishq, Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
3: समझ नहीं आ रही टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
4: It's Lawson.
3: किससे बात करूँ? सारी जानकारी कौन देगा?
4: It's Lawson.
3: Daddy, what is the law?
5: It's Lawson Travels for all your travel needs. Give them a call today. 214-631-2458. The travel experts. Lawson Travel.
6: पापा, फादर्स डे पे क्या गिफ्ट चाहिए?
7: बेटा है तू मेरा, तुम लोग साथ बैठ जाओ, यही काफी है।
8: और वही तो सबसे बड़ा गिफ्ट है। All that your father needs is good food, great company and unforgettable moments. This Father's Day weekend from June 19th to 21st, take your dad to the Flavor Lounge Frisco. Indulge in refined flavors, elegant dining and moments that truly matter. Plus, every father gets one free cocktail or mocktail. The Flavor Lounge on Preston Road near Malabar Golden Diamond Complex. Call 469-712-3591 and reserve your table today.
9: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
10: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
11: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव।
12: विजिट psychicramnath.com, कॉल 469-347-4401. प्लेनो, मैकिनी, इर्विंग और गार्लिन में उपलब्ध।
13: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली एंड रिजल्ट्स में वेरी।
14: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
15: हाँ।
14: घर रिलोकेट करनी है?
15: हाँ।
14: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
15: हाँ भाई हाँ।
14: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
16: Documents shipping, boxes shipping, complete door-to-door relocation, auto transport. Sirf India nahi, USA aur duniya bhar mein trusted shipping aur moving services. SFL Worldwide, har move ka perfect solution. Visit sflworldwide.com or call 1-800-691-2335.
17: Dude, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
18: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
17: कैसे?
18: पेज 3 ईटरी?
17: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
18: डूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
17: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
12: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
9: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
12: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
19: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
20: नए दोस्त मजेदार लगते हैं क्योंकि उनकी कहानियां हमारे लिए नहीं होती।
12: दोस्ती, प्यार और फिर वही इमोशनल केओस। 2012 की सुपरहिट कॉकटेल के बाद एक नया ट्विस्ट, एक नई कहानी लेकर होमी अजजानिया इज बैक विद कॉकटेल 2. Starring Shahid Kapoor, Kriti Sanon and Rashmika Mandanna. Get ready as the perfect cocktail mixture with Cocktail 2, releasing on the 19th of June at theatre near you. Come on,
4: The Dill of Dallas. Heart to Heart, Fun 89.3.

Well, that was taken from Mimi and yes, Param Sundari. That was अच्छा. अगला गाना प्ले करती हूँ. दैट्स अ सॉन्ग रिक्वेस्ट. इट्स कमिंग फ्रॉम द मूवी बड़े मियाँ छोटे मियाँ.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
6: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Heere moti, main na chahu.
8: Achha, manifest karne se pehle thoda dubara soch lo. Kyunki ab diamonds mein mil raha hai buy 2 get 1 free offer. Tanmay Jewelers in Irving. Diamond rings, pendants, earrings aur bridal jewelry par buy 2 get 1 free. Aur wo bhi sab kuch wholesale price par. Chahe proposal ho, wedding ho ya bas apni sparkle upgrade karni ho. Ab shine double within budget. Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
9: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
10: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
11: Calculating route, rerouting.
10: Arre, ye kya? Mujhe mere wale grocery store mein jana hai.
11: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
10: Kyun?
11: Kyunki Fort Worth, Keller, Hazlitt aur Hearst ke smart log jante hain. Daily groceries ho ya puja essentials, authentic Indian products aur ghar ki har zarurat. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
10: Achha. तो सीधा वही ले चलो
12: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ स्विच द रूट
11: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड
13: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
14: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
13: Kya matlab?
14: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
13: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
14: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
13: Ab to kar ना ही पड़ेगा मैडम
15: डोंट लेट डेट रूइन योर लाइफ विजिट ura.org और कॉल 888-888-9914 एंड टेक कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंशियल फ्यूचर
16: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं
17: अरे सुन ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है
18: माँ रील्स पे सब लकी ही होते हैं जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो
19: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है पंडित राम तुलसी जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है करियर हो स्टडीज शादी या फ्यूचर प्लानिंग हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट
18: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com
20: जिस बात का डर था वही हुआ लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन
21: अरे कहना क्या चाहते हो
22: डॉक्टर की बात समझ ही नहीं आई लैंग्वेज बैरियर का टेंशन भी अब टेंशन का टाइम गया पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के साथ मल्टी लैंग्वेज नर्सेज और डॉक्टर्स हमेशा आपके साथ हैं हिंदी तेलुगु इंग्लिश एनी लैंग्वेज यू प्रेफर फ्रिस्को प्लेनो मैकिनी अबरी फ्लावर माउंट इरविंग प्रॉस्पर एना एनी लोकेशन यू आर क्लोज टू कॉल 214-666-6259 और विजिट पैशन हेल्थ passionhealthprimarycare.com. Passion Health Primary Care. Your health, your language, your comfort.
0: I've been researching retirement planning.
1: Oh, really? Where?
0: Google, YouTube, a guy on TikTok.
1: Or you could just talk to WealthTactic.
0: What's the difference?
1: They create a real retirement strategy. Not just investments, but a plan for when your income stops.
2: WealthTactic. Because retirement needs a strategy, not a search bar. For free consultation, call 469-693-2077 or visit them at thewealthtactic.com.
23: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे?
24: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
23: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
24: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
23: सच में? सब संभालेंगे?
24: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
2: कॉल हरि बसेरा ऑन 469-442-8770. वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
25: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल, फोनेशिया 104.9 FM।

सुन रहे हैं आप 104.9 FM Fun Asia Radio, bringing the community together. This is Madhulika covering in for Kiran. मैं दूंगी आपका साथ शाम 5 बजे तक. स्टूडियो का नंबर 9722355555 और आ गया है एक गिव अवे आपके लिए फ्रॉम इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ. सो वेल, हियर्स योर चांस टू विन अ स्पेशल ग्रोसरी हैम्पर फ्रॉम इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ इफ यू विल आंसर दिस सिंपल क्वेश्चन. लेकिन पहले आपको मैं इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ के बारे में बताना चाहूंगी. एज दैट्स योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑथेंटिक इंडियन ग्रोसरीज, फ्रेश प्रोड्यूस, स्पाइसेस, स्नैक्स, ऑल योर देसी नीड्स. इंडिया बाजार लोकेटेड एट 5152 क्वाड्रेंट वे इन फोर्ट वर्थ फॉर पीपल लिविंग इन फोर्ट वर्थ, केलर, हर्स्ट एंड हैसले. सो वेल, स्टूडियो का नंबर रखें याद 9722355555. Today we are listening to songs where the video has the actor wearing a sari. I mean not sari, sorry. So today we are listening to songs जिनके video में actress जो है वो लहंगा पहने हो. So well, अब सवाल ये है कि आप मुझे कोई भी दो गाने बताएं जिनमें कि actress नहीं बल्कि actor, यानी कि कोई male है जो लहंगा पहने हो. So tell me two Bollywood songs जहाँ पर heroine नहीं बल्कि hero ने लहंगा पहना हुआ हो. एंड यस, द स्टूडियो नंबर वंस अगेन इज 9722355555.

0: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
1: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
0: Renew?
1: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
0: What better way to celebrate than with something timeless?
1: Visit Tanishq, Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
2: Buying or selling a home isn't just a transaction. It's one of life's biggest decisions and it deserves the right guidance.
3: I am Navneeta, your trusted realtor with Keller Williams Realty.
2: I believe every home journey should feel exciting, stress-free and truly special. Whether you're buying your first home, upgrading, relocating or preparing to sell, I'm with you every step of the way. Kyunki har ghar ki ek kahani hoti hai. Let's create yours.
4: Call Navneeta Khemka today at 347-449-4242.
5: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
6: हाँ.
5: घर रिलोकेट करनी है?
6: हाँ.
5: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
6: हाँ भाई हाँ.
5: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
7: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सोल्यूशन. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
8: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं प्रेम और सेवा परोसती थी. और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेम्पल इन फ्रिस्को.
9: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
8: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग. ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो. श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी.
10: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो.
11: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
12: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
13: इतना सब और प्राइस?
12: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
14: मैं हीरो.
15: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस.
16: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
15: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
16: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
15: ये क्या होता?
16: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
17: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
12: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 doors डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन.
18: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
12: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेस्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 AM to 8 PM. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
19: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
20: It's Lawson.
19: किससे बात करूँ? सारी जानकारी कौन देगा?
20: It's Lawson.
19: Daddy, what is the law?
21: It's Lawson Travels for all your travel needs. Give them a call today. 214-631-2458. The travel experts. Lawson Travel.
22: शुभ दिन आ पहुंचा है, एक ऐसा अवसर जहां 60 वर्षों की परंपरा, बेमिसाल कारीगरी और पीढ़ियों के विश्वास का संगम आ रहा है आपके शहर फ्रिस्को में. PMJ Jewels.
23: Be a part of this grand opening celebration from 20th June Saturday onwards and get exclusive offers, exciting celebrations and opportunities to win beautiful jewelry pieces. PMJ Jewels. Tradition crafted, style defined.
24: Hi, this is Rani Mukherjee. You're listening to Fun Asia Radio.
25: The Dill of Dallas. Heart to Heart, Fun Asia.
0: You're tuned in to 104.9 FM, Fanasia Radio, bringing the community together. मैं हूँ मधुलिका, covering in for Kiran. मैं दूंगी आपका साथ शाम 5 बजे तक. स्टूडियो का नंबर 972-235-5555. और आज का जो हमारा थीम चल रहा है वो ये है

5 बजे तक। स्टूडियो का नंबर 972-235-5555। और आज का जो हमारा थीम चल रहा है वो ये है कि हम सुन रहे हैं वो गाने जिन गानों की वीडियो में एक्ट्रेस ने लहंगा पहना हुआ हो। सो अगर हैं ऐसे कोई गाने जो अभी तक प्ले नहीं हुए हैं, डेफिनेटली गिव मी अ कॉल। द नंबर इज 972-235-5555। दिस इज मधुलिका, विल बी विद यू टिल 5।

0: Well, that was a sweetie tera drama, but यहाँ कोई drama नहीं है, यहाँ just fun and just chill है. जी हाँ, just chill लेकर आती हूँ मैं मधुलिका. Every Saturday and Sunday 10 AM to noon होता है मेरा और आपका साथ, जहाँ करते हैं हम, as the name suggests, just चिल. वेल, आज हम सुन रहे हैं शाम 5 बजे तक वो गाने जिन गानों में एक्ट्रेस ने वीडियो में लहंगा पहना हुआ हो. सो वी डू हैव अ लिस्टनर ऑन एयर विद अस. हाय, यू आर लाइव ऑन एयर.
1: हाय,
0: व्हाट्स योर नेम?
1: चारू. आई एम चारू.
0: हे चारू, हाउ आर यू?
1: गुड गुड, हाउ आर यू डूइंग?
0: आई एम डूइंग ग्रेट. मजा आता है वीकेंड पे ना, जब अच्छे अच्छे गाने प्ले करते हैं लिसनर्स के लिए, तो आई रियली एंजॉय दैट. सो टेल मी, इज देयर अ सॉन्ग रिक्वेस्ट दैट यू हैव कॉल्ड फॉर?
1: Yeah, there is a beautiful song picturized on Juhi Chawla and Aamir Khan. Ghoonghat Ki Aay Mein Dilbar Ka.
0: Kya baat hai, Charu. Yes, absolutely. I'm going to play that song for you. But tell me, Charu, as your personal preference, do you prefer wearing a sari or a lehenga?
1: Sorry,
0: I'm a sari. You know, same is me, you know, because I love wearing saris, and especially if they are of my mom's saris, I love wearing them. Pata nahi kyun, mujhe aisa lagta hai jaise she's with me when I'm wearing those saris, nahi?
1: Yeah, totally. Meri mom was a teacher and she used to wear this kadak charasui cotton sari.
0: Yeah.
1: In school, and I loved them. I wish I could borrow all of them.
0: लेकिन पता है, like to counter that, साड़ी तो है जो है, but लहंगा बड़ा convenient होता है, काफी comfy होता है कि बस एक बार पहन लो, फिर उसको कुछ संभालना वमालना नहीं है, you know, it's easy to carry, don't you think so?
1: Yeah, but you know, आज के proper लहंगे they are so heavy, so I don't know.
0: ये तो आपकी choice है ना, you can choose something simple. But anyways, I'm going to play the song that you've requested. It's a beautiful number indeed. Thank you so much for calling in, Charu.
1: Thank you. Bye.
0: Have a lovely weekend. Bye-bye.
1: You too. Bye-bye.
0: Thank you.

0: वेल दैट वॉज टेकन फ्रॉम द मूवी हम है राही प्यार के. एंड सच में बहुत ही प्यारा सा गाना है. एंड वी डू हैव अनदर लिस्टनर ऑन एयर विद अस. हाय, यू आर लाइव ऑन एयर.
1: हेलो,
0: हाउ आर यू एंड व्हाट्स योर नेम?
1: हाय माने, आई एम डूइंग गुड, थैंक यू फॉर आस्किंग. माय नेम इज तृप्ति.
0: ऑलराइट तृप्ति, सो डू यू हैव अ सॉन्ग रिक्वेस्ट?
1: यस, कैन यू प्लीज प्ले दैट सॉन्ग? छैया छैया.
0: I absolutely can play, absolutely. I mean, how often or how many times have you really watched this song? I have watched it like million times.
1: Yeah, I love that dance and the beats. Yeah, Rahman's song, it's so amazing.
0: Yeah, and I remember my nephew, he was a big fan of the song. तो वो जब हमारी गाड़ी में बैठता था, दिस इज इंडिया आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड उसको ना हमारी कार रेडियो में समझ में आ गया था रीप्ले बटन कहाँ है. तो वो अब तो हमसे पूछता भी नहीं था, ही वुड जस्ट प्रेस दैट. और हम कहीं भी जा रहे हो ना, पूरे रास्ते हम बस यही गाना सुनते थे. सो या, इट जस्ट ब्रिंग्स बैक दोज मेमरीज फॉर मी. सो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन तृप्ति. डू यू हैव अ मेमरी रिलेटेड टू दिस सॉन्ग?
1: No, I don't have such memory, but I used to love this song because I'm a fond of music and dance also. The beats,
0: Awesome.
1: those are
0: Yes.
1: really amazing, and the steps, whatever they have performed, it's really
0: And
1: mind-blowing.
0: that too on top of a train, है ना, moving train, amazing.
1: Yes, that
0: Awesome.
1: is really amazing.
0: Awesome, Tripti.
1: Thank
0: So
1: you.
0: enjoy the weekend. Thank you for your call, and I'll play your song next. Thank you so much.
1: Thank you so much.

0: डालस की धड़कन 104.9 एफएम फनीजिया रेडियो।
1: The Dill of Dallas. Heart to Heart, Fun Asia.

वेल वीकेंड वाइब्स जो हैं फुल ऑन हैं एंड कॉकटेल 2 मूवी रिलीज हो गई है एंड यू नीड टू यू नो देर आर मल्टीपल लोकेशंस इन DFW जहां पर हमारी टीम जहां पर फनेशिया ट्रक इज गिविंग सम गिव अवेज इंक्लूडिंग सम मूवी टिकट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्रीबीज तो कीप एन आई यू नो लुक आउट एंड यू नो गो आउट हेड आउट एंड सर्च फॉर दिस truck which is giving lots of giveaways. It could be that you'll win some movie tickets for Cocktail 2 movie. Well, it's always fun talking to you all and playing some melodious songs along the way. It's time for me to say bye-bye. Aap kahi jayega nahi. Do stay tuned in to 104.9 FM Fun Asia Radio as yaha humare shows aapko entertain karte rahenge. Coming up next is Navneeta. Main milungi aapko kal subha 10 baje in Just Chill. जहाँ करेंगे हम एज द नेम सजेस्ट जस्ट चिल. वेल तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा. दिस इज मधुलिका साइनिंग ऑफ.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Did you know LASIK is just one of six ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
9: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
8: Visionary Eye. See clearly. Live boldly.
10: Beta, 95% eye?
11: Haan, mummy.
10: Good. अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
12: मेरा?
10: हाँ. प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
12: वो
13: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. एजी फिनटैक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज. विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. एजी फिनटैक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी.
14: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1, मिक्स वेज पकौड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
13: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी. तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
15: Are you tired of the same arguments, reactions, and emotional struggles? Maybe it's time to change the pattern. Aarti Vedula, a certified and accredited coach, has helped couples, parents, and individuals break free using NLP, EFT, hypnosis, time techniques, and somatic mind-body connection. Call 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com to book your free clarity call today. Mention Fun Asia and receive 50% off your package. Thrive with Aarti, helping you thrive from within.
16: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
17: हाँ.
16: घर रिलोकेट करनी है?
17: हाँ.
16: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
17: हाँ भाई हाँ.
16: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
18: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट sflworldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
19: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
20: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास. 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में.
19: दैट मैजिक रिमूवल हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी.
20: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से. नाउ इट्स योर टर्न. समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर. कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
21: Hey, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
22: लिया.
21: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
22: नहीं आया.
21: मुझे भी नहीं आया.
11: आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. Whether it's home, auto, health or business, every policy is customized around you. Hotels, motels, gas stations and small businesses, they help protect what you worked hard for. No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jamani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
12: Visit www.sanadainc.com today.
17: The Texas Super Kings are here and the action is absolutely heating up. Don't miss a single thrilling moment. Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium. We have got electrifying matches on Thursday, June 18th, Saturday, June 20th, Sunday, June 21st. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.

आज का सीन सिंपल है, म्यूजिक मस्ती और मैं। नाम तो सुना होगा, नवनीता। गाने होंगे, गॉसिप होगा, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़े गेम्स, थोड़ा नया स्वैग होगा, मतलब फुल ऑन।

0: I love the plan. Thank God it's Friday. With me, Navneeta. 5 se 8, straight from the heart.
1: Thank God it's Friday. मेरा शो होता या नहीं होता, आप यही कह रहे होते ना, दिल से कहिए. Thank God it's Friday. वो आहट भरी सांस लेकर थैंक गॉड इज फ्राइडे. सुपर, यू आर ऑन माय शो थैंक गॉड इज फ्राइडे. मैं हूँ आपकी होस्ट नवनीता. एंड अभी मधुलिका ने इतना कमाल का शो किया. थैंक यू मधुलिका फॉर दैट अमेजिंग शो. आई वाज टोटली एंटरटेन्ड फिलिंग अप किरण फॉर दिस आफ्टरनून. एंड योर शो Totally rocked Dallas. अब रहेगा आपका मेरा साथ 5 से 8 straight from the heart. शुक्रिया, thank you and धन्यवाद.

0: ब्यूटिफुल जग से लाज कॉकटेल टू का ये वाला गाना बहुत ही खास गाना है. कॉकटेल टू एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड बाय फनेजा फिल्म्स ऑल अक्रॉस द यूएसए. और पता है कमाल की बात है, डैलस का तो ये इवेंटफुल कॉकटेल टू होने वाला है. यू विल स्पॉट अ डिजिटल ट्रक और कॉकटेल टू के टीम ऑफ फनेजा will be in and around the city. और क्या पता आप अगर उसे स्पॉट करें, आप वहां जाए उनके साथ कुछ वार्तालाप करें. There's so much fun activities around this digital track that is going around in the city. Spot it, go there, talk to them, and you might win free tickets to the show. The cocktail 2 tickets जो आपको मिल सकता है. और भी क्या कुछ giveaways मिल सकते हैं, बस आपको spot करना है ये bus. And this will be somewhere around near you. McKinney, Frisco, Plano, it's here and there. The cocktail 2 digital bus, look out for it. The team of Phanesia and free giveaways. आप cocktail 2 में बंधु 2.0 जुड़िए और रही हमारे साथ.
1: गंदे सॉन्ग यार.
2: डांस इतनी पागल है यार.
1: क्यों?
2: ट्रोल हो जाएंगे हम लोग. ट्रोल.
1: But why it's iconic?
2: फिल्म में हमारे सारे गाने ओरिजिनल हैं. काहे को पंगा लेने का, छोड़ दे. आजकल जनता ना बहुत डेंजरस हो गई.
1: But imagine how the song would look if Ali, Kunal and Dia did it. Our version. That's what I'm saying. Now you're getting me.
2: You guys want to audition? Yeah. रोल हो जाएंगे, मत करो.

0: Yes. We killed it.
1: आगे ले गया ट्रोल हो जाएंगे
2: yeah.
1: Not at all.
0: Dino, डाल दे ट्रोल हुए तो हो जाएगी
3: तुम ही वो बंधु सखा तुम्ही बिल्कुल ट्रोल तो हो ही नहीं सकते. बात यह है ये फिल्म ऐसी कमाल की है कॉकटेल 2 तुम ही हो बंधु उस जमाने का जो गाना है अब 2.0 जब आ रहा है शाहिद कपूर कृति सैनन एज वेल एज रश्मिका मंदाना दीज गाइज आर जस्ट रॉकिंग इट गाइज. ये फिल्म तो सुपर डुपर हिट होने वाली है. ऑलरेडी द नंबर्स आर शोइंग इट. अनदर नोटेबल फीट हैज़ बिन अनलॉक्ड विद कॉकटेल 2 क्योंकि ये पुराने सारे ओपनिंग सरपास करेंगे. इट हैज डेफिनेटली सरपास्ड कॉकटेल 1 की जो कलेक्शन थी फॉर द फर्स्ट डे. एंड शाहिद कपूर जो बहुत ही चहेते हीरो है द हीरो ऑफ दिस फिल्म उनकी अब तक फर्स्ट डे जो कलेक्शन रही है सबसे हाईएस्ट रही है कबीर सिंह की. एंड देन उनकी जो सेकंड हाईएस्ट फीचर रही है हैज़ बिन पद्मावत विथ 19 करोड़ एंड कबीर सिंह विथ 20.21 करोड़. और फर्स्ट डे में ही ये जो फिल्म है हैज़ बीटन शानदार विच वॉज एक्चुअली 13.1 करोड़ बट नाउ विथ कॉकटेल 2 द ओपनिंग हैज़ बीटन 13.1 एंड इट इज़ 13.9 crores of business that first day par kar chuki hai. The reviews are amazing. Jo bhi ye film dekh kar aa raha hai wo yahi keh raha hai ye itni acche se bani hui film hai na. It gives time for the watchers, the lovers of movies breathe the relationship. Aise aajkal sari filmein rushed hoti hain, relationship mein time hi nahi dikhate hain, kehte hain aajkal generation aisa hai, but no, that's not true. Every relationship needs time, so they have done that relationship very beautifully. They have given it time to breathe, and the audiences completely associate to this movie and the relationship and the nuances and the complexities and the love and the cry and the emotion and the fun, everything. Everything about Cocktail 2 is super duper amazing. So this movie right here in Dallas for you. And watch out for those trucks, the digital trucks that are in and around you to give you those free tickets to watch this movie. Nahi to khareed ke dekhiye, but free mil jaye to baat hi kya hai, hai na? Enjoy.

0: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
1: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
2: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो ये वाला।
3: ओ हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली, कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
6: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
5: कहाँ?
7: फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोवेस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइब, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
8: फूडिस्तान इन ऑबरी, एवरीथिंग देसी, वन प्लेस One vibe.
9: और सुनाओ, हाउस हंटिंग कैसी चल रही है?
3: क्या बताऊं, इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग।
9: यू नीड टू कॉल अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट। ही इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर हु प्रोवाइड्स एक्सेप्शनल सर्विस प्लस कैशबैक एट क्लोजिंग। अजय रिव्यूज ईच हाउस थरली एंड शेयर्स ऑल द प्रोस एंड कॉन्स एंड नेगोशिएट्स द बेस्ट प्राइस एंड बिल्डर इंसेंटिव्स। जस्ट विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई पीपल आर रेविंग अबाउट हिम।
10: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you are dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
11: Don ko pakadna mushkil hi nahi, namumkin.
12: Lekin aapke doctor ka appointment milna, usse bhi mushkil hai. एक हफ्ता, दस दिन, अगले ट्यूसडे,
13: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
4: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
12: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
14: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
15: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
16: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
15: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
17: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
14: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
18: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khawaja, your legal lifeline.
19: Hi, I am Shah Rukh Khan. You are listening to FunAsia.

फनीशा के सेट्स पर आपका खास खास स्वागत है 104.9 FM फनीशा रेडियो. दीज लिटिल ट्रक्स अक्रॉस द टाउन, आपके घर के नज़दीक होगा, आप जहां शॉपिंग पे निकले होंगे वहां होगा. यू कैन एक्चुअली विन टू टिकट्स. अरे आप सोच रहे होंगे नवनीता क्या बोली जा रही है. नवनीता ये बोल रही है कि कॉकटेल 2 रिलीज हो चुकी है. वीकेंड का कुछ भी प्लान हो, इट शुड गो अराउंड कॉकटेल 2 एंड देन यू कैन मेक एनी अदर प्लान्स बिकॉज इट इज़ अ सुपर डुपर फन फिल्म. इतने अच्छा रिलेशनशिप्स दिखाया गया है इस फिल्म में. और अभी ऑल अराउंड डैलस टेक्सस यू विल फाइंड दिस डिजिटल ट्रक रोमिंग विद फन एशिया टीम who are giving away tickets, free tickets to watch Cocktail 2. करना क्या है आपको, बस जाना है उस ट्रक पे, उनके साथ वार्तालाप करना है, engage in you know something. They'll give you free tickets, you can win some other gifts and giveaways as well. And धमाल ये है कि if you are spotted, you can be spotted on Funasia Reels on Facebook and time to be you know the star of Dallas right now. Along with Kriti Sanon, Shahid Kapoor and Rashmika Mandanna. You know, क्या होता है जब ये films promote कर रहे होते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है. उनके जो fans हैं या people who are watching them, they love to actually get some feedback from all of you and they watch you. तो stars अगर आपको watch करें तो मज़ा ही कुछ और है ना?

सुन रहे हो 104.9 FM फन एजा रेडियो। होता ऐसा है कि ये हमारे झेलूराम ने बोला कि पता है नमिता, मुझे किसी ने ना ब्लॉक कर दिया था फेसबुक पर। आई रियली गॉट एंग्री। तो मैं बोली अच्छा फिर क्या हुआ झेलूराम? तो कहते हैं पता है नमिता, अगर कोई आपका नंबर ब्लॉक कर देना तो आप उसका नंबर लिखकर रोड पे चिपका दो और लिख दो पंचर बनाता है फिर देखो क्या होता है उसका हाल। ब्लॉक करेगा? माय गॉड, ऐसी ऐसी ऐसी बातें। ओ माय गॉड, ऑलराइट, 104.9 FM फन एशिया रेडियो सुन रहे हैं आप मेरे साथ, मैं आपकी होस्ट नवनीता। आज की शाम 8 तक साथ है आपका, 5 से 8 स्ट्रीट फ्रॉम द हार्ट।

0: मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
1: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338। 4697343338. MyFamilyHomeLoan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
2: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
3: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
4: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
5: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
4: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
6: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
7: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
6: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
7: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
8: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
9: इट्स लॉसन।
8: किससे बात करूँ, सारी जानकारी कौन देगा?
9: इट्स लॉसन।
8: डैडी, व्हाट इज द लॉ?
10: इट्स लॉसन ट्रैवल्स फॉर ऑल योर ट्रैवल नीड्स। गिव देम अ कॉल टुडे, 214-631-2458। द ट्रैवल एक्सपर्ट्स, लॉसन ट्रैवल।
0: इमिग्रेशन इज अ सीरियस कंसर्न फॉर आवर कम्युनिटी, एंड व्हेन यू आर फाइलिंग योर केस, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.

0: minutes is coming your way.
1: Vishal and Shekhar.
2: Here we go.
0: That's right. Vishal and Shekhar Live. Get ready for an electrifying evening filled with songs you've danced to, celebrated with, and fallen in love listening to. Sunday, July 12th at the Curtis Culville Center in Garland. Tickets on sale now. CashPatelProductions.com. The Super Hit Tour with Vishal and Shekhar.
3: Swag se karenge sabka swagat.
4: बस खत्म ही समझो किस्सा इस बोझ सी मोहब्बत का. पहले तुमको हमारा नहीं होना था, अब हमको तुम्हारा नहीं होना है. ऐसे ही होते हैं कुछ रिश्ते, और ऐसे ही कुछ रिश्तों की कहानी है कॉकटेल 2 दैट आर इन योर थिएटर्स राइट नाउ. कॉकटेल 2 डिस्ट्रीब्यूटेड बाय फनेजा फिल्म्स. और आज जो ये फ्राइडे इवनिंग है, और हम हमेशा दिल से कहते हैं थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, इस तरह

और आप ज्यादा थैंकफुल हो जाएंगे जब आप दो टिकट्स जीत ले कॉकटेल टू का. Yes, you can win today because it is Friday evening. Cocktail 2 has released. Phanesia Films is distributing Cocktail 2. और हमारी Phanesia team जगह जगह मौजूद होंगी in a digital truck. तो आप miss नहीं कर सकते हैं एक लंबा सा digital truck जिसमें cocktail के posters, cocktail के stars कुछ कह रहे हैं, ऐसे वैसे videos वहाँ होंगे जो आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा. ओ माई गॉड, कॉकटेल टू बस आ चुका है, पहुँच जाइए उस बस पर. वहाँ पर ये जो टीम है, दे आर डूइंग सम फन स्टफ अराउंड इट एंड यू माइट बी द लकी विनर फॉर टिकट्स फॉर कॉकटेल टू. है ना, कमाल की बात. तो फिर क्या करना है, नज़र दौड़ाते रहिए कॉकटेल टू डिजिटल बस के लिए एंड गिव अ शाउट आउट. फ़ोन कीजिएगा मुझे, 9722355555 है स्टूडियो का नंबर. अगर आपको मिल जाए वो टिकट्स, लेट माई लिसनर्स नो दैट. फ़ोन उठाइए, नंबर दबाइए, 9722355555 है स्टूडियो का नंबर.

मुझे ना शोले का डायलॉग याद आ रहा है, मैं नाचू जब तलक तू बोले जब तब तलक, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। और हमारे जो गब्बर सिंह थे, वांटेड बसंती टू नाचो जब तलक, जब तक तलक वो डांस करती रहेंगी तब तलक धर्मेंद्र की जिंदा, धर्मेंद्र जिंदा रहेंगे वीर। ये हमारे धर्मेंद्र पहुंच जाते हैं इन द अड्डा, जो मेन गैंग का गिरोह के साथ घिर जाते हैं, एंड ही इज टाइड अप। एंड हमारी बसंती तब तलक डांस करती रहती है जब तक जय नहीं आ जाए। सुन रहे हैं 104.9 FM फाइनेंशियल रेडियो, मेरे साथ शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद जुड़ने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए और गाने सुनने के लिए। ये अगला गाना गोइंग आउट टू यू।

ये वाला गाना। और पता है कल क्या होने वाला है लिसनर्स, आप पहुंच सकते हैं फॉर द स्टोर ओपनिंग कल 20th 11 बजे से 2 बजे तक है। सैटरडे ग्रैंड ओपनिंग है पीएमजे ज्वेलर्स का एंड दे आर नाउ कमिंग टू फ्रिस्को ब्रिंगिंग ओवर 60 ईयर्स ऑफ ज्वेलरी एक्सलेंस एंड टाइमलेस इंडियन क्राफ्टमैनशिप। आप एक्सप्लोर कर सकते हैं स्टनिंग गोल्ड डायमंड एंड ब्राइडल कलेक्शंस फ्रॉम एवरी सेलिब्रेशन एंड माइलस्टोन। और आप ज्वाइन कीजिए उनके ग्रैंड ओपनिंग सेलिब्रेशन जो कल शुरू हो रहा है जून 20th को, और आप इंजॉय कर सकते हैं एक्सक्लूसिव ऑफर्स, एक्साइटिंग फेस्टिविटीज एंड चांसेस टू विन ब्यूटिफुल ज्वेलरी पीसेज एज वेल। तो आपके पास ये मौका है एंड दे आर प्राउडली एसोसिएटेड विद महेश बाबू एंड सितारा गत्तामनेतनू। PMJ is a name trusted by generations. Visit कीजिए PMJ Jewelers Frisco on Main Street and discover jewelry that tells your story. So when it is? It is tomorrow. कल है ये और वक्त है 11 बजे से 2 बजे तक। कभी भी वहाँ पहुँच जाइए and then you can win what I have just told you. Lots of fun planned.

0: 1059 FM Fun Asia Radio सुन रहे हैं और यहाँ पर ये गाने अनेक जस्ट बिकॉज यू आर सो सो स्पेशल. वैसे गाने तो अनेक होते हैं और गाने बहुत खास भी होते हैं, आपके दिल के करीब भी होते हैं और इसी वजह से एक दिन बनाया गया है, बहुत स्पेशल दिन जिसको कहते हैं वर्ल्ड म्यूजिक डे. For all you music lovers, Fun Asia celebrate kar raha hai World Music Day and who else but we who are all the time around music thanks to these Bollywood amazing songs jiski wajah se hamara bhi astitva hai. But because every moment has a song and that is why we are so filmy. Every mood has a melody. Romance ho, heartbreak ho, wedding season ho, uska koi anthem ho, party favorite ho aapka. हम सब के लिए कुछ न कुछ गाने ज़रूर बने हैं और हम क्या कर रहे हैं, वी आर पिकिंग योर टॉपिक्स. जून 1 से जून 15 तक आप फिलअप कर सकते हैं ये गूगल फॉर्म एंड यू विल बी नॉमिनेटेड. देखिए आज तो वक्त हो गया है 19th एंड ये जो वर्ल्ड म्यूज़िक डे है 21st को, अभी भी आप डाल दें अगर अपना नॉमिनेटेड गाना, सो मे बी दैट कैन फीचर अप देयर योर फेवरेट सॉन्ग अक्रॉस डिफरेंट म्यूज़िक कैटेगरीज. फन एशिया क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा द मोस्ट लव सॉन्ग्स फ्रॉम ईच जॉनर और दीज सॉन्ग्स हैव ऑफ कोर्स योर हार्ट इन इट, मिलियंस ऑफ हार्ट्स इन इट और हार्ट बीट सबकी. 21 जून को मेरे हमारे जितने डिफरेंट आरजेज हैं वो आएंगे अपने शो पर और हर एक आरजे एक जॉनर को प्रस्तुत करेगा एंड यू माइट बी द विनर, यू माइट बी द वन हु हैज़ गिवन दैट सॉन्ग विच इज़ द मोस्ट फीचर्ड और द मोस्ट लव सॉन्ग ऑन वर्ल्ड म्यूजिक डे एंड दैट कैन बी प्लेड दैट music and you will be selected for exciting prizes and song choice jiska kiya jayega you will be announced, your prizes will be given and karna kya hai, funasia.net ko visit karna hai, follow hamare social media pages ko karna hai details ke liye. अभी अगर आप सुन रहे हैं तो
1: यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम केजीएमपी 104.9 एफएम एचडी1 पायलट पॉइंट टेक्सास साइमलकास्टिंग ऑन केटीसीजी 104.1 एफएम एचडी2 सैंगर टेक्सास पावर्ड बाय फन एशिया फिल्म्स एंड फन पिज़्ज़ा किचन ऑफिशियल टैक्स एंड फाइनेंस पार्टनर एजी फिनटेक्स ऑफिशियल इंजरी लॉ पार्टनर द लॉ ऑफिसेस ऑफ ओमर ख्वाजा इन एसोसिएशन विद पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
6: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Heere moti, main na chahu.
8: Achha, manifest karne se pehle thoda dubara soch lo. Kyunki ab diamonds mein mil raha hai buy two, get one free offer. Tanmay Jewelers in Irving. Diamond rings, pendants, earrings aur bridal jewelry par buy two, get one free. Aur wo bhi sab kuch wholesale price par. Chahe proposal ho, wedding ho, ya bas apni sparkle upgrade karni ho. Ab shine double within budget. Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
9: Ritesh, kabhi socha hai? कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
10: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है.
9: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
10: वेट, व्हाट?
11: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है.
12: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ. मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग.
11: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए. कॉल 669-243-5799. That's 669-243-5799 for a free 15-minute consultation.
13: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
14: Excuse me. It's called being loyal.
13: It's called being predictable.
14: Okay then. Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
13: And what's so special at Neon Cactus?
14: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
13: Not bad.
14: Happy hours Monday to Friday and amazing food and drink deals every day.
13: Okay, this I didn't expect from you.
14: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
9: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
15: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
16: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
17: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी। और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, opposite to the Karya Siddhi Hanuman Temple in Frisco.
18: First ever authentic Sattvic flavors with no onion and garlic,
17: where every divine food is an offering. Open daily from 7 a.m. Located at Independence and Eldorado. Shri Ayodhya Bhavan, where taste meets divinity.
19: Attention business owners, what if your everyday expenses could actually make you money? That's right, with Connecting America, you can turn your business expenses into a powerful stream of income via a unique insurance product. If you are looking to boost your bottom line, they got the strategy that works for you. Plus, they help homeowners pay off their mortgage in 10 years or less.
16: Don't wait. Call James at 321-888-7345 today or visit ConnectingAmericaFinancials.com and discover how to turn your daily expenses into income. Connecting America, where smart business owners turn costs into cash. Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
20: Calculating route, rerouting.
16: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है।
20: लोकेशन अपग्रेडेड, नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ।
16: क्यों?
20: क्योंकि फोर्ट वर्थ केलर, हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं। डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स, ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत, फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ।
16: अच्छा तो सीधा वही ले चलो,
9: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
20: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
21: नए दोस्त मजेदार लगते हैं क्योंकि कहानियाँ हमारे लिए नहीं होती।
16: दोस्ती, प्यार और फिर वही इमोशनल केओस। 2012 की सुपर हिट कॉकटेल के बाद एक नया ट्विस्ट, एक नई कहानी लेकर होमी अजजानिया इज बैक विद कॉकटेल 2 Starring Shahid Kapoor, Kriti Sanon and Rashmika Mandanna. Get ready as the perfect cocktail mixture with Cocktail 2, releasing on the 19th of June at theatre near you.

थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, और फ्राइडे में एक और अच्छी बात होती है, कोई ना कोई फिल्म रिलीज होती है। कॉकटेल 2 इज इन योर थिएटर्स, योर नियर बाय थिएटर्स हियर इन डैलस, ऑल ओवर द US, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय फनेशिया फिल्म्स। और पता है एक ट्रक है, डिजिटल ट्रक विद ऑल आर अमेजिंग फनेशिया टीम, हमारे RJs जो जगह जगह घूम रहे हैं इस ट्रक के साथ। अभी कहाँ है पता है? आप पहुँच सकते हैं फॉर tickets to Cocktail 2, and you can be the winner. You just have to go there. Un log kuch na kuch activities kar rahe hain which you can be part of our reels, etc. Go, I'll tell you. Main batati rahungi aapko locations, aur aap jaise ki tornado ko follow karte hain na kuch log, waise hi aap follow kar sakte hain is truck ko. Pata nahi ek jagah aapko mauka lage to lage, nahi lage to phir follow karke kahin aur pahunch jaiye. So main bata dun कहाँ पर है ये ट्रक। चलिए मैं बताती हूँ इस गाने के बाद, नहीं आई विल नॉट डू दैट फॉर यू, अभी बताती हूँ मैं कहाँ है ये ट्रक। दे आर बिहाइंड गांधी पार्क, यस वॉलनट एंड मकाथर इन अर्विंग पहुँच रहे हैं। दे आर इन अर्विंग राइट नाउ गाइस, दे आर इन अर्विंग, यू कैन कैच इट एंड यू कैन विन द टिकट्स टू कॉकटेल 2। और ये जो फिल्म है इट्स लुकिंग ग्रेट एंड आई नो एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी हियर। शो मी द ठुमका।

द ठुमका, यहाँ पर हमारी बस, हमारी डिजिटल ट्रक ऑल अराउंड डैलस घूम रही है कॉकटेल 2 का, ये जो कमाल का वीकेंड है, बिकॉज कॉकटेल 2 हैज जस्ट ड्रॉप्ड, हैज जस्ट रिलीज, एंड यू मे बी द लकी विनर फॉर द टिकट्स दैट दे आर गिविंग अवे इन दीज ट्रक्स. तो फिर पहुंच जाइए, अभी अरविंग में है. बताया था इस गाने के पहले एग्जैक्टली कहाँ है अरविंग में, आपने नहीं सुना. इस गाने के बाद मैं फिर से बताने वाली हूँ, अपडेट करने वाली हूँ ये ट्रक किधर है. बट यू नो दिव्यांशी, 6-year-old दिव्यांशी की मॉम, हर नेम इज़ पायल, सच अ क्यूट हार्ट. वो हिंदी में बात करी, उन्होंने मुझे फ़ोन उठाया, नंबर दबाया और बताया, कैन यू प्ले दिस सॉन्ग फॉर माई ममा, बिकॉज माई ममाज़ नेम इज़ वॉट is this song's name.

This one was for Divyanshi and her mom Payal. I hope you all are having a lovely, lovely time. And yay, very, very nice. Such a sweet dedication from 6-year-old Divyanshi to her mom Payal. वैसे Payal is just not an accessory at Shri Krishna Jewelers, because for them they are more than just accessories. They are a reflection of tradition, elegance, and timeless beauty. From classic gold designs to sparkling diamond, and from intricate kundan to stunning polki collections, every piece is crafted to celebrate life's special moments. अब वो ब्रांड न्यू जो लोकेशन उनका खुल चुका है, बहुत ही खूबसूरत. दे आर एट 13145 स्वीट 220 मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को. श्री कृष्ण ज्वेलर्स, क्राफ्टिंग फाइन ज्वेलरी एंड चेरिश मेमोरीज सिंस 1967. एंड दे आर योर गो टू ज्वेलर्स. सुन रहे हो 104.9 FM फनीशा रेडियो. पता है अब ऐसा सेगमेंट है यार, हम इतनी सारी हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में गाने, हिंदी ही होता है, लेकिन हिंग्लिश आजकल कितना कॉमन हो गया है. देखिए मैं ही बोल रही हूँ, हिंग्लिश आजकल कितना कॉमन इज़ नॉट अ हिंदी वर्ड. जैसे कि किसी एक बड़े अध्यापक ने, हिंदी के अध्यापक ने स्टेज पर खड़े होकर बोला, आजकल की यंग जनरेशन, आजकल ठीक है, यंग जनरेशन, ओ रियली, आजकल की यंग जनरेशन वेन एवर माउथ खोलती है ओनली एंड ओनली इंग्लिश में ही बोलती है. इंसान की एबिलिटी को अंग्रेजियत में तोलती है. एक्चुअली प्योर हिंदी में कोई बात कर रहा हो ना, तो दे आर लाइक हेलो, आई डोंट अंडरस्टैंड विच लैंग्वेज इज दैट. करेक्ट, क्योंकि हिंदी हम भूल जा रहे हैं, हिंदी से हम दूर हो जा रहे हैं. और आजकल की यंग जनरेशन वेन एवर माउथ खोलती है, ओनली एंड ओनली इंग्लिश में ही बोलती है, इंसान की एबिलिटी को अंग्रेजियत में तोलती है. ये वेरी रॉन्ग है. हमें और हमारे लोगों को अंग्रेजी को घटाना है, हिंदी को बढ़ाना है, वर्ल्ड वाइड फहराना है, वर्ल्ड वाइड, हाँ, तभी हमारे और हमारे कंट्री के ड्रीम्स होंगे सच. थैंक यू वेरी मच. ये तो बहुत ही हिंदी में था, करेक्ट. उसी वैसे ही हिंदी में ये गाने आ रहे हैं, जो हिंदी गाने तो हैं हमारी बॉलीवुड के गाने, पर ये अंग्रेजी भी घुसी चली जा रही है. लेट्स सी दैट. कुछ गाने आपके लिए

0: Ladies and gentlemen, I'd like you all to meet the man of the hour. Please give a big hand to our new chief editor, Mr. Abhimanyu Singh.
1: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
2: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
3: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
4: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
3: Renew?
4: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
3: What better way to celebrate than with something timeless?
4: Visit Tanishq, Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
5: The Texas Super Kings are here and the action is absolutely heating up. Don't miss a single thrilling moment. Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium. We have got electrifying matches on Thursday, June 18th, Saturday, June 20th, Sunday, June 21st. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.
6: एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी से डील करना बहुत मुश्किल हो गया था. ना वो हेल्प कर रहे थे, ना मुझे समझ आ रहा था कि क्या करूं. आई फेल्ट कम्प्लीटली स्टक. फिर मैंने ओमर ख्वाजा टीम को कॉल किया और सब कुछ चेंज हो गया. उन्होंने सारे कॉल्स हैंडल किए, मेरी तरफ से बात की और इंश्योर किया कि मुझे फेयर ट्रीटमेंट मिले. हर स्टेप पे मुझे अपडेट किया, सब कुछ क्लियरली समझाया और मेरी टेंशन कम कर दी. उन्होंने मेरी केस के लिए सच में फाइट की और आज मैं दिल से थैंकफुल हूँ.
5: कॉल नाउ टू 833-GET-OMAR. द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा. आपका हक, उनके जिम्मेदारी.
7: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस. फ्रिस्को में इतना प्यार मिलने के बाद पंचतारा इज नाउ ओपन एट अ न्यू लोकेशन इन एलन. वही स्वाद, वही जुनून और वही जबरदस्त मैनेजमेंट और कस्टमर सर्विस. फेमस गर्मा गर्म पराठे, रोज ताजी बनी मिठाइयाँ और फुल सर्विस बार वेटिंग जस्ट फॉर यू. एंजॉय फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस और पंजाबी बफे एवरी डे. कैटरिंग सर्विस इज ऑल्सो अवेलेबल टू मेक योर एवरी सेलिब्रेशन मेमोरेबल. पंचतारा नाउ इन फ्रिस्को एंड एलन. मेंशन अपना पंजाब एंड गेट एक्सक्लूसिव डिस्काउंट ऑन Your first visit.
8: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
9: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
8: नहीं.
9: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
8: नहीं.
9: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
8: वो भी नहीं.
9: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
10: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए. बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax. Your growth, our strategy.
11: AG Fintax led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
12: It's true. हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
13: Buying or selling a home isn't just a transaction. It's one of life's biggest decisions and it deserves the right guidance.
14: I am Navneeta, your trusted realtor with Keller Williams Realty.
13: I believe every home journey should feel exciting, stress-free and truly special. Whether you're buying your first home, upgrading, relocating or preparing to sell, I'm with you every step of the way. Kyunki har ghar ki ek kahani hoti hai. Let's create yours.
10: Call Navneeta Khemka today at 347-449-4242.
15: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balvihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
16: सुन रहे 104.9 FM फर्नीचर रेडियो, मैं हूं आपके होस्ट नवनीता। कहते हैं किसी ने कहा, नई नई आंखें हो तो हर मंजर अच्छा लगता है। कुछ दिन शहर में घूमे लेकिन अब घर अच्छा लगता है। एंड आई नो दिस इज ऑलवेज द ट्रूथ। कहीं पर भी आप दुनिया घूम के आ जाएं, घर बहुत अच्छा लगता है। कहीं पर भी आप घूम आए, फनीजा रेडियो आके डैलस में सुनना, आई एम श्योर आपको अच्छा लगता है। वेलकम वेलकम, स्वागत है आप सबका 104.9 FM फनीजा रेडियो पर। मैं आपकी होस्ट नवनीता पाद से आज स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑन थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। बज रहे हैं आज हिंग्लिश गाने, वो हिंग्लिश जो सिर्फ हिंदी नहीं होके इंग्लिश भी डाला गया है। आज की बात नहीं है, बहुत पहले से होता आ रहा है कि वी हैव ऑलवेज लव्ड इंग्लिश ऑल्सो बिकॉज हम यू नो कॉलोनी भी थे ऑफ ब्रिटेन। वही नहीं, इंग्लिश हमारी हिंदी के बाद आती है एज अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज। हर कुछ इंग्लिश में हो रहा है, वर्ल्ड लैंग्वेज इज़ इंग्लिश, सो इंग्लिश बिकम्स पार्ट ऑफ आर हिंदी सॉन्ग्स एज वेल। और मैं कह रही हूँ ना, बहुत पहले से होता जा रहा है, आता है, होते आ रहा है। बट बहुत बार ऐसा होता था कि जो एक्सेंट होता था, द वे यू स्पोक इंग्लिश वॉज वेरी वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय हिंदी। और हमारी जो रूट्स होते हैं, अगर आपके रूट्स बहुत स्ट्रांग है ना, देन द वे यू टॉक विल नॉट बिकम लाइक एन अमेरिकन स्पीकिंग इन इंग्लिश और अ ब्रिटिश गाय स्पीकिंग इन इंग्लिश, बट हिंग्लिश, इसीलिए कहते हैं ना हिंदी पर्सन स्पीकिंग इंग्लिश। सो ये वाला गाना बहुत अच्छे से उसको दोहराता है, मतलब जताता है। एंड देन बहुत सारे सॉन्ग्स अब इवॉल्व हो गए हैं जहाँ पर द एक्सेंट हैज़ ऑल्सो बीन सो गुड, इट मैचेज, लाइक एक इंग्लिश सॉन्ग की तरह पास ऑन हो सकता है अ हिंदी सॉन्ग। सो वी विल लिसन टू दिस वन फर्स्ट। Let me start it from the beginning.

वेले फ्रॉम स्टूडेंट ऑफ द ईयर. एंड यू नो ये वाला गाना है जो इन्होंने बनाया है वे है विशाल और शेखर ददलानी. एंड वो आ रहे हैं हमारे ही शहर में. दे एक्चुअली यूज़ अ लॉट ऑफ इंग्लिश वर्ड्स. बहुत सारी गाने हैं इनके जो बने हुए एंड दे यूज़ इंग्लिश इन अ वेरी वेरी अपस्केल मैनर. वेरी फास्ट रैप जो डाल देते हैं वेरी फास्ट एंड जस्ट ब्रिंग्स दैट सॉन्ग इन टू अ डिफरेंट काइंड ऑफ वाइब.

इंग्लिश इन अ वेरी वेरी अपस्केल मैनर, वेरी फास्ट रैप जो डाल देते हैं, वेरी फास्ट एंड जस्ट ब्रिंग्स दैट सॉन्ग इन टू अ डिफरेंट काइंड ऑफ वाइब वेन दे मेक सॉन्ग्स. और वो हमारे शहर में आ रहे हैं. ऑल यू डाई हार्ट फैंस ऑफ विशाल शेखर, दे हैव गिवन अस सम अमेजिंग अमेजिंग सॉन्ग्स. और जो भी आपके प्ले लिस्ट में हैं वो लाइव आप देख सकते हैं. Vishal Shekhar, the duo behind these super hits, are bringing the super hit tour to Dallas. और ये होने वाला है जुलाई 12th को, संडे है. Curtis Colville Center Garland में टिकट्स अभी सेल में हैं at cashpatelproductions.com. पहुंच जाए cashpatelproductions.com. ये जो गाना आप सुन रहे थे and many many more and the fan list that you have, they have just rocked Bollywood with so much amazing songs. तो मजा आने वाला है. इट इज हैपनिंग ऑन जुलाई द 12th. थैंक यू दोस्तों ट्यून इन करने के लिए. कुछ इंग्लिश गानों में ये वाला नेक्स्ट फॉर यू.

0: शुभ दिन आ पहुंचा है। एक ऐसा अवसर जहां 60 वर्षों की परंपरा, बेमिसाल कारीगरी और पीढ़ियों के विश्वास का संगम आ रहा है आपके शहर फ्रिस्को में। PMJ Jewels.
1: Be a part of this grand opening celebration from 20th June Saturday onwards and get exclusive offers, exciting celebrations and opportunities to win beautiful jewelry pieces. PMJ Jewels. Tradition crafted, style defined.
2: Sunita, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
3: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
2: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
3: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
4: इंट्रोड्यूसिंग लुमिटी लर्निंग सेंटर, फ्रिस्को प्रॉस्पर और मैकिनी ISD अलाइंड करिकुलम दैट डजंट जस्ट मैच, इट एक्सीड्स। पर्सनलाइज्ड मैथ और इंग्लिश प्लान्स, सर्टिफाइड टीचर्स, कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर बच्चे के लिए कम्पेटिटिव एज। ट्राई लुमिटी, यू सी द डिफरेंस। किड्स एजेस 5 to 13, कॉइट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को। कॉल 972-666-1181। मेंशन फन एशिया, गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ।
5: एक बात बता, रिटायरमेंट में सबसे स्कैरी क्या होता है?
6: क्या

0: सैलरी बंद हो जाती है
1: और बिल्स बंद नहीं होते।
0: एग्जैक्टली, इसलिए स्मार्ट लोग वेल टैक्टिक्स से स्ट्रेटजी बनाते हैं।
1: मतलब
0: ऐसी स्ट्रेटजी जहां इनकम रुकने के बाद भी पैसे का फ्लो बंद नहीं होता।
2: द वेल्थ टैक्टिक स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉर योर रिटायरमेंट इयर्स। फॉर फ्री कंसल्टेशन कॉल 4696932077 और विजिट देम एट thewealthtactic.com।
3: मामू देखो क्या हो गया।
4: ओ क्या हो गया?
3: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया, और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है।
4: ओए जर्मन का कमाल है।
3: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है।
4: ओए नहीं ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, वीडब्ल्यू और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार। तू नंबर लिख मुन्नी, 9726906623। कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार।
5: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस।
6: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
7: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
6: क्या मतलब?
7: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
6: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
7: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
6: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
8: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
9: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का।
10: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
2: विजिट psychicramnath.com, कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
11: आज जी रीडिंग्स ऑफ आवर गाइडेंस ओनली एंड रिसर्च में वेरी।
12: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
13: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
12: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
13: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
12: सच में सब संभालेंगे?
13: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
2: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
0: वेलकम वेलकम, आपका स्वागत है 104.9 FM फनेशिया रेडियो पर। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद ट्यून इन करने के लिए। और यू गाइस, इट इज फ्राइडे और कॉकटेल 2 रिलीज हो चुकी है। इतना कमाल कर रही है ये फिल्म, एवरीबडी इज रेविंग अबाउट इट एंड लविंग इट। इमोशंस है, बहुत सारा दिल है इस फिल्म में, रिलेशनशिप्स की गहराई है जो आप समझेंगे व्हेन यू सी द फिल्म। एंड आफ्टर ऑल इट इज़ ऑल अबाउट रिलेशनशिप दैट मैटर्स व्हेन वी ह्यूमंस आर कंसर्न्ड। तो आज एक डिजिटल ट्रक हमारे शहर में घूम रहा है जिसमें हमारे फनेशिया के का टीम है एंड दे आर गिविंग अवे टिकट्स टू वॉच दिस फिल्म एंड यू कैन गेट फ्री टिकट्स टू वॉच दिस फिल्म। और नहीं आप उसे ढूंढ पाए इस बस को या फ्री टिकट्स नहीं मिल पाए तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये पिक्चर तो बिग थिएटर्स में देखनी ही है बिकॉज इट इज़ दैट गुड एंड दिस इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड बाय फन एशिया फिल्म्स। ये 2.0 अभी भी बहुत खास है, दिल के करीब है।
14: रोल हो जाएंगे, मत करो।

0: Yes! We killed it!
1: Totally killed it! Very, very nice. Nailed it. Not killed it. Killed it kitna negative word hai, but we use it. Lekin when you nail it is also like you nailed it. But yes, this 2.0 in these three people, Rashmika Mandanna, Shahid Kapoor, Akriti Sanon, mein bhi khas hi lag raha hai, bahut hi khas. Because they did beat the first day collection, jo cocktail jeeti thi. And Shahid Kapoor himself has beat his movies, jo unhone bahut खास वे में बनाई है. एंड यू नो द टॉप मोस्ट वॉज कबीर सिंह. पहले पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वॉज 20.21 क्रोर्स, पद्मावत का 19 क्रोर्स और शानदार का 13.1 क्रोर, और 13.1 क्रोर से ऊपर आ चुकी है. सो द थर्ड यू नो थर्ड पोजिशन विच शाहिद कपूर्स फिल्म हैज टेकन फॉर द फर्स्ट कलेक्शन इज नाउ Cocktail 2. So that is where one needs to go and be there. 104.9 FM Fun Asia Radio par aap sabka bahut bahut khas baat is baat par. Pata hai ye Cocktail 2 jo kahani hai is about emotions, and lot of people compare everything to Dhurandhar these days. Ki Dhurandhar jaisi film banni chahiye, Dhurandhar jaisi film banni chahiye. You know, Sholay ek bar bani thi. I also feel समवेयर धुरंधर भी वो एक ऐतिहासिक फिल्म है जो एक बार बनी है, और इस सांचे में सारी फिल्में नहीं बन सकती. हाउ मेनी टाइम्स कैन यू वॉच धुरंधर? उसका एक्चुअली रिपीट वैल्यू भी नहीं है शोले जैसे. बट धुरंधर एक वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत कमाल की फिल्म है. आप दो बार देख लेंगे, तीन बार देख लेंगे, चार बार देख लेंगे. बट येस, इट इज़ अ हैवी डोज फिल्म. तो सारी फिल्में इस कैटेगरी में नहीं बन सकती. दैट्स वॉट आई फील. धुरंधर एक बनी है, खास बनी है, लेकिन हर फिल्म इसी कैटेगरी में बनने लगे ना, यू विल नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट दैट एज वेल. व्हाट सेल्स इज ड्रामा, व्हाट सेल्स इज इमोशंस, व्हाट सेल्स इज व्हाट कनेक्ट्स टू यू विद मैक्सिमम ऑफ पीपल. थोड़ी सी अलग हटके फिल्में बने वो, यस यू वॉन्ट दोज फिल्म्स ऑल्सो टू बी देयर, बट व्हाट सेल्स मैक्सिमम ऑफ टाइम इज स्टोरी दैट इज योर एंड माइन. हर इंसान की एक स्टोरी होती है, और वो स्टोरी दूर तक जाती है जब आप उस स्टोरी को अपने दिल से महसूस करते हैं. सो देयर यू गो, वी विल हैव अदर फिल्म्स एज वेल, बट धुरंधर शोले जैसी एक ही फिल्म है जो एक बार बनी है. बार बार धुरंधर भी नहीं बन सकती.

0: जब तक दिल गोज इट्स गुड, बट इफ द दिल गोज इन आउट ऑफ ऑर्डर फैशन विच इट शुड नॉट बी, इट इज़ डेफिनेटली कंसर्न. और ये कंसर्न वही डॉक्टर्स समझ सकते हैं जो आपके साथ वक्त बिताते हैं और आपको सही से बताते हैं आपके हेल्थ का क्या हाल है. बहुत लोगों को ये शिकायत होती है, यार हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं इन एंड आउट वेरी वेरी क्विकली, वी जस्ट डोंट फील सैटिस्फाइड कि हमारा जो उन्होंने केयर दिया है वो सही दिया है नहीं दिया है. दैट्स वाई इन डैलस वी हैव पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. और हर अपॉइंटमेंट ऑलमोस्ट 30 मिनट्स वो आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, आपको समझते हैं और जो ज़रूरी है आपके लिए वो बताते हैं. क्योंकि ये कहते हैं एट पैशन हेल्थ यू आर नॉट अ पेशेंट बट अ फैमिली. और बहुत ही फैमिली फ्रेंडली एटमोसफियर है यहाँ पर एंड दे आर ऑलवेज देयर बिकॉज देयर है देयर केयर इज़ वेरी प्राइमरी एंड प्राइमरी हेल्थ पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इज़ देयर नेम. और अभी एक और भी बहुत खास बात है, एंड दे आर ग्रोइंग एंड दे आर ऑल्सो हायरिंग. दे आर हायरिंग एक्सपीरियंस प्राइमरी केयर डॉक्टर्स, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, pediatricians and psychiatrists for full-time and part-time opportunities. अगर आप passionate हैं उनकी तरह, आप patient care में believe करते हैं उनकी तरह और आप वक्त डालना चाहते हैं अपने patients के लिए, you want to be associated with them, send in your resume to passionhealthphysicians@gmail.com. They're passionhealthphysicians@gmail.com. टेक्स्ट भी कर सकते हैं आप, फोन उठाइए और नंबर दबाइए, टेक्स्ट कीजिए 2174544639 पर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए. passionhealthphysicians.com है इनका वेबसाइट, आप वहाँ भी जा सकते हैं. कॉल कीजिए, टेक्स्ट कीजिए, फोन उठाइए, नंबर दबाइए 2146666259. हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, उस ब्रेक के बाद लौटेंगे और फिर यू नो 7 बजने वाले हैं. वी विल बी लविंग टू बी एसोसिएटेड विथ ईच अदर ऑन गल हिंदी हिंदी बोल. पर वो जो ट्रक है कॉकटेल 2 की टिकट गिव अवेज, बहुत धमाल हो रहा है, एवरीबडी इज रेविंग अबाउट इट. फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, वहाँ पर मस्ती हो रही है, गेम खेल रहे हैं. इट इज़ जस्ट गेटिंग एसोसिएट, जैसे कॉकटेल 2 इज़ ऑल अबाउट रिलेशनशिप, कम बिल्ड दैट रिलेशनशिप विथ आर फनेशिया टीम. ये ट्रक कॉकटेल 2 की ट्रक है गिविंग अवे फ्री टिकट्स फॉर कॉकटेल 2. अभी दैट ट्रक इज़ हेडेड टू पटेल ब्रदर्स ऑन प्रेस्टन फ्रिस्को, वो जो प्रेस्टन के कॉर्नर पर फ्रिस्को में पटेल ब्रदर्स है उसी कॉम्प्लेक्स में नेक्स्ट दैट ट्रक इज़ हेडेड टू. एंड आई नो आफ्टर दैट वेयर इट विल बी हेडेड टू. आप कहीं मत जाएगा, सुनते रहिए फनीशा रेडियो. आई विल लेट यू नो कि आफ्टर दिस पटेल ब्रदर लोकेशन जहाँ पर बहुत धमाल होने वाला है, टिकट गिवअवेज होने वाले हैं, where is that truck headed to? So this evening is all about Cocktail 2, distributed by Funisha Films, and you can be part of this masti as well. Ek chote se break ke baad main mil rahi.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: कहाँ गया, कहाँ रखा था?
0: सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
4: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
4: अरे सारे तो सेम है.
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो ये वाला.
4: ओ हाँ, ये तो अलग है.
5: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
6: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान. myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म